0: घड़ी मिला लीजिए, इस वक्त सुबह के ठीक 5 बजे हैं।
1: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MVC रेडियो

प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

ईश्वर की आराधना के इन मधुर सुरों के साथ प्रभात आराधना का ये सफर यही समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे भक्ति के नए गीतों के साथ रेडियो मॉरिशस पर।

0: On the hour, every hour. Radio Mauritius.
1: घड़ी मिला लीजिए, इस समय सुबह के ठीक 6 बजे हैं। आइए जुड़ते हैं सुबह के पहले संक्षिप्त समाचारों के साथ।

0: टीवी सुनने वालों को नमस्कार। मई में मॉरिशस का व्यापार घाटा 35% बढ़कर 22,367 मिलियन रुपए हो गया। स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस के अनुसार इसकी मुख्य वजह पेट्रोलियम आयात बिल में भारी वृद्धि रही। आज दिन के 11:30 बजे राज्यसभा के कार्य फिर शुरू होंगे। प्राइम मिनिस्टर्स क्वेश्चन टाइम में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम से 12 सवाल पूछे जाएंगे। एजेंडे में सरकारी निवेश परियोजनाएं, धारदार हथियारों से जुड़े अपराध, अर्ध सार्वजनिक निकायों की वित्तीय स्थिति, VAT और वृद्धावस्था पेंशन के नए पात्रता मानदंड शामिल हैं। PMQT के बाद संसदीय प्रश्न लिए जाएंगे। नेल्सन मंडेला सेंटर फॉर अफ्रीकन कल्चर ने कल अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस मनाया। इस अवसर पर उप प्रधानमंत्री आरियन नावामारी ने नेल्सन मंडेला के न्याय, गरिमा और एकजुटता के मूल्यों को श्रद्धांजलि अर्पित की। और विदेश में अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा से आयातित कई वस्तुओं पर 50% शुल्क लगाने की घोषणा की है। नया शुल्क 30 दिनों में लागू होगा, जिससे दोनों देशों के बीच व्यापार तनाव और बढ़ेगा। और आखिर में चले जानते हैं स्थानीय मौसम का हाल। हमारे इलाके पर हल्की हवा की लहर बह रही है। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान है कि आज सुबह धूप खिली रहेगी, दोपहर बाद को बादल खिले रहेंगे और दक्षिण पश्चिम, दक्षिण तथा सेंट्रल प्लेटो पर रह रहकर बारिश होगी। अन्य इलाकों पर मौसम सुहाना रहेगा। अधिकतम तापमान सेंट्रल प्लेटो पर 23 से 25 डिग्री सेल्सियस, अन्य इलाकों पर 27 से 29। रात के दौरान आमतौर पर बादल घिरे रहेंगे। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटो पर 14 से 16 डिग्री सेल्सियस, अन्य इलाकों पर 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। हवा उत्तर पूर्व की ओर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। प्रवाह रेखा के परे समुद्र चंचल रहेगा और दक्षिण पश्चिम के समुद्र में 2 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। सूर्योदय 6:44 पर और आज शाम 5:48 पर सूरज ढल जाएगा। तो मौसम के हाल के साथ ही संक्षिप्त समाचार समाप्त है। आपसे मुलाकात होगी 6:30 बजे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: ये है रेडियो मॉरिशस।

सुप्रभात श्रोताओं, ये मॉरिशस ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन का रेडियो मॉरिशस प्रसारण है। मीडियम वेवार्ड 19 किलोहर्ट्ज पर से हमारा आज का ये प्रसारण जारी हो रहा है। 21 जुलाई 2026 आज की तारीख, मंगलवार का दिन, और इस समय स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6:03:50 माइक पर आपका साथ दे रही है रत्ना। सप्रेम नमस्कार स्वीकार करें। अभी से लेकर दिन के 11 बजे तक हम आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं। जहां कहीं से भी आप दिल से साथ दे रहे हैं, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ हैं। आज का दिन सभी के लिए सकुशल रहे, मंगलमय रहे, ऊर्जाजनक रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के इस कार्यक्रम में हम जुड़ेंगे अभी थोड़ी ही देर में संत वाणी कार्यक्रम के साथ, जो कबीर मंदिर द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। आज के इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करेंगे आचार्य डॉक्टर श्यामदास।

0: कुछ सदाबहार गीतों के साथ। तुरंत उसके बाद जुड़ेंगे और 6:30 बजे पुनः जुड़ेंगे समाचार बुलेटिन के साथ। समाचार के पश्चात सुबह का नजराना कार्यक्रम जारी रखा जाएगा। तो आइए आज के दिन का शुभारंभ करते हैं आज के इस सुविचार के साथ। श्रोताओं, एकांत का अर्थ ये नहीं है कि हम दुनिया से कट गए हैं। एकांत तो स्वयं के सबसे करीब आ जाने की घटना को कहा जाता है। मन में शांति और सद्भावना का भाव लेते हुए आज के दिन का शुभारंभ करते हैं। आइए स्वागत करते हैं आचार्य डॉक्टर श्यामदास जी का संतवाणी कार्यक्रम में।
1: आइए सुनिए आचार्य महंत डॉक्टर श्यामदास जी महाराज की प्रस्तुति में पाक्षिक कार्यक्रम संतवाणी।

परम श्रद्धालु हंसजन, यह कार्यक्रम बोनतेर वाकवा के श्री कबीर मंदिर की ओर से प्रस्तुत किया जा रहा है। सात्विक यज्ञ चौका आरती इस विषय पर आज का वक्तव्य आधारित है। जीव और ब्रह्म का अभेद ज्ञान से मोक्ष मिलता है और उक्त अभेद ज्ञान ब्रह्म विचार से होता है। जो उत्तम अधिकारी है उसको तो ब्रह्म विचार से अभेद ज्ञान प्राप्त हो जाता है, किंतु जो मध्यम अधिकारी है उसको ब्रह्म विचार करने पर भी अभेद ज्ञान नहीं हो पाता है। उसके लिए चौका आरती का विधान है। चौका आरती में परमात्मा का पूजन होता है, इसमें भक्ति का समावेश है। इसीलिए चौका आरती एक प्रकार की उपासना ही है। इसका कराने वाला उपासक देह त्याग के बाद उत्तरायण मार्ग से सत्यलोक में जाता है और फिर उसका संसार में आना नहीं होता है, जिसमें न स पुनरावर्तते यद गत्वा न निवर्तन्ते अनावृत्ति शताब्दत इत्यादि श्रुति स्मृति तथा सूत्र भी प्रमाण है। इसीलिए चौका आरती को मुक्ति का साधन कहा गया है। चौका आरती मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, पहला आनंदी और दूसरा चलावा। यह यज्ञ फल फूल मेवा मिष्ठान आदि सात्विक चीज़ों से संपन्न किया जाता है, इसीलिए हम इसको सात्विक यज्ञ चौका आरती कहते हैं। सद्गुरु कबीर साहब के परंपरा में सात्विक यज्ञ चौका आरती से बढ़कर और कोई भी दूसरा यज्ञ नहीं है। जिस प्रकार लोक अर्थात शरीर की रचना होती है, इसी प्रकार चौका की भी रचना होती है। जैसे पांच तत्व से शरीर बनता है, इसी का प्रतीक कलश के ऊपर पांच बत्तियां प्रकाशित की जाती है। कलश मंगल सूचक है एवं कल्याण को देने वाला है। आरती जिसको हम ज्योत कहते हैं वह आत्मा का प्रतीक है, अमीदल अमरता का प्रतीक है।

और प्रसाद प्रसन्नता का प्रतीक है। सात्विक यज्ञ चौका आरती के विषय में सदगुरु कबीर साहब ने स्वयं कहा है, जो रचना है लोक की सो चौका विस्तार की बैठे निज वंश सुत की पूरा कड़िहार। चौका आरती का बहुत बड़ा महत्व है क्योंकि कबीर साहब जीवों के उद्धार करने के लिए सत्यलोक से ही चौका आरती के संदेश लेकर पृथ्वी पर प्रकट हुए थे, इसीलिए उसको माया से पार होने की इच्छा होती है। वही आदमी इस आरती को कराता है। भूत भविष्य और वर्तमान ये तीनों काल के सभी पाप कर्मों को समाप्त कर के मोक्ष गति को पाने के लिए यह आरती तीन बार घुमाई जाती है। जो हंस सत्यनाम का सुमिरण करके आरती करता है उसका संसार से उद्धार हो जाता है। चौका आरती में आरती का प्रमुख स्थान होता है। आरती का अर्थ है कि जब से ज्ञान हो तब से गुरु के प्रति प्रेम भक्ति हो। सदगुरु कबीर साहब के परम शिष्य धनी धर्मदास जी साहेब एवं परम शिष्या आमीन माता ने सबसे पहले सदगुरु के कर कमलों से इस सात्विक यज्ञ चौका आरती को अपने भवन में कराया था। इस यज्ञ में गुरुमुख होने वाला शिष्य से गुरु शुद्ध आहार एवं विहार के साथ सदा सत्य बोलने के लिए वचन लेते हैं। तब उसके गले में कंठी बांधकर उसे गुरु मंत्र देते हैं। इसके बाद शिष्य से नारियल भेंट करवाते हैं। यहाँ पर नारियल भेंट करवाने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार नारियल के ऊपर का भाग कठोर होता है उसी प्रकार नियम का पालन करने के लिए शिष्य का हृदय कठोर होना चाहिए, और जिस प्रकार नारियल के भीतर का भाग कोमल होता है उसी प्रकार शिष्य का हृदय सभी प्राणियों पर दया करने के लिए कोमल होना चाहिए। सतोगुण रजोगुण एवं तमोगुण ये शारीरिक तीनों गुणों को समाप्त करके ब्रह्म तत्व की प्राप्ति के लिए चौका आरती में नारियल मुरवाया जाता है। शिष्य के जीवन में आने वाली अनेक प्रकार के विघ्नों को समाप्त करने के लिए कबीर साहेब ने गुरु को इस विधि से नारियल मोड़ने के लिए आदेश दिया है। अंश रेख सुर सीख को गुरु स्वासा घर एक तामे नरियर मोर हो टूटे विघ्न अनेक। चौका आरती में तिनुका तोड़ने का मतलब यह है कि यमराज के यहाँ जाने का जो गलत रास्ता है उसको छोड़कर सत्यलोक जाने का जो अच्छा रास्ता है उसमें लग जाना। दीक्षा प्राप्त करने के बाद शिष्य परवाना ग्रहण करता है। परवाना का तात्पर्य यह है कि गुरु ने भक्ति का जो सत्य मार्ग दर्शाया है उससे कभी भी विचलित ना होना। इस परवाना अर्थात बीरा की इतनी शक्ति है कि काल कितना भी बड़ा बलवान क्यों ना हो फिर भी इस बीरा के प्रताप से हंस सत्यलोक पहुंच जाता है, क्योंकि उसको बाँह पकड़कर सत्यलोक ले जाने वाले सदगुरु मिल जाते हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, अस बीरा प्रताप बल प्रबल काल ते होय जहि सतगुरु बहियाँ मिले हंस न जाय बिगोय। इस प्रकार वीरा की शक्ति को समझकर भक्ति के सन्मार्ग पर चलने के लिए गुरु से जो वीरा ग्रहण करता है वह शरीरांत के बाद सदगुरु कबीर साहब का शब्द स्वरूपी रथ पर बैठकर सत्यलोक को जाता है। यह जीवात्मा जब शरीर को छोड़कर मुक्ति की जगह पर जाता है

तब इसकी गति करोड़ों सिंहों की गति के समान होती है। जब इस जीवात्मा रूप हंस की सुरती दीनदयाल की ओर लगी रहती है, तब यह जीवात्मा हंस रूप मुक्त हो जाता है। सद्गुरु कबीर साहब ने शब्दावली ग्रंथ में कहते हैं।

0: छूटे बाज ज्यों, कोटि सिंह का जोर, सुमिरन दीन दयाल का पहुँच गया निज ठौर। सदगुरु कबीर साहब के इस साखी के साथ आज के वक्तव्य को विराम दिया जा रहा है। जय सतनाम सदगुरु बंदगी साहेब।
1: अभी आप सुन रहे थे आचार्य महंत डॉक्टर श्याम दास जी महाराज की प्रस्तुति में पाक्षिक कार्यक्रम संत वाणी।

6:19। खुशी के समय हर कोई साथ खड़ा होता है, पर दुख के समय केवल एक प्रभु का ही नाम सबसे बड़ा होता है। फिल्म हम दोनों का ये गीत हमने अभी भी सुना, आवाज थी लता जी की। जिंदगी में सुकून उन रिश्तों में है जहां शब्द कम और समझ बूझ ज्यादा होती है, पर आजकल समझ बूझ ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है और शब्दों का तो इस्तेमाल ही नहीं किया जाता। बातचीत कुछ इस हद तक कम हो चुकी है कि रिश्तों के

महीने खत्म हो रहे हैं। चलिए इसी के साथ प्यार भरे गीतों का ये सफर, ये कारवां जारी रखते हैं और आज और कल फिल्म का ये प्यारा सा तराना, ये प्यारा सा गीत हम लाए हैं आपके लिए। आवाज़ है मोहम्मद रफ़ी साहब की।

सुबह सवेरे उठते ही प्रकृति की ओर नजर दौड़ाए, चिड़ियों का चहकना, उगते हुए सूरज को देखना, ठंडी ठंडी हवाओं के साथ पेड़ों के पत्तों को झिलमिलाते हुए देखना, एक लंबी गहरी सांस लेना, इन सारी चीजों को देखकर मन में शांति की अनुभूति होती है। सुबह का समय अपने साथ बिताया करें। कुछ पल अपने साथ बिता लेने से जिंदगी एक अलग रुख लेती है। चलिए इसी के साथ, प्रकृति की सुंदरता के साथ इस कार्यक्रम को हम जोड़ते हैं छाया फिल्म के इस गीत के साथ, लता जी की प्यारी सी आवाज़, और यही गाना हमें कनेक्ट करेगा हमारे अगले कड़ी के साथ, यानी समाचारों के साथ। हमारी और आपकी मुलाकात अब होगी समाचारों के बाद सुबह का नजराना कार्यक्रम में। तब तक के लिए गाते रहें, गुनगुनाते रहें, जिंदगी बहुत हसीन है।

0: सुबह के ठीक 6:30 बजे हैं। नमस्कार, मंगलवार 21 जुलाई 2026 के समाचारों में स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले आज की सुर्खियां। मई में मॉरिशस का व्यापार घाटा 35% बढ़कर 22,367 मिलियन रुपए हो गया। स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस के अनुसार इसकी मुख्य वजह पेट्रोलियम आयात बिल में भारी वृद्धि रही। आज दिन के 11:30 बजे राज्यसभा के कार्य फिर से शुरू। प्राइम मिनिस्टर्स क्वेश्चन टाइम में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामगलाम से 12 सवाल पूछे जाएंगे। एजेंडे में सरकारी निवेश परियोजनाएं, धारदार हथियारों से जुड़े अपराध, अर्ध सार्वजनिक निकायों की वित्तीय स्थिति, VAT और वृद्धावस्था पेंशन के नए पात्रता मानदंड शामिल हैं। नेल्सन मंडेला सेंटर फॉर अफ्रीकन कल्चर ने कल अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस मनाया। इस अवसर पर उप प्रधानमंत्री अहियाना वमाही ने नेल्सन मंडेला के न्याय, गरिमा और एकजुटता के मूल्यों को श्रद्धांजलि अर्पित की। और विदेश में अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा से आयातित कई वस्तुओं पर 50% शुल्क लगाने की घोषणा की है। नया शुल्क 30 दिनों में लागू, जिससे दोनों देशों के बीच व्यापार तनाव और बढ़ेगा। पेश अब समाचार विस्तार से। मॉरिशस का व्यापार घाटा एक साल में मई महीने में 35% बढ़कर 22,367 मिलियन रुपए हो गया है। स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस द्वारा शुक्रवार को प्रकाशित नवीनतम आंकड़ों से ये खुलासा हुआ है। इसका मुख्य कारण पेट्रोलियम के आयात बिल में भारी वृद्धि होना है। शैली नबन की रिपोर्ट पर पेश है ये विवरण।
1: घाटे में भारी वृद्धि का मुख्य कारण खनिज ईंधन है। एक वर्ष में इनका आयात बिल 2 गुना से अधिक हो गया है, जो 5,424 मिलियन रुपए से बढ़कर 11,315 मिलियन रुपए हो गया है, यानी 108.6% की वृद्धि। हमारे कुल आयात में ईंधन का हिस्सा अब 36% हो गया है, जबकि एक साल पहले ये 20.5% था। एक उल्लेखनीय तथ्य, ओमान का सल्तनत एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता के रूप में उभरा है। मई में हमारे कुल आयात का 14% हिस्सा उसी का था, जबकि एक साल पहले ये आंकड़ा बमुश्किल 85 मिलियन रुपए था। हालांकि चीन 19.1% आयात के साथ अभी भी हमारा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बना हुआ है और वो बेल्जियम से आगे है। ये तब हो रहा है जब भारत के साथ तेल को लेकर हुआ सरकारी समझौता, जिसकी घोषणा कई महीने पहले की गई थी, अंतिम चरण में है। निर्यात के मामले में भी स्थिति नकारात्मक है। एक साल में इसमें 6.2% की गिरावट आई है और ये घटकर 9,282 मिलियन रुपए रह गया है, जिसका मुख्य कारण पुनः निर्यात में 36.7% की भारी गिरावट है। घरेलू निर्यात बेहतर स्थिति में है और ये 4,729 मिलियन रुपए पर स्थिर है, जिसमें दक्षिण अफ्रीका हमारा सबसे बड़ा बाजार बना हुआ है। ये नए आंकड़े पेंशन फंड्स के 166 बिलियन रुपए के संयुक्त घाटे पर हुई संसदीय बहस के बाद सामने आए हैं, जिसे सकल घरेलू उत्पाद GDP के 20% से अधिक होने का अनुमान लगाया गया है।
0: क्या मॉरिशस अपनी क्षमता से ज्यादा खर्च कर रहा है? ये अर्थशास्त्री एरिगनिंग की राय है, जो खतरे की घंटी बजा रही है। देश को डबल डिफिसिट का सामना करना पड़ रहा है, यानी सरकार बहुत ज्यादा खर्च कर रही है और ये द्वीप जितना निर्यात करता है उससे 2 गुनी मात्रा में आयात करता है। ये स्थिति और भी चिंताजनक है, क्योंकि केयर एज रेटिंग एजेंसी पहले ही ईंधन पर हमारी पूर्ण निर्भरता के कारण मॉरिशस को तेल के झटके की स्थिति में सबसे अधिक वेदनशील अर्थव्यवस्थाओं में शामिल कर चुकी हैं। अगले साल राजकोषीय घाटा GDP के लगभग 4% रहने का अनुमान है, लेकिन उनका कहना है कि ये सब अपनाई गई आर्थिक मान्यताओं पर निर्भर करेगा। एरिकनिंग के अनुसार सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में तुरंत सख्ती बरतने की आवश्यकता है। उनको सुनते हैं, जिनसे बात की शैली न्या बनी।
2: अंदरूनी और बाहरी घाटे होते हैं। अंदरूनी घाटे बजट घाटा है, यानी सार्वजनिक खर्च और कम सरकारी आय। बाहरी घाटे को कमर्शियल डेफिसिट कहा जाता है। व्यापारिक घाटे देश के लिए बढ़ रहे हैं, अर्थात हम 2 गुना आयात करते हैं जबकि निर्यात कम होता है।

0: दोनों घाटे मिलकर मौसन रुपया कमजोर पड़ जाता है। खर्च को नियंत्रित करना जानना चाहिए, जैसे सरकार और जनता की ओर से उपभोक्ता खर्च और निवेश खर्च को भी नियंत्रित करना चाहिए। ये आर्थिक वृद्धि पर प्रभाव डाल सकता है, लेकिन जनता को आयात की गई उत्पादों पर कम निर्भर होना चाहिए और स्थानीय उत्पाद को बढ़ावा देना चाहिए। आज दिन के 11:30 बजे राज्यसभा के कार्य फिर से शुरू होंगे। प्राइम मिनिस्टर्स क्वेश्चन टाइम के दौरान प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामगुलाम से 12 सवाल पूछे जाएंगे। एजेंडे में शामिल विषय हैं सरकारी निवेश परियोजनाएं, धारदार हथियारों से जुड़े अपराध, अर्ध सार्वजनिक निकायों की वित्तीय स्थिति, VAT और वृद्धावस्था पेंशन के लिए नए पात्रता मानदंड। अधिक जानकारी राजमीना सीतामणि की इस रिपोर्ट में। विपक्ष की सांसद जुआना बेरोंजे चर्चा की शुरुआत करेंगी। वे प्रधानमंत्री से उन मानदंडों के बारे में सवाल करेंगी जो निवेश परियोजनाओं की प्राथमिकताओं की समीक्षा करने वाली समिति द्वारा अपनाए गए हैं, विशेष रूप से एम्फोमो टोवे परियोजना के संबंध में। डॉक्टर फरादोमिया धारदार हथियारों से होने वाले अपराधों में वृद्धि और इन हथियारों की बिक्री तथा रखने पर संभावित रेगुलेशन के बारे में जानकारी चाहेंगी। दूसरी ओर श्रीधर जगरनोट सरकार से अर्ध सार्वजनिक निकायों की वित्तीय स्थिति के बारे में सवाल करेंगे। रविराज बिचुक और चेतन बाबूलाल VAT के मुद्दे को उठाएंगे। चेतन बाबूलाल विदेशों में रहने वाले मॉरिशस के नागरिकों के लिए वृद्धावस्था पेंशन की पात्रता के नए मानदंडों पर भी चर्चा करेंगे।
1: और इस सत्र के बाद संसदीय प्रश्न होंगे। इसके बाद मॉरिशस हाइड्रोग्राफिक सर्विसेज बिल पर बहस फिर से शुरू होगी, साथ ही क्रिमिनल कोड अमेंडमेंट बिल पर भी बहस शुरू की जाएगी। नेल्सन मंडेला सेंटर फॉर अफ्रीकन कल्चर ने कल लातोकिनेक स्थित अपने मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस मनाया। उप प्रधानमंत्री और जेंडर इक्वालिटी मंत्री आरियाना वोमारी ने दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति द्वारा समर्थित मूल्यों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने विशेष रूप से न्याय, गरिमा और एकजुटता का उल्लेख किया। मंत्री ने 12 सितंबर 1998 को संसद में नेल्सन मंडेला की यात्रा को याद करते हुए अपनी पुरानी यादों को भी ताजा किया। उस समय वो विपक्ष की बेंच पर बैठी हुई थी। मॉरिशस के रेडियो जगत में एक नए अध्याय की शुरुआत हो रही है। रेडियो पर 20 साल से अधिक समय बिताने के बाद रेडियो वन की जानी पहचानी आवाज फिनले सालेस सेवानिवृत्त हो रही हैं। उन्होंने रविवार को जिमांश कुलचुया के 762वें और अंतिम संस्करण को प्रस्तुत किया, जो वर्षों के दौरान एक प्रतिष्ठित कार्यक्रम बन चुका था। इससे एक दिन पहले उन्होंने अपने एक अन्य चर्चित छाप वाले कार्यक्रम पोलेमिक को आखिरी बार प्रस्तुत किया था। अपने पूरे करियर के दौरान फिनले सालेस ने अपनी विशिष्ट शैली, अपनी पेशेवर प्रतिबद्धता और मॉरिशस के लोगों की समस्याओं को हल करने के अपने दृढ़ संकल्प से एक अलग पहचान बनाई, विशेष रूप से एंकेट ऑन डायरेक्ट में, जिसे उन्होंने 2002 में मारी शैलीचैन के साथ होस्ट करना शुरू किया था। उनका जाना एक ऐसे सफर के अंत का प्रतीक है जिसने कई श्रोताओं का साथ दिया। थर्ड टर्म में स्कूल खुलने पर कक्षाओं में मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर नियंत्रण रखा जाएगा। शिक्षा और मानव संसाधन मंत्री महेंद्र गंगा प्रसाद के अनुसार इसका उद्देश्य बच्चों को साइबर बुलिंग और टेक्नोलॉजी के गलत इस्तेमाल से बचाना है, साथ ही कक्षा में पढ़ाई के दौरान ध्यान केंद्रित करने में मदद करना है। निर्देशानुसार मोबाइल फोन को साइलेंट मोड पर रखना होगा और उन्हें हर समय बैग के अंदर ही रखना होगा। इसका प्रयोग केवल चिकित्सीय कारणों और शिक्षक द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों के लिए मांगे जाने पर ही किया जा सकेगा। शिक्षकों से भी कहा गया है कि वे मोबाइल फोन के उपयोग को सीमित रखें। शिक्षा मंत्री को सुनते हैं।
2: जब एगो लड़का क्लास में रही क्लास स्वीव करे के चाहला ओकरा हर समय युवा ओकरा नहीं चाहला पोताब में रहे के, बस कि जब लड़का पोताब छेके करता एगो मिसाज आवता बच्चा था पोताब में तो नहीं सकता अपन सीजे निमन से स्वीव करे तो वे ओकरा नुकसान होवेला। ऑनलाइन हरासमेंट बुलिंग जैसे होवेला ऑनलाइन लड़का लोग फोटो वीडियो मारू फोटो मारू वीडियो से अकेले करे लगलन से तो लड़का के अफेक्ट करेला। लड़का के प्रोटेजे करे खातिन हम निकाय रेगुलेशन वन ले हैं सर और थोड़ा लेटा लेके हम मिजिया वन आते हैं सर, बस कि देखनी सर दो तीन को लेकुल डीजा हम मिजिया वन अपना ले ले वन सर और देखा था ऐसा कैसे हम लेकुल वन में डिसिप्लिन बरकरार बा।
3: दुनिया के देखे मैं आवत भविष्य में ये बहुत फायदेमंद रही हमने के पूरा देश खातिन। देख बा जहाँ दूसर देश में हई फैसला दे बोल बा कोनो कोनो देश में एक कम्प्लीटली बैन कर बा हमनियो के साथ जिसका बोलत बा कि छात्र एकदम

0: से रेस्ट्रिक्ट करे के बान करे के कहे कि जब कौंथोले कर बजा ढेर बरी से कौंथोले करते हुए जा नहीं होत बा अभी देखा जा कि एगो रेगुलेशन चलाल बा देखब सर संगे मिल के मंत्रालय संगे मंत्री संगे काम करब जा बहुत जरूरी बा कि मंत्रालय संगे एगो मीटिंग करे के एगो बैठक लगाए के जब सक जा देखे कि हई जन हमनी नवा रेगुलेशन आ रहे जा ये कैसे सक जा एक आगे लाए।
1: और विदेश की खबरों में अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा से आयातित वस्तुओं की एक विस्तृत श्रृंखला पर 50% का शुल्क लगा दिया है जिसे उन्होंने अमरीकी गाड़ियों डेयरी और शराब के साथ असमान व्यवहार का बदला बताया है। ये शुल्क 30 दिनों के भीतर प्रभावी हो जाएगा और उत्तरी अमरीकी पड़ोसियों के बीच व्यापार तनाव में एक बड़ी वृद्धि का प्रतीक है। और आखिर में चली जाती हैं स्थानीय मौसम का हाल। हमारे इलाके पर हल्की हवा बह रही है। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान है कि आज सुबह धूप खिली रहेगी, दोपहर बाद को बादल घिरे रहेंगे और दक्षिण पश्चिम दक्षिण तथा सेंट्रल प्रांतों पर कभी कभार वर्षा होगी। अन्य इलाकों पर मौसम सुहाना रहेगा। अधिकतम तापमान सेंट्रल प्रांतों पर 23 से 25, अन्य इलाकों पर 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। रात के दौरान आमतौर पर बादल घिरे रहेंगे। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्रांतों पर 14 से 16, अन्य इलाकों पर 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। हवा उत्तर पूर्व की ओर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। प्रवाह रेखा के परे समुद्र चंचल रहेगा और दक्षिण पश्चिम के समुद्र में 2 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। आज सुबह 6:44 पर सूरज उगेगा और शाम 5:48 पर सूरज ढल जाएगा।

0: तो मौसम संबंधी जानकारियों के साथ ही समाचार समाप्त हुए। हम यूसुफ को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद देते हैं। इस समय सुबह के 6:41 हुए हैं। थोड़ी देर में आप शोक समाचार सुन पाएंगे।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
0: लीजिए शोक समाचार सुनिए। लाकावेन वाकवा में 70 साल की 70 years old की श्रीमती इंद्रावती किरोधर पैदायशी नाम जोगी और जो इंदिरा नाम से भी जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी कल सुबह दस बजे उनके पति श्री रमेश किरोधर के घर लाकावेन वाकवा से उठाकर सुल्फेरिनो की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 10 AM। रिवरसाइड रोड लालोहा में 92 साल की 92 years old की श्रीमती मंदोदरी रामखेलावन पैदायशी नाम बिंदा और जो दुलारी नाम से भी जानी जाती थी की मृत्यु हो गई हैं। उनके अर्थी आज दिन के 1 बजे उनके बेटे किशोर रामखेलावन के घर रिवरसाइड रोड लालोहा से उठाकर सिया कॉन्स्टांस की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM। रॉयल रोड पॉइंट ऑफ फ्यू में 75 साल की 75 years old की श्रीमती पुण्यावती नामवा जो मुनिया नाम से भी जानी जाती थी की मृत्यु हो गई हैं। उनके अर्थी आज दिन के 11:30 उनके पति श्री सुनंद झमन के घर रॉयल रोड पॉइंट ऑफ फ्यू से उठाकर बुशों की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 11:30। ब्लॉक B6 हाउसिंग एस्टेट गोकुला में 58 साल के 58 years old की श्री राजमोहन जीवन जो गासों नाम से भी जाने जाते थे की मृत्यु हो गई हैं। उनके अर्थी आज दिन के 1 बजे उनकी पत्नी श्रीमती बिमला जीवन के घर ब्लॉक B6 हाउसिंग एस्टेट गोकुला से उठाकर लामिछे की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM। भोगन रोड रिविया जुहोपाव में 43 साल के 43 years old के श्री राजकुमार ईसर जो भाई तारा नाम से भी जाने जाते थे की मृत्यु हो गई हैं। उनके अर्थी आज दिन के 12:30 उनकी मां श्रीमती हेमलता ईसर के घर भोगन रोड रिविया जुहोपाव से उठाकर पीतों की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 12:30 PM। AB08 NHDC बोवालो में 47 साल की 47 years old की श्रीमती वेनिला रामेन पैदायशी नाम गोविंदन और जो युवाना नाम से भी जानी जाती थी की मृत्यु हो गई हैं। उनके अर्थी आज दिन की 11:00 उनके घर AB08 NHDC बोवालो से उठाकर तोम्बो में बर्ग की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11 AM। रॉयल रोड लेस्पेरांस कल्सिम लिटेयर में 97 साल की 97 years old की श्रीमती एनकामा पापिया जो तुलसो नाम से भी जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज दिन के 1 बजे उनके

बेटे धर्मवीर आपादू के घर रारोद लेस्पेरांस कल से मिलिट्री से उठाकर वहीं की शमशान भूमि ली जाएगी. क्रोमिशन टुडे एट 1 PM. माचू रोड दुफ्रिया में 49 साल के 49 years old के श्री विनय राम भरत, जो अनिल नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है. उनके अर्थी आज दिन के 2 बजे उनके भाई विजय राम भरत के घर माचू रोड दुफ्रे से उठाकर बुशों की शमशान भूमि ली जाएगी. क्रिमिशन टुडे एट 2 PM. भंजन रोड सैन लुई सुरीनाम में 75 साल के 75 years old के श्री दर्शानंद शिवदीन, जो दर्शानंद नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है. उनके अर्थी आज दिन के 2:30 बजे उनके घर भंजन रोड सैन लुई सुरीनाम से उठाकर सुरीनाम की शमशान भूमि दी जाएगी. क्रिमिशन टुडे एट 1:30. शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हमारी संवेदना है.

0: 819 kilohertz. This is Radio Marxist.
1: चलिए 6:51 आगे बढ़ने से पहले लेते हैं सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा जारी की गई एक विज्ञप्ति। बुबासा के आसपास के इलाके जिनमें हैं डॉक्टर रीड, शेरी लेनॉर्ड, जुपेया, शातोनेफ के इलाकों में रहने वालों को सूचित किया जाता है कि मंगलवार 21 जुलाई को दोपहर के 1 बजे से लेकर शाम के 5 बजे के बीच मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। मरम्मत कार्य पूरा होते ही बिजली की सप्लाई को सुचारू रूप से जारी कर दिया जाएगा। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने सभी ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी हैं और ये विज्ञप्ति जारी की गई थी सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा। इसी के साथ आइए आगे का कार्यक्रम जारी रखते हैं और स्पोर्ट्स न्यूज़ सुनते हैं अरविंद बिसेसार की प्रस्तुति में।
0: 819 kilohertz. This is Radio Marxist. Sports News.
2: सभी श्रोताओं को अरविंद का नमस्कार। इस खेल समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत है। शुरू करते हैं इस दुखद खबर के साथ। केविन कीगन, इंग्लैंड का पूर्व इंटरनेशनल खिलाड़ी और मैनेजर अब नहीं रहे। कल 75 साल की आयु में कैंसर से पीड़ित केविन कीगन चल बसे। 2 बार बालों दो विजेता केविन कीगन अपने समय के बेहतरीन खिलाड़ियों में एक थे। 750 मैच, 3 बार लिवरपूल के साथ चैंपियन, 1978 और 1979 में बैक टू बैक बालों दो विजेता। केविन कीगन लिवरपूल के साथ 323 मैच खेल पाया था। मैनेजर के पद में केविन कीगन न्यूकासल यूनाइटेड, फुलहम, मैनचेस्टर सिटी, न्यूकासल यूनाइटेड का मैनेजर रह चुका था। किंग केव को अलविदा। स्पेन के खिलाफ हार के बाद अर्जेंटीना के खिलाड़ी और बैकरूम स्टाफ स्पेन के खिलाड़ियों से लड़ने लगे थे। ऐसे में सस्पेंशंस होने वाले हैं और ये तहकीकात शुरू कर चुकी है फीफा। एक डिसिप्लिनरी और एथिक्स प्रोसिक्यूटर को नियुक्त किया गया है। उधर मद्रिद में स्पेन की जीत का जश्न मनाया जा रहा है। अखबारों में बस यही सुर्खियां हैं, बी कैंपियोनेस इस्पानिया इनवेंसिबल एन ला सीमा डेल मुंडो। एयरपोर्ट में मैनेजर लुइस डे ला फुएंते और कप्तान रोड्री हवाई जहाज से पहले उतरे। वर्ल्ड कप रोड्री के साथ था। सबसे पहले जॉर्जुएला पैलेस गए किंग फिलिप सिक्स, क्वीन लिटिजिया, प्रिंसेस लियोनो और इन्फेंटा सोफिया से मिलने। ओपन बस परेड शुरू हुआ। सड़कों पर लाखों फैंस अपने हीरोज को बधाई देने आए हुए थे। वर्ल्ड चैंपियन बने, सेलिब्रेशन जारी है। इटली की टीम वर्ल्ड कप में तो नहीं थी, खबर है इटालियन फेडरेशन पेप ग्वार्डियोला को इटली का नया मैनेजर बनाना चाहते हैं। नया टेक्निकल डायरेक्टर पाओलो मालदीनी उससे बात कर रहा है। ट्रांसफर न्यूज, चेल्सी एक के बाद एक नए खिलाड़ियों को साइन कर रहा है। इस बार क्रिस्टल पैलेस का डिफेंडर मैक्सिमस लाक्रोआ टारगेट है। 60 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग की डील

0: हो सकती है। एस्टन विला से मॉर्गन रोजर्स भी 117 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग पर चेल्सी में आ रहा है। इधर मैनचेस्टर यूनाइटेड की नजर रोमा और फ्रांस के मिडफील्डर मानु कोने पर है, पर आर्सेनल भी इस रेस में है, द गनर्स निको विलियम्स के पीछे भी है। सो खेल समाचारों में फिलहाल इतना ही, आपके ध्यान के लिए शुक्रिया, आगे दीजिए नमस्कार, आप सभी लोगों को अरविंद की ओर से शुभ दिन।
1: रेडियो मॉरिशस 8.9 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस।
2: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस,
3: सुबह का नजराना लाए खुशियां हजार, रेडियो मॉरिशस पर।

0: 6:56 हो चुके हैं और आज की सुबह इस कार्यक्रम में, सुबह का नजराना कार्यक्रम में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। इस समय बिल्कुल हम जुड़ चुके हैं मीडियम 819 किलोहर्ट्ज़ पर। मैं हूँ रत्ना, आपका साथ देने आ पहुंची हूँ। 21 जुलाई 2026 मंगलवार का दिन और इस सुरीली सुबह में आपका पुनः हम स्वागत करते हैं। आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत हम करने जा रहे हैं चिंतन के साथ और इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करेंगी डॉक्टर लक्ष्मी जमन। आइए उनका स्वागत करते हैं।
1: मूल्य, सदाचार और आत्मिक संतुलन का संगम चिंतन, जहां विचारों में मिठास और मन में शांति। आइए सुनते हैं आज का चिंतन।
2: प्रयोजन से या अभाव से हम जो भी कर्म करते हैं, वही कर्म हमारे बंधन का कारण है। आनंद से जो करते हैं वह बंधन का कारण नहीं हो सकता, वस्तुतः वही कर्म मुक्ति है।

चलिए इसी के साथ है जल क्यों मैं आपको बताते चले कि आज कौन कौन से कार्यक्रम रखे गए हैं आप सभी के लिए रेडियो मॉरिशस की लहरों पर। जी हाँ, इस वक्त सुबह का नजराना आप के साथ जुड़ी हुई है रत्ना, और ये कार्यक्रम जारी होगा 9 बजे तक। इसी के अंतर्गत 8 बजे हम जुड़ेंगे भोजपुरी समाचारों के साथ, 8:15 बजे करवाएंगे आपकी मुलाकात एक ऐसी नई अभिनेत्री के साथ जिन्होंने कुछ ही समय में बॉलीवुड में अपनी जगह कायम की। 8:50 पर किरण जानकी का साथ रहेगा हमारी धरोहर कार्यक्रम में भोजपुरी गीत का आनंद उठाते हुए। 9 बजे के समाचारों के साथ जुड़ेंगे और 9 बजे के समाचारों के बाद आज की चर्चा का कार्यक्रम जारी रखा जाएगा। और आज के इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता होंगी सुमिता सरकार। आपको ये भी याद दिला दे, आज 21 जुलाई वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे पर बात की जाएगी, और आज के इस कार्यक्रम की मेहमान होंगी नंदिनी झुमक। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण रेडियो मॉरिशस के लहरों पर आप सुन पाएंगे, और साथ ही साथ MBC के तीसरे चैनल पर इसे आप देख पाएंगे और MBC ऑनलाइन पर आप इसे फॉलो कर पाएंगे। जी हाँ, और इसी के साथ ये कार्यक्रम 9 बजे से 10 बजे तक रखा जाएगा। वैसे इस कार्यक्रम में अगर कुछ भी छूट गया है तो पुनः इसी कार्यक्रम का रीब्रॉडकास्ट आप सुन पाएंगे दोपहर के 3 बजे से 4 बजे के बीच रेडियो मनोरंजन पर। 10 बजे के समाचारों के बाद पुनः मैं आपकी सेवा में उपस्थित रहूंगी भक्तिमय गीतों के साथ, भक्ति धारा कार्यक्रम को लेकर। और इसी कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुन पाएंगे आचार्य सुदेश बद्री जी को वेद सुधा कार्यक्रम में। 11 बजे के समाचारों के बाद आप विविध भाषाओं के कार्यक्रमों का आनंद उठा पाएंगे, जिसकी शुरुआत होगी शम्मे फरोजा कार्यक्रम के साथ, जो होगा उर्दू भाषा में, और इसकी पेशकश की जाएगी सैयदा सुबाई द्वारा। 12 बजे सौंदर्य लहरी तेलुगु भाषा का कार्यक्रम लेकर आएंगी वर्षा। 12:30 बजे सीताबाई दरमिया की प्रस्तुति में होगा मराठी गीतों का कार्यक्रम। ठीक 1 बजे कलाईवानी की प्रस्तुति में होगा तमिल भाषा का कार्यक्रम। 1:45 बजे अमिता की प्रस्तुति में गुजराती गीतों का कार्यक्रम रंगारंग। 2:00 बजे मैंडरीन का कार्यक्रम

ये प्रस्तुत किया जाएगा डेविड की ओर से 2:30 बजे आप ही का पसंदीदा कार्यक्रम आपकी पसंद, जिसे प्रस्तुत करेंगी रोशनी। शाम 4 बजे कलाईवानी वीरन द्वारा एक बार फिर तमिल भाषा का कार्यक्रम रहेगा। शाम 5 बजे पुराने गीतों का सफर, भूले बिसरे गीत, इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करेंगी उषा कौर। शाम 6 बजे देश विदेश की खबरें समाचार बुलेटिन में। 6:30 बजे पुनः आपके लिए सजाए जाएंगे विविध भाषा के कार्यक्रम, जिसकी शुरुआत होगी मैंडरीन कार्यक्रम के साथ। हांगकांग की प्रस्तुति में रहेगा ये कार्यक्रम। 7 बजे पुवना लेकर आएंगी तमिल भाषा का कार्यक्रम। 7:30 बजे कृतिका की प्रस्तुति में होगा स्वरला वेदिका, ये कार्यक्रम जो होगा तेलुगु भाषा में। 7:50 पर गीत गंगा, मराठी गीतों का ये कार्यक्रम चलाया जाएगा श्रीश रामा की प्रस्तुति में। 8:10 पर भक्तिमय यात्रा, भजले प्रभु का नाम, जिसे प्रस्तुत करेंगी देवीना। 8:40 पर महफिले शब, उर्दू भाषा का कार्यक्रम, ये चलाया जाएगा निसार अख्तर की प्रस्तुति में। रात के 9 बजे से लेकर रात के 11 बजे के बीच भोजपुरी तड़का कार्यक्रम, आज के कार्यक्रम को प्रस्तुत करेंगे प्रताप। रात के 11 बजे से 12 बजे के बीच एक बार फिर पुनः पुराने गीतों का सफर रहेगा सुनहरे पल, जिसे सजाएंगी नीतुषा। और रात के 12 बजे से लेकर कल सुबह 6 बजे के अंतर्गत ओवरनाइट प्लेलिस्ट, जो हमारे प्रोडक्शन असिस्टेंट द्वारा सजाई जाती है। वैसे दिन के 2 बजे से 3 बजे के बीच हमारी और आपकी पुनः भेंट होगी रेडियो मनोरंजन के लहरों पर उड़ान की कहानी कार्यक्रम में, जहां पर आज हमारे साथ जुड़ेंगी रीना नौरतन, जो कि एक एस्थेटिशियन है और साथ ही साथ महिलाओं को सुंदर करने का जिम्मा उन्होंने उठाया है। तो आज की कहानी होगी उन्हीं की कहानी, और वे एक एस्थेटिक इंजेक्टेबल प्रैक्टिशनर भी हैं। अब इस पर क्या चर्चा होगी, ये ज़रूर आप हमारे कार्यक्रम को सुन सकते हैं रेडियो मनोरंजन पर, दोपहर के 2 बजे से 3 बजे के बीच रेडियो मनोरंजन पर। तो आइए सुबह का नजराना कार्यक्रम को जारी रखते हैं बेहतरीन पुराने गीतों के इस सफ़र में। और ये जो अभी थोड़ी देर पहले हमने गाना चलाया था, बिल्कुल आस का पंछी फिल्म से लिया हुआ गीत था, सुबीर सेन की प्यारी सी आवाज़। और इस फिल्म में संगीत निर्देशन था शंकर जयकिशन साहब का, वैजंती माला और राजेंद्र सिंह इस फिल्म में नजर आए थे। 1961 के दौर का गीत था। भाई कहते हैं ना, दिल पंछी के समान है और जो आज़ाद हवा में ऊंची उड़ान भरना चाहता है, पर जिम्मेदारियों का जो बोझ होता है वो हमारी आज़ादी को कभी कभी बिल्कुल ख़त्म कर देती है। पर लाजवाब गीतों के सफ़र में चलिए, किसी ने हमसे ये भी कहा कि ये जो गाना हमने अभी भी चलाया, उनको एक अलग सी ऊर्जा महसूस हुई है। तो इस ऊर्जा को जारी रखते हैं और अगला गाना भी आप ही के लिए हम चला रहे हैं। 1951 के दौर का ये गीत है शमशाद बेगम की प्यारी सी आवाज़, और इस फिल्म में भी नज़र आई थी वैजंती माला। संगीत निर्देशन SD बर्मन साहब का।

नौकरी बिन रिश्वत हो काम, अरे इसी को अनहोनी कहते हैं, इसी का कल जुग नाम।

खिलाया। कौन सिपाही किस दफ्तर से कैसे हो गई चोरी, किसने कितनी गद्दारी की कितनी भरी तिजोरी, किस मिल मालिक के पैसे

जो गाना था आदमी और इंसान, फिल्म से लिया हुआ गीत, 1969 के दौर की ये मूवी रही। 8 अगस्त को ये फिल्म रिलीज हुई थी और इस फिल्म में धर्मेंद्र, सायरा बानू, फिरोज खान और मुमताज नजर आए थे। संगीत निर्देशन था रवि साहब का और शब्द यानी बोल सजाए गए थे साहिर लुधियानवी के। लाजवाब गीतों का ये सफर और बिल्कुल सुबह का नजराना कार्यक्रम में आप अभी इस वक्त काम पर जाने की तैयारी में होंगे, तो बस काम के लिए एकदम स्फूर्ति से आप तैयार होकर काम की ओर निकले, क्योंकि एक नया दिन खिला है और एक नए दिन के साथ नई ताजगी, नई उमंग बस आपके जीवन में यूं ही प्रवाहित होती रहे। हमारी कोशिश तो यही है कि गीतों के द्वारा ये ऊर्जा को हम बरकरार रखें। तो आइए अगले गीत को हम लेते हैं और मोहम्मद रफी और लता जी की प्यारी सी आवाज, आओ प्यार करें, 1964 के दौर का ये गाना।

0: दोस्तों, पहले के जमाने में या पहले के दिनों में प्यार का इजहार करना पहेलियों जैसा हुआ करता था और उस नजाकत से भरी हरकतों को हया कहा जाता था। पर आज का जमाना कहते हैं ना कि स्ट्रेट फॉरवर्डनेस का हो चुका है। पर कुछ भी कह लो, हर जमाने का एक अलग ही मजा, एक अलग ही अंदाज देखने को मिला है। चलिए, चलते चलते बस यही कहेंगे कि फिसल कर वक्त के फर्श पर उम्र ढल जाती है। कई बार बिना जिए भी जिंदगी गुजर जाती है। सुकून वहां नहीं मिलता जहां धन मिले। सुकून तो वहां मिलता है जहां मन मिले। जीवन आनंद लेने के लिए है, खुशियां बांटने के लिए है, सहन करने के लिए थोड़ी। चलिए, 7:24 और मजेदार गीतों को सुनते हुए दिन को और भी तरोताजा बनाता है ये अगला गाना मिस मेरी फिल्म से लिया हुआ किशोर कुमार साहब की प्यारी सी आवाज में।
1: गाना न आया, बजाना न आया, दिल

की सड़क टेढ़ी है देसी राग की ई ई ई ई चल मोड़ ले टमटम गले को गर्म कर ले गले को गर्म कर ले छोड़ अंग्रेजी में एक एटम हाँ अंग्रेजी में एक एटम हाँ अंग्रेजी में एक एटम ता तारा

कुछ भी कह लो, किशोर कुमार साहब के ऐसे मस्ती भरे गाने आपको हंसने पर मजबूर कर ही देते हैं। और लाजवाब गीतों का ये सफर, जहाँ पर कुछ अनसुने गाने हम हमेशा शामिल करने की कोशिश करते हैं। और 7:29 हो चुके हैं, मंगलवार का दिन आपके लिए बहुत बहुत खुशियाँ लेकर आए। चलिए, गम और खुशी ये हमारे जिंदगी के पहलू हैं। कभी कुछ दिन हम गम से गुजरते हैं, गम बिताते हैं, और कभी कुछ दिन हमारे लिए ऊपर वाला बस खुशियों का पिटारा मानो खोल देता है। दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत ही लाजवाब बात किसी ने लिखी हुई है जो हम आपको पढ़कर सुना रहे हैं कि जेब, जुबान और जूता एक ही राशि के हैं, मगर तीनों अलग अलग तापमान पर काम करते हैं। जेब गर्म हो जाए तो अक्सर दिमाग ठंडा नहीं रहता, जुबान गर्म हो जाए तो रिश्ते नहीं रहते, और अगर जूता गर्म हो जाए तो कदम नहीं चलते। कितनी सच बात कही है। चलिए, सुबह का नजराना कार्यक्रम और इस समय स्टूडियो की घड़ी में बिल्कुल एग्जैक्टली

7:30 बज चुके हैं और ये जो अगला गाना है बहुत ही मज़ेदार गाना, फिल्म अप्रैल फूल से लिया गया, और अगर आपका नाम रीटा है तो ये गाना हम आपके नाम करना चाहेंगे ज़रूर लता जी की प्यारी सी आवाज़ में।

देखो कसम से, देखो कसम से, कहते हैं तुमसे हाँ। तुम भी जलोगे, हाथ मलोगे, रूठ के हमसे हाँ। देखो कसम से, कसम से, कहते हैं तुमसे हाँ। तुम भी जलोगे, हाथ मलोगे, रूठ के हमसे हाँ।

तुम भी चलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे हाँ आ देखो कसम से कहते हैं तुमसे हाँ तुम भी चलोगे हाथ मलोगे रूठ के हम

0: कुछ कहो भी हमसे लो ठहर गए हम, कुछ कहो भी हमसे बन के न चलिए तन के न चलिए, कहते हैं तुमसे हाँ तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे हाँ।
1: देखो कसम से कहते हैं तुमसे हाँ, तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे हाँ।
0: हाय

0: 819 kHz, ये है रेडियो मॉरिशस. रेडियो मॉरिशस.
1: Depuis premier jour, nous fin toujours là. À zout l'écoute, à zout côté. À chaque moment important de zout la vie. Nous extra happy trouve zout tous les jours connectés, grandis, épanouis. Et ensemble, nous peut continuer. Continuer causer, riez, partager, se dépiler, danser, amuser, rêver, vibrer. Zodi, nous encore plus confiants pour dîmer. Côte chaque nouveau technologie qui nous peut amener pour faire chaque Mauricien vivre l'expérience encore plus mighty serré. Et c'est qu'ici, nous pouvons la même à l'autre côté. Zodi, dîmer, vive-li avec mighty.
2: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ.
3: कभी सोचा है
4: एमबीसी रेडियो के स्टूडियो से लाइव और डायरेक्ट
3: लिस्नर्स से बात करना कैसा लगता होगा?
4: मोस्ट पॉपुलर बॉलीवुड हिट्स प्ले करना,
3: मस्ती करना और पूरे मॉरिशस को एंटरटेन करना कैसा लगता होगा? अगर हाँ तो फिर ये है आपका मौका.
4: एमबीसी रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे
3: ओपन टू ऑल मॉरिशियंस. बस 60 सेकंड से कम का एक धमाकेदार वीडियो बनाइए
4: और हमें सुनाए अपनी आवाज का मैजिक, कॉन्फिडेंस, एनर्जी और पर्सनालिटी.
3: वीडियो हो सकता है हिंदी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, उर्दू या चाइनीज में.
4: अपना वीडियो भेजिए ऑन एमबीसी रेडियो व्हाट्सएप नंबर 5251-6363.
3: और आखिरी तारीख है 26th of July. तो कैमरा ऑन कीजिए, टैलेंट दिखाइए और हो सकता है अगली बार स्टूडियो के इस माइक के पीछे आप बैठे हो.
4: एमबीसी रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे. एमबीसी रेडियो पर आपकी आवाज, आपका स्टाइल
3: और आपका चांस.
4: डोंट मिस इट.
5: रेडियो मॉरिशस
6: 819 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस.
5: रेडियो मॉरिशस.
6: रेडियो मॉरिशस.
7: सूरज की चमचमाती किरणों के साथ सुबह का नजराना.

इस समय स्टूडियो की घड़ी में 7:40 और जिसका होता है आपको बेसब्री से इंतजार, उस सेगमेंट को लेकर हम आ पहुंचे हैं छोटी सी बात। और आज की ये छोटी सी बात, दोस्तों कहते हैं ना कि जिंदगी के हर पहलू पर हर परिस्थिति हमें कुछ ना कुछ सिखाने को आती है, पर हम क्या करते हैं, सीखने के बजाय उसमें से बस नुक्स ढूंढते रहते हैं, कंप्लेन करते रहते हैं और हर एक चीज में बस अपने आप को और चिड़चिड़ा बना देते हैं। चलिए इसी पर आधारित आज की ये छोटी सी कहानी जो हमें इतनी ज्यादा गहरी बात समझाती है, और ये कहानी है एक सत्य घटना पर आधारित जो लिखी गई है अनूप कुमार बेदी द्वारा, और ये उनके जीवनी पर आधारित है क्योंकि उन्होंने इस मोमेंट को एक्सपीरियंस किया है। तो इस कहानी को बिल्कुल उन्होंने लिखा है और ये हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये बात कर रहे हैं उनके एक सफ़र की जिसमें वे दिल्ली से मुंबई जब हवाई जहाज से वापस आ रहे थे, और वे लिखते हैं कि पिछले सप्ताह दिल्ली से मुंबई की मैं अपनी उड़ान तय कर रहा था, और अपनी उड़ान के दौरान मैंने एक ऐसे क्षण का अनुभव किया जिसे मैं जीवन भर अपने साथ रखूँगा। मैं अभी अपनी खिड़की वाली सीट पर ठीक से बैठा ही था कि एक 7 साल से भी कम उम्र वाला एक छोटा सा लड़का अपने पिता का हाथ पकड़े हुए मेरे पास आकर रुक गया और कहा, अंकल अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या मैं खिड़की के पास बैठ सकता हूँ प्लीज़। इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता, उनके पिता ने तुरंत कहा, माफ़ कीजिएगा सर, आपको अगर कोई आपत्ति ना हो तो जब से ये एयरपोर्ट में दाखिल हुआ है तब से ये यही पूछ रहा है कि क्या उसे खिड़की वाली सीट मिलेगी, पर अगर आप अपनी सीट पर बैठना चाहें और ये सीट ना देना चाहें तो कोई बात नहीं। मैं मुस्कुराया और उठकर मैंने कहा, ये लो चैंपियन, आओ यहाँ बैठ जाओ। उसका चेहरा एकदम से खिल उठा, वो खिड़की की ओर दौड़ा, कुछ क्षणों के लिए अपने छोटे हाथों को शीशे पर दबाए रखा, मुस्कुराया और फिर उड़ान भरने के कुछ ही मिनट बाद उसने अपना सर अपने पिता के कंधे पर रखा और चुपचाप सो गया। वो लगभग पूरी उड़ान के दौरान सोता रहा। लैंडिंग से लगभग 20 मिनट पहले उनके पिता ने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराए और कहने लगे, मुझे लगता है कि उसने अपनी खिड़की वाली सीट का कोई ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया। मैंने जवाब दिया कि कोई बात नहीं, वो थका हुआ लग रहा था। थोड़ी देर की खामोशी छा गई, फिर उसके पिता ने कहा, हाँ वो एक्चुअली हमने पिछले 8 महीने दिल्ली में बिताए। पिता ने कहा कि राजीव गांधी कैंसर संस्थान और अनुसंधान केंद्र में उसका गंभीर एप्लास्टिक एनीमिया का इलाज चल रहा था। कई बार तो हमें ये भी नहीं पता था कि हम घर लौट पाएंगे या नहीं। आज पहला दिन है जब डॉक्टरों को लगा है कि ये यात्रा करने के लिए पूरी तरह से स्वस्थ है। मैंने उस छोटे से लड़के को फिर से देखा। कुछ देर पहले मैंने एक छोटे से बच्चे को खिड़की वाली सीट मांगते हुए देखा था, पर अब मुझे उसमें एक योद्धा नजर आ रहा था जिसने बादलों के ऊपर के दृश्य से कहीं अधिक कीमती चीज के लिए महीनों तक संघर्ष किया था। उसके पिता ने फिर मुझसे पूछा, क्या आप जानते हैं कि वो खिड़की वाली सीट इतनी बुरी तरह से वो क्यों चाह रहा था वहां बैठने के लिए? तो मैंने सर हिलाते हुए कहा, नहीं। उसने कहा कि पापा जब हम बादलों के ऊपर होंगे तो मैं भगवान के थोड़े और करीब हो जाऊंगा और मैं भगवान को थैंक यू कह सकूं। थैंक यू कहना चाहता हूं क्योंकि उन्होंने मुझे थोड़ा सा अच्छा कर दिया, थोड़ा सा ठीक कर दिया ताकि मैं अपने घर जा सकूं। अनूप कुमार बेदी लिखते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या कहूँ। मैंने नज़रें फेर ली और चुपचाप से अपनी आँखों से आंसू पोंछ लिए। जैसे ही हम टर्मिनल की ओर बढ़े, उनके पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद, आपने उनका दिन बना दिया।
पर सच तो ये था कि उन्होंने मेरा दिन बना दिया। उस उड़ान ने मुझे याद दिलाया कि हम लोगों से केवल कुछ क्षणों के लिए मिलते हैं, जबकि कई बार ऐसा भी हो सकता है कि ये लोग जो हैं वो कई दिनों से या कई सालों से किसी बोझ को ढो रहे हों। वो कोई भी हो सकता है, एक अधीर ग्राहक, एक दर्द से पीड़ित व्यक्ति, एक विचलित सहकर्मी, या फिर थके हुए हमारे माता पिता। एक शांत स्वभाव का बच्चा खिड़की के पास बैठने की जिद कर रहा है और हम केवल उसका व्यवहार देखते हैं। हम इसके पीछे की लड़ाई को शायद कभी देख नहीं पाते। शायद सहानुभूति की शुरुआत बड़े बड़े दिखावे से नहीं होती, इसकी शुरुआत निर्णय लेने से पहले करुणा को चुनने से होती है। आप जिनसे भी मिलते हैं वे अपने साथ एक ऐसी कहानी लिए हुए घूमते हैं जिसे हम देख नहीं सकते। दयालुता एक ऐसा छोटा सा कार्य है किसी और के लिए, जीवन भर के लिए ये यादगार भी बन सकता है। कभी कभी सबसे सुंदर दृश्य खिड़की के पास से नहीं दिखता, बल्कि नजरिए से देखने पर ही दिख जाता है। किसी को खिड़की वाली सीट देने के बाद मुझे जो मिला वो मैं जीवन भर याद रखूंगा। अनूप कुमार बेदी। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें सच में एक बहुत बड़े चीज की एहसास दिलाती है कि हम आए दिन जो हमारे सामने चीखता है, चिल्लाता है, अपना दर्द व्यक्त करता है, उसके दर्द को हम पहचान ही नहीं पाते। कई बार कोई इंसान हमसे बहुत ही चिड़चिड़ेपन में बात करता है, पर हो सकता है कि वो एक ऐसे मुश्किल दौर से गुजर रहा है जिसका बयां नहीं कर पा रहा। चलिए दिल से उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं और आज की ये छोटी सी कहानी एक बार फिर हमें सोचने पर मजबूर करती है।

0: कभी तो हंसाए।
1: चलिए 7:51 और लाजवाब गीतों का ये कारवां आगे बढ़ाते हुए आपके नामों को जोड़ने का समय हो चला है, डेडिकेशन टाइम। और बिल्कुल यहाँ पर हमारे जितने भी श्रोता हमें कॉल करते हैं, मैसेज भेजते हैं, बस दिल से आपको कहेंगे थैंक यू इतना प्यार देने के लिए। यहाँ पर विश्वानी जी हमेशा हमारा साथ देती हैं। विश्वानी जी है पुद्गदो आमलेट से, उनकी प्यारी भाभी सुबीता और बहनें हैं इंदिरा, रीटा और शादा, हमेशा साथ देने के लिए। और यहाँ पर बिल्कुल घोंगोब से जुड़ी हुई हैं श्यामा जी, श्यामा रघुनंदन, उनके प्यारे भैया जयप्रकाश, भाभी हैं नम्रता, साथ है केशव और युधीश, और साथ दे रहे हैं उनकी प्यारी सखिया वीना रामफल और विश्वानी दुखी, और साथ ही साथ उनकी प्यारी बहन विजयंती जी, जिनका जन्मदिन था कल 20 तारीख को यानी सोमवार को, और 19 तारीख को विजयंती जी और जसवंत सिंह जी का उनकी शादी की सालगिरह रही। उनके बेटे रविंदर सिंह, बेटी सिमरन सिंह और भैया जयप्रकाश, राम प्रकाश, रामराज और बहन श्यामा की ओर से बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद उनको हमेशा मिलता रहे। बहुत बहुत प्यार आप सभी को। और इसी के साथ नोवेल फोन से हमेशा जुड़ने वाली गायत्री जी भी हमारे साथ है, उनकी प्यारी भाभी शकुंतला जी का भी प्यार से मैसेज यहाँ पर आ पहुँचा है, और साथ ही साथ बेटे अजय और मामी कल्याणी मोहन जो हमेशा साथ देती हैं मेबक से, उनका भी साथ रहेगा। यहाँ पर गायत्री जी की सखी गीता बाई भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं नोएल फ्रांस से, बेटा शिवाजी, बहू श्वेता बाई और साथ ही साथ बेटी सुधा बाई और प्यारी सी बिश्वी बाई, दिया बाई और बेटा मल्हार। साथ है कमला जी और आजी लाखन भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, बहुत बहुत प्यार आपको। काटोबोन से माला सुमारू जी, फ्लोगयाल से माधुरी जी, वाकवा से है शोभा जी और उनकी प्यारी बहनें अनुषा शर्वी, उनकी प्यारी बेटियां अनुषा और शर्वीना, बहन है जय प्रेमिला जयमंगल और वीना जी जो है मोर्चिदा से, प्यारी सखी राधा बाल गोबिंद ये भी मोर्चिदा से ही हैं, और साथ ही साथ अवनीश और अर्नवी हमेशा की तरह साथ देते हुए, क्लावित से विजय बंधन और उनका पूरा परिवार साथ जुड़ा है, पत्नी रेखा, बहनें हैं चंदनी, बिंदु, कुमारी और साथ ही साथ उनके सभी दोस्त। और यहाँ पर मोडाल बैसे अनीता लाल जी, गोगा परिवार, ईतु परिवार और नागेश्वर परिवार के साथ जुड़ी हुई हैं, कौंदेमा से प्रेमिला सी गुलाम और उनकी प्यारी बहनें रागिनी और साधना जो है बेचू परिवार से, ग्रीष्मा फ्लाक से, त्रियोले से है अनसुईया राम केलावन, शिवरानी जी हमारे साथ है घोंबुआ से, उनके प्यारे बेटे सुधीर शर्मा, सुनाही, बहू है रोशनी जो है काटोबोन से और पोते शिरीष, शिखा और साथ है नाती शिवान, बेटा राज और बहू है आरती जो इस वक्त जुड़े हुए हैं घोंबुआ से, और उनके बेटे यश, बहू अंजलि और कबीर के साथ, यहाँ पर उनकी प्यारी बेटी शर्मिला सीचन और नातीन है उर्वशी रघुबा जो काटोबोन के रहने वाले हैं, और यूके से हमारा साथ दे रही हैं कृष्णा कुमारी गौरी शंकर, उनकी प्यारी बहन। क्योपिप से गीता जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, बौशेगी से लीला जी साथ दे रही हैं, गीता जी हैं पोफिया की रहने वाली और उनके प्यारे पति रोहित, साथ है आदित्य, आरव, तनिष और उनकी नातिन जानवी, तीन बेटे तीन बहुओं के साथ। रिवेजपुर से उदय जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, घोंगोब से साथ दे रही हैं सुनीता जी, साथ है उनकी तीन प्यारी बहनें विमला, अमृता और वीना जी, ग्रैंड रिवर साउथ ईस्ट

से हैं शीला जी पति साजन के साथ, त्रियोले से सूरज शर्मा सजादा साथ है, काट्रबोन से स्वस्ति जी उनकी प्यारी बेटी लेखानी और सुमित के साथ, और यहाँ मीला राम सामी का भी मैसेज आ चुका है काट्रबोन से, शीला बिमाना भी हैं हमारे साथ पालमा से, लचम सिगोबीन परिवार जो है क्लियाफो वाकवा से आपका भी मैसेज हम तक आ पहुंचा है, बहुत बहुत धन्यवाद क्लियाफो के साथ साथ क्लियाफो वाकवा के आप रहने वाले हैं, और काटकुकु से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं कमला जी, रामन और सीपॉल परिवार के साथ, हाईलैंड से जुड़ी हुई हैं उषा जी, कुंज बिहारी और मोहन सिंह परिवार के साथ, ओलिविया से चिंता जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, और प्यारी बेटी सचिता को बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहती हैं जिनका जन्मदिन है, और मानती जी आपकी प्यारी सखी जो रहती हैं नोएल फ्रांस से, उनका जन्मदिन था कल, मानती जी आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो हमारे सब टीम की ओर से। गौबुआ से लीलो जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, और साथ ही साथ इस वक्त खेत में हैं अपनी प्यारी सखी गीता के साथ, और उनकी प्यारी बहन मानती इस वक्त घर से हमारा साथ दे रही हैं। मीराबाई दमिया भी बहुत खुश है आज गीतों को सुनकर, मॉडल बिया से साथ दे रही हैं, दमिया और पादिया परिवार का नाम जोड़ते हैं आज के इस कार्यक्रम में। इंदिरा लॉटन आप भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, और अप्रैल फूल का गाना सुनकर आपको याद आ गया कि आपकी प्यारी सखी रीटा का जन्मदिन है, और वे जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल में काम करती हैं, तो बस उनको विश करना चाहती हैं जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। नीता खेदनी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं सेंट जूलिया विलाज से, और आज जन्मदिन मना रही हैं, हालांकि कल मनाएंगी माला जी अपना जन्मदिन 22 तारीख को, आपकी पोती आपकी बहू यानी आपकी बहू हैं ये, और आप उनकी फूफू सास हैं, उनके पति हैं दान बेटा अमित, और बेटी बहू है आरती और पोती आराध्या के साथ, और सभी खेदनी परिवार का नाम जोड़ते हैं आज के इस कार्यक्रम में। नलिनी जोखन भी गीतों को सुनकर बड़ी ही खुश हैं, वाकवा से आप साथ दे रही हैं, प्रीति रंजीत आप भी हमारा साथ दे रही हैं, और हमारी प्यारी सखी देवीना भी इस वक्त रेडियो के माध्यम से जुड़ी हुई हैं हमारे साथ, थैंक यू सो मच देवीना साथ देने के लिए। चलिए अगला गाना खास हम आपके लिए करना चाहेंगे, और किरण बारोट भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं लिस पे गौस्तुबुश से प्यारी पत्नी नम्रता के साथ, और सभी बारोट परिवार का नाम आज के इस कार्यक्रम में शामिल करते हैं। वे जैसे हैं अमृता गंगू, और मोताइलों से गीता जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। कई बार आपके कॉल्स हम मिस कर जाते हैं, पर बस हमारा साथ आप यूं ही देते रहें, और ये प्यारा सा गाना हम छोड़े जाते हैं आपके लिए। फिल्म है अमर, लता जी की प्यारी सी आवाज़, और जो लोग अपना जन्मदिन मना रहे हैं, शादी की सालगिरह मना रहे हैं, दिल से आपके नाम ये गाना करेंगे, और बस आपसे अब भेंट होगी समाचारों के बाद, तब तक के लिए गुनगुनाते रहें लाजवाब गाने।

फजर के आठ बजल बा। नमस्ते, अवजा भोजपुरी में समाचार सुने जा। मई में मॉरिशस के व्यापार घाटा 35% बढ़ के 22,367 मिलियन रुपया हो गल।

स्टिक्स मोशस के अनुसार एकर मुख्य वजह पेट्रोलियम आयात बिल में भारी वृद्धि रहल। आज दिन के 11 बज के आधा राज्यसभा के कार्य फिर से शुरू हुई। प्राइम मिनिस्टर्स क्वेश्चन टाइम में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामगुलाम से 12 गो सवाल पूछल जाए। एजेंडा में सरकारी निवेश परियोजना, धारदार हथियार से जुड़ल अपराध, अर्ध सार्वजनिक निकाय की वित्तीय स्थिति, VAT और वृद्धावस्था पेंशन के नवा पात्रता मानदंड शामिल बाटे। PMQT के बाद संसदीय प्रश्न लेवल जाए। एकर बाद मोशस हाइड्रोग्राफिक सर्विसेज बिल पर बहस फिर से शुरू हुई, जबकि क्रिमिनल कोड अमेंडमेंट बिल पर भी चर्चा शुरू करल जाए। नेल्सन मंडेला सेंटर फॉर अफ्रीकन कल्चर काल अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस मनैलन। ई अवसर पर ही उप प्रधानमंत्री आरियाना वोमाही नेल्सन मंडेला के न्याय, गरिमा और एकजुटता के मूल्य की श्रद्धांजलि अर्पित करलन। और दूसर देश के खबर में, अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कनाडा से आयातित कई अन्य वस्तु पर 50% शुल्क लगाए की घोषणा करलन। नवा शुल्क 30 दिन में लागू हुई, जिससे दोनों देश के बीच व्यापार तनाव आर बढ़ी। तो देश विदेश के खबर संगे भोजपुरी में समाचार समाप्त भल। अपन ध्यान खातिर धन्यवाद, नमस्ते। आवाजावरनी की खबर सुना जा। नाका वेनवाकुआ में 3 कुरी 10 बरिस के सुसंजीजों के श्रीमती इंद्रामती की रोधर पैदाशी नाम जोगी आर जे इंदिरा नाम से जस्ती जानते चात्रा लंजाओ गुजर गल हवन। ओकर माटी काल बुध के दिन के 10 बजे ओकर पति रमेश के रोधर के घरे नाका वेनवाकुआ से उठा के सुल्फेनों के शमशान भूमि ले चावल जाए। रिवरसाइड रोड लालोहा में 4 कुरी 12 बरिस के कतोवें 2 जों के श्रीमती मंदोदरी राम खिलावन पैदाइशी नाम बिंदा आर जे दुलारी नाम से जस्ती जानते जात्रा लंजाओ गुजर गल हवन। ओकर माटी आज दिन के 1 बजे ओकर बेटा किशोर राम खिलावन के घरे रिवरसाइड रोड लालोहा से उठा के सेकोस्तांस के शमशान भूमि ले चावल जाए। रॉयल रोड पंतफय में 3 कुरी 15 बरिस के सुसन कैजों की श्रीमती पुण्यावती नामवा जे मुनिया नाम से जस्ती जानते जात्रा लंजाओ गुजर गल हवन। ओकर माटी आज दिन के 11 बज के आधा ओकर पति सुनंद झमन के घरे रा रोड पंतफय से उठा के बुशों के शमशान भूमि ले जावा जाए। ब्लॉक 26 हाउसिंग स्टेट गोकुला में 2 कोरी 18 बरिस के सकौचितों के श्री राजमोहन जीवन जे गासो नाम से जस्ती जानते जात्रा लंजाओ गुजर गल हवन। ओकर माटी आज दिन के 1 बजे ओकर पत्नी श्रीमती बिमला जीवन के घरे ब्लॉक 26 हाउसिंग स्टेट गोकुला से उठा के लामी छे के शमशान भूमि ले जावा जाए। भोगन रोड रिवे जुआपा में 2 कोरी 3 बरिस के काहन 3 जों के श्री राजकुमार ईसर जे भाई तारा नाम से जस्ती जानते जात्रा लंजाओ गुजर गल हवन। ओकर माटी आज दिन के 12 बज के आधा ओकर माँ हेमलता ईसर के घरे भोगन रोड रिवे जुआपा से उठा के पितों के शमशान भूमि ले जावल जाए। AB08 NHDC बोवालों में 2 कोरी 7 बरिस के काहन सेतों के श्रीमती वेनिला रामेन पैदाइशी नाम गोविंदन आर जे युवाना नाम से जस्ती जानते जात्रा लंजाओ गुजर गल हवन। ओकर माटी आज दिन के 11 बजे ओकर घरे AB08 NHDC बोवालों से उठा के तोम्बो में बग के शमशान भूमि ले जावल जाए। रॉयल रोड डिस्पेहस का चिमनीतिया में 4 कोरी 17 बरिस के कथोवें जिसे तोंके श्रीमती एनकामा पापिया जेटुलसो नाम से जस्ती जानते जात्रा लंजाओ गुजर गल हवन। ओकर माटी आज दिन के 1 बजे ओकर बेटा धर्मवीर अपादू के घरे रोड लेस्पेरेंस कॉम्युनिटी से उठा के वहीं के शमशान भूमि ले जावल जाए। माचू रोड दो फ्रेम में 2 कोरी 9 बरिस के 49 जों के श्री विनय रामबरत जे अनिल नाम से जस्ती जानते जात्रा लंजाओ गुजर गल हवन। ओकर माटी आज दिन के 2 बजे ओकर भाई विजय रामबरत के घरे माचू रोड दो फ्रे से उठा के बुशों के शमशान भूमि ले जावल जाए। भंजन रोड सैंडवी सुरीनाम में 3 कोरी 15 बरिस के सुसन कैजों के श्री दर्शानंद शिवदीन जे दर्शानंद नाम से जस्ती जानते जात्रा लंजाओ गुजर गल हवन। ओकर माटी आज दिन के 2 बज के आधा ओकर घरे भंजन रोड सैंडवी सुरीनाम से उठा के सुरीनाम के शमशान भूमि ले जावल जाए। जोरिया रोड लाशुरंस दागोचिया में 3 कोरी 18 बरिस के सुसंजीजितों के कुमारी सावित्री जुरिया जे दुदुन नाम से जस्ती जानते जात्रा लंजाओ गुजर गल हवन। ओकर माटी आज दिन के 11 बजे ओकर भाई सतय भरत जुरिया के घरे जुरिया रोड राष्ट्रीय संस्था गुच्छे से उठा के में जिनकों रमास के शमशान भूमि ले चावल जाए। बैठका रोड मोगू में 4 कोरी 1 बरिस के 91 जों के श्रीमती मुतामा नारायणन पैदाइशी नाम पानन और जे अमाय नाम से जस्ती जानते जात्रा लंजाओ गुजर गल हवन।

0: ओकर माती आज दिन के 3:30 ओकर रिश्तेदार जेम्स नहायानेन के घरे बेटका रोड मोगू से उठा के मोगू की शमशान भूमि ले जावल जाए। शोक में डूबल इस सब परिवार लोग के प्रति हमने संवेदना प्रकट करे थे जा।
1: ये है रेडियो मॉरिशस।

0: 819 kilohertz. This is
1: Radio Marches. Radio Marches.
2: सूरज की चमचमाती किरणों के साथ सुबह का नजराना,
3: एक छोटी सी मुलाकात एक कलाकार के साथ रेडियो मॉरिशस पर, रेडियो मॉरिशस पर, एक छोटी सी मुलाकात एक कलाकार के साथ रेडियो मॉरिशस पर,
4: रेडियो मॉरिशस पर, रेडियो मॉरिशस की लहरों पर इस समय स्टूडियो की घड़ी में 8:13 हो चुके हैं और मैं हूँ रत्ना, पुनः आपकी सेवा में उपस्थित हो चुकी हूँ अपने इस अगले सेगमेंट के साथ, जहाँ पर आपकी मुलाकात हम करवाते हैं एक ऐसे अभिनेता या अभिनेत्री के साथ जो अपना जन्मदिन मना रहा है, मना रही है या आने वाले दिनों में मनाएंगे। बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं एक उभरती बॉलीवुड अभिनेत्री की, भूमि पेडनेकर। जी हाँ, भूमि पेडनेकर एक उभरती हुई बॉलीवुड अभिनेत्री, और अभिनय का काम करने से पहले आपको ये भी बता दें कि उन्होंने यशराज के बैनर के नीचे सहायक निर्देशक के बतौर काम किया है, और इसके बाद इन्होंने उसी कंपनी के साथ 3 फिल्मों के समझौते पर हस्ताक्षर किए। उन्होंने 2015 में रिलीज हुई मूवी दम लगा के हईशा के द्वारा अपना बॉलीवुड में पदार्पण किया। फिल्म ने रिलीज के बाद अच्छा कारोबार किया और लोगों ने उनके काम को काफी पसंद भी किया। इसी फिल्म के लिए उन्हें फिल्मफेयर की सर्वश्रेष्ठ डेब्यू अभिनेत्री के अवार्ड से सम्मानित भी किया गया। 37 वर्षीय भूमि पेडनेकर, 18 जुलाई को उन्होंने अपना जन्मदिन मनाया, 18th जुलाई 1989 को उनका जन्म हुआ। तो चलिए आज हम आपकी मुलाकात करवाते हैं भूमि पेडनेकर से। जी हाँ, मुंबई में उनका जन्म हुआ। उन्होंने अपनी पढ़ाई मुंबई में जुहू में स्थित आर्य विद्या मंदिर में उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की, और उनके पिता महाराष्ट्र से हैं, माता जो हैं हरियाणवी है।

दम लगा के हईशा फिल्म में। उन्होंने आयुष्मान खुराना के साथ काम किया और फिल्म में उन्होंने एक शादीशुदा महिला की भूमिका निभाई, किरदार निभाया और फिल्म

अब बड़ी मात्रा में उन्होंने पुट ऑन किया था, क्योंकि उनका जो रोल था उसी प्रकार का डिमांड कर रहा था। तो चलिए, दम लगा के हईशा की जब बात की है तो इस लाजवाब गीत के साथ इस कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं।

0: एक छोटी सी मुलाकात एक कलाकार के साथ रेडियो मॉरिशस पर।
1: भूमि पेडनेकर एक ऐसी अभिनेत्री जिन्होंने हम कह सकते हैं कि पारंपरिक नायिका के सांचे को तोड़कर अपनी मेहनत और शानदार अभिनय से अपने दम पर बॉलीवुड में एक मजबूत मुकाम हासिल किया। मुंबई के एक सामान्य परिवार से आने वाली भूमि की कहानी संघर्ष, रिजेक्शन और खुद को साबित करने की एक बेहतरीन मिसाल है। भूमि पेडनेकर का जन्म मुंबई में हुआ था, लेकिन उनका ननिहाल जो था वो हरियाणा से है और उनके पिता महाराष्ट्र के पूर्व गृह और श्रम मंत्री रह चुके थे। वैसे जिंदगी उनकी आसान नहीं थी। स्कूल के दिनों में भूमि को अपने वजन और लुक्स को लेकर काफी उनको चढ़ाया जाता था, बुलिंग की जाती थी, जिससे उन्हें दुख होता था, लेकिन उन्होंने इसे अपनी ताकत बनाने की ठानी। 14 वर्ष की आयु में छेड़छाड़ की घटना और 18 साल की उम्र में पिता के निधन ने उन्हें अंदर से बहुत ज्यादा परेशान किया, बहुत ज्यादा झकझोड़ दिया था। और कास्टिंग डायरेक्टर से लेकर एक्ट्रेस तक का ये सफर, बिल्कुल भूमि ने यशराज फिल्म में लगभग 6-7 वर्ष तक असिस्टेंट कास्टिंग डायरेक्टर के बतौर काम किया था और इस दौरान उन्होंने 100 से अधिक फिल्मों का ऑडिशन भी लिया था। मतलब वे खुद लेती थी दूसरों का ऑडिशन। दम लगा के हईशा की जब हम बात करें 2015 में, तो कास्टिंग डायरेक्टर के रूप में काम करते करते उन्होंने अपनी पहली फिल्म दम लगा के हईशा उनको प्राप्त हुई और इस फिल्म में एक भारी भरकम महिला का किरदार उन्होंने निभाया, जिसमें वे 30-40 किलो वजन उन्होंने बढ़ाया था, जो किसी भी नई एक्ट्रेस के लिए एक बहुत बड़ा जोखिम माना जा सकता है। फिल्म सुपर हिट रही और उन्होंने उन्हें रातों रात दमदार एक्ट्रेस के रूप में पहचान मिली। हालांकि इस फिल्म में उन्होंने बिल्कुल 30-40 किलो वजन बढ़ाया था और बिल्कुल गोल मटोल सी भूमि पेडनेकर, पता ही नहीं चलता था कि ये एक्ट्रेस का रोल उन्हें मिला कैसे। पर देखा जाए तो उन्होंने बिल्कुल मेहनत की है, 30-40 किलो वजन बढ़ाना कोई छोटी मोटी बात नहीं। दम लगा के हईशा के बाद भूमि ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और उन्होंने टॉयलेट, एक प्रेम कथा, सांड की आंख, बाला, पति पत्नी और वो, और डॉली किटी और वो चमकते सितारे, बिल्कुल डॉली किटी और वो चमकते सितारे जैसी कई अर्थपूर्ण फिल्में भी की और उन्हें अक्सर छोटे शहरों की सशक्त और आत्मनिर्भर महिलाओं के किरदार निभाने के लिए भाई जाना जाता है। भूमि ने अपने ट्रांसफॉर्मेशन यानी वजन कम करने के बाद और अपने ग्लैमरस अंदाज से भी लोगों को प्रेरित किया है और इसके अलावा वो पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक मुद्दों पर भी खुलकर अपनी बात रखती हैं। बिल्कुल उनकी जो जीवनी है, उनका जो जीवन है, संघर्षों से भरा हुआ है। कई बार हमें लगता है कि जो महान अभिनेता या अभिनेत्री होती है उनके लिए लाइफ कितनी सेट होती है, कितनी ग्लैमरस होती है, पर इस ग्लैमर के पीछे उन्होंने कितने पापड़ बेले हैं ये तो बस वो ही बता सकते हैं। चलिए दम लगा के हईशा फिल्म में उन्होंने बहुत ही बढ़िया भूमिका निभाई। उनका एक और गाना है जो कुमार शानू की आवाज में रखा हुआ है, पर हम समझते हैं कि हम आपके लिए ये अगला गाना चलाएं जो सोनू निगम की आवाज में है। श्रेया घोषाल उनके साथ उन्होंने गाना गाया है और इस फिल्म में बेशक उनकी पेयरिंग की गई थी, यानी भूमि पेडनेकर की पेयरिंग की गई थी अक्षय कुमार के साथ टॉयलेट, एक प्रेम कथा, जहां पर एक बहुत ही तगड़ा सोशल मैसेज दिया गया है, जहां पर गांव में

आज भी टॉयलेट की सुविधाएं उपलब्ध नहीं वहां, ये एक ऐसी स्टोरी थी जिसने समाज को बिल्कुल झंझोड़ के रख दिया। आज भी कई घरों में, जब गांव में चले जाओ भारत के किसी बहुत ही कोने में, तो ऐसी समस्याएं कई घरों में आज भी देखने को मिलती है। पर इस स्टोरी ने पूरा रुख ही बदल दिया और स्वच्छ भारत अभियान के लिए ये फिल्म एक बहुत ही बढ़िया सब्जेक्ट लेकर आया।

टॉयलेट एक प्रेम कथा और इस फिल्म में अक्षय कुमार के साथ वे नजर आई थी और सैबायल चैटर्जी एनडीटीवी की जो निर्देशिता है उन्होंने भी कहा है कि इस फिल्म ने बहुत ही एक रिफ्रेशिंग स्टोरी और कॉलेज टॉपर के बारे में भूमि को इस फिल्म में दर्शाया गया था जो पढ़ाई में बहुत ही शौकीन थी, बहुत आगे आना चाहती थी पर शादी हो जाती है एक गांव के लड़के के साथ और जिसके घर में टॉयलेट की कोई सुविधा नहीं और टॉयलेट की सुविधा ना होने के कारण बहुत ही बड़ा बवाल उठा और उन्होंने शादी तोड़ना मंजूर किया। इस फिल्म ने 3 बिलियन रुपए कमाए पूरी दुनिया में और बिल्कुल ये फिल्म बहुत ही ज़्यादा हिट रही और साथ ही साथ इसके बाद फिल्म आई आयुष्मान खुराना के साथ उनकी फिल्म थी एक और बार फिर उनको पे किया गया था फिल्म शुभ मंगल सावधान में। उस फिल्म के लिए उनको बेस्ट एक्ट्रेस का नॉमिनेशन प्राप्त हुआ था। इस फिल्म की कहानी भी बहुत ही हटकर रही और इस फिल्म ने 700 मिलियन जी हाँ 700 मिलियन की का रेवेन्यू किया। चलिए इस गीत को भी हम सुनते हैं इस गीत के बाद।

भाई कहते ना, जहाँ चाह है वहाँ राह है, पर यहाँ तो चाह है पर राह नहीं थी टॉयलेट की। और डिवोर्स से पहले उस लड़के को टॉयलेट बनवाना पड़ा, पर सिर्फ एक टॉयलेट बनवाने के पीछे कितना बवाल खड़ा हुआ ये तो आपने फिल्म में देखा ही होगा। चलिए इसी के साथ शुभ मंगल सावधान फिल्म।

0: एक छोटी सी मुलाकात एक कलाकार के साथ रेडियो मॉरिशस पर।
1: भाई जब हम कहते हैं ना कि तारे जब चमकने शुरू हो जाए तो फिर आपको पीछे पलटकर देखना नहीं है। उसके बाद आई फिल्म 2019 में सोन चिड़िया, और ये फिल्म अभिषेक चौबे की फिल्म रही, एक क्राइम ड्रामा मूवी जहां पर बिल्कुल पेडनेकर को कास्ट किया गया था और उन्होंने एक यंग हाउसवाइफ की भूमिका निभाई थी जहां पर वो गांव चंबल, जी हाँ चंबल गांव में रहती थी, और सुशांत सिंह राजपूत और मनोज बाजपेयी इस फिल्म में उनके साथ नजर आए थे। और ये फिल्म भी काफ़ी हटकर रही, काफ़ी लाजवाब रही। उसके बाद एक लाजवाब फिल्म आई जहां पर उन्होंने काम किया था तापसी पन्नू के साथ, और तापसी पन्नू और भूमि पेडनेकर इस फिल्म में दीरानी और जेठानी का रोल निभाती हैं। सांड की आंख, इस फिल्म की भी कहानी बहुत ही लाजवाब। गांव की दो ऐसी महिलाएं जिनके घर में पुरुषों का राज चलता था, और बिल्कुल पुरुषों का राज कुछ इस प्रकार से चलता था कि बात बात पर बंदूकें उठाई जाती थी, गाली गलौज की जाती थी, और महिलाओं को बोलने का कोई हक नहीं था। और जहां पर ऐसी घर में रहने वाली महिलाएं खेत में जाकर अपनी दिल की भड़ास निकालती थी, और बिल्कुल घर में उपलब्ध बंदूकों से उन्होंने निशान दागना सीखा, और क्या

लाजवाब निशान वे दागती थी और इस कला को परखा एक शहर के लड़के ने और उन्हें स्पोर्ट्स यानी चैंपियनशिप के लिए तैयार किया गया, जहां पर सांड की आंख, जिसका हम अंग्रेजी अगर वर्जन कहें तो बुल्जा यानी बिल्कुल निशाने पर लगने वाला उनका दाव। क्या लाजवाब स्टोरी रही इस फिल्म की भी, और इस फिल्म की कहानी को भी लोगों ने बेहद बेहद पसंद किया। स्क्रीन अवार्ड और फिल्म फेयर क्रिटिक अवार्ड प्राप्त किया दोनों ही महिलाओं ने, और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड उनको दिया गया था, खासकर भूमि पेडनेकर को। और बहुत ही लाजवाब इस फिल्म का जो बॉडी लैंग्वेज, जिस तरह का पोस्टर रहा, जिस तरह के उनके कपड़े रहे, और बिल्कुल भूमि पेडनेकर और तापसी पन्नू है तो काफ़ी यंग, पर साथ ही साथ उनको इस फिल्म में अधेड़ उम्र की महिलाओं का एक रोल दिया गया था जो बहुत ही बखूबी उन्होंने निभाया। सांड की आंख का ये गाना, और इस गीत को आप नहीं मानेंगे किसने गाया है, सुनकर आवाज पहचानिए जरा।

जी हाँ, सांड की आंख और आशा जी की प्यारी सी आवाज के बाद आगे बढ़ते हैं। 2019 में आई फिल्म बाला और पति पत्नी, और वो जिसमें भूमि पेडनेकर नजर आई थी, बिल्कुल बहुत ही स्मॉल टाउन वुमेन का उनको भूमि दिया गया था, जैसे कह सकते हैं कि उनका जो किरदार था, और बिल्कुल इस फिल्म में पति पत्नी और वो में भी वे नजर आई थी। और इसमें भी आयुष्मान खुराना के साथ इस फिल्म में उनको एक सांवली महिला का रोल दिया गया था, और जिसके लिए उनको बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। और इतना ही नहीं, पति पत्नी और वो ये फिल्म एक बार आई थी 1978 के दौर में, और यही फिल्म रीमेक की गई। इस फिल्म का रीमेक हुआ कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे के साथ। बिल्कुल आयुष्मान खुराना के साथ वे नजर आई थी फिल्म बाला में, जहां पर एक गंजे पति के साथ उनको पेयरिंग की गई थी इस फिल्म के लिए। और लाजवाब स्टोरी रही दोनों की, पति पत्नी और वो ने भी 1 बिलियन का टर्नओवर पूरी दुनिया से कमाया। और कई सारी ऐसी फिल्में, डॉली किटी और वो चमकते सितारे में वो नजर आई थी कोंकणा सेन शर्मा के साथ, और ये फिल्म स्क्रीन की गई थी 24th भूसन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2019 के लिए। और कई सारी ऐसी फिल्मों में उन्होंने काम किया, हॉरर फिल्म भूत में भी उनको मौका मिला काम करने के लिए, और इस फिल्म में उन्होंने काम किया था। साथ ही साथ एक और हॉरर मूवी जो दुर्गामती नाम से प्रचलित हुई, इस फिल्म को भी Amazon Prime Video पर रिलीज किया गया था, और इस फिल्म को भी लोगों ने बेहद पसंद किया। बधाई दो फिल्म भी एक लाजवाब फिल्म रही, जिसमें वे राजकुमार राव के साथ नजर आई थी, और इस फिल्म की स्टोरी भी बिल्कुल ही हटकर रही, जहां पर महिला को महिला में शौक था और पुरुष को पुरुष प्रजाति में। एक हटकर स्टोरी जो आजकल LGBTQ पर आधारित रही ये फिल्म। साथ ही साथ उन्होंने काफ़ी क्रिटिक्स उनको भी मिले हैं, और साथ ही साथ अक्षय कुमार के साथ वे फिर नजर आई थी रक्षाबंधन फिल्म में। इसी के साथ उनकी अगली मूवी रही गोविंदा मेरा नाम, जिसमें वे विक्की कौशल और क्यारा आडवाणी के साथ नजर आईं, और कुछ ऐसे ही लाजवाब मूवीज़ के साथ उन्होंने अपनी जगह कायम की बॉलीवुड इंडस्ट्री में। चलिए, जब पति पत्नी वो की बात करते हैं और साथ ही साथ हम बात करते हैं दुर्गामती फिल्म की, तो दुर्गामती फिल्म में भी एक बहुत ही लाजवाब गीत रहा, और ये गीत हम चलाना ज़रूर चाहेंगे आज के इस सेगमेंट में।

0: एक छोटी सी मुलाकात एक कलाकार के साथ रेडियो मॉरिशस पर।
1: भूमि पेडनेकर जो 18 तारीख को 18 जुलाई को उन्होंने अपना जन्मदिन मनाया और काफ़ी सारी फिल्मों में उन्होंने नाम कमाया, काफ़ी सारी फिल्मों के साथ साथ उनको नॉमिनेशन में भी शामिल किया गया और कई सारे ऐसे अवार्ड्स उनको प्राप्त हुए और उनके लाजवाब काम के लिए उनको बहुत ही लोगों ने पसंद किया। तो चलिए आज की ये जर्नी थी भूमि पेडनेकर के लिए, उनकी मुलाकात आपसे करवाई हमने और इसी के साथ आज का ये सेगमेंट बस यहीं पूरा होता है। साखरी गीत के साथ दम लगा के हईशा कुमार शानू और साधना सरगम की आवाज़ में। वैसे आपको याद दिला दे, अभी थोड़ी ही देर में हम जुड़ेंगे हमारी धरोहर कार्यक्रम के साथ किरण जानकी की प्रस्तुति में।

0: तो चलिए इसी के साथ समय हो चला है हमारे अगले सेगमेंट के साथ जुड़ने का। आइए स्वागत करते हैं किरण जानकी का।
1: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
2: हमारी धरोहर किरण जानकी के साथ। हमारी धरोहर।
3: नमस्ते, हमारी धरोहर में आपके स्वागत बा। आज हमने भारत के एगो ऐसन इमारत पर ध्यान देवब जा जेके विश्व धरोहर स्थल यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित करा गल बा। लेकिन साल 2017 में ई पहला हला रहल कि भारत के कोनो एगो पूरा शहर के वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के दर्जा देवल गल। गल सप्ताह दिखले रही जा कि पेरिस के जोन शहर है वो एगो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, लेकिन भारत भी पीछे नहीं बा। गुजरात के अहमदाबाद शहर के पहला शहर मानल जाला ई वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के दर्जा पाए होला में। यूनेस्को ई खातिर ई उपाधि देलक कि 15वीं सदी में सुल्तान अहमद शाह द्वारा बसावल गल अहमदाबाद के साबरमती नदी के पूर्वी तट पर ई बसेरा हो रहल ई शहर में आर्किटेक्ट के बेहतरीन एगो उदाहरण बा। उदाहरण खातिर भद्रा सिटाडेल किला यानी फोर्ट के दीवार और ओकर गेट एगो मुख्य आकर्षण है। यहाँ कितने मस्जिद और मकबरा बा, हुमे बाद में बनल कितने हिंदू और जैन मंदिर भी, और अभी ले उ सब हुआ बाटे। अब देखी जा कौन दिलचस्प और महत्वपूर्ण बात खातिर अहमदाबाद यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनल। साबरमती नदी के तट पर साबरमती रिवर फ्रंट के विकसित करा गल बा। 1960 के दशक में ही ये रिवर फ्रंट के नामजदगी के प्रस्ताव रखा गल रहा, लेकिन 2005 में एक बनावे के शुरू करा गल रहा और 2012 से साबरमती रिवर फ्रंट के आम जनता खातिर खोल देवल गल। हियाँ के झूलता मीनार ऐतिहासिक वास्तुकला के एगो प्रतीक मानल जाला। दिलचस्प बात ई है कि जब ई में से एगो मीनार हिलेला तो बाकी सब मीनार में भी एगो कंपन पैदा हो जाला। अन्य कोठी में कारीगरी द्वारा बनावल गल ई मीनार के कैसे बनावल गल बा ई एगो रहस्य मानल जाला। बहुत ही पुराना ई सब मीनार है। अहमदाबाद के ओटोवर्ल्ड म्यूजियम भारत के सबसे बड़ा ओटोवर्ल्ड म्यूजियम है। ई में कार और मोटरसाइकिल के पुराना कलेक्शन आप देखबा, और यहाँ पर 1573 में 1573 में यहाँ के एगो मस्जिद के स्थापना हो रहा जेके बोली राजा सुल्तान अहमद शाह, और सुल्तान अहमद शाह ही एकर निर्माण करवैले रहन। यहाँ पर एगो साइंस सिटी बा। 107 एक्टर से जस्ती बड़ा जगह में बनावल गल गुजरात के साइंस सिटी के विशेषता ई है कि ई मनोरंजन के तौर पर आम इंसान से साइंस के जोड़ेला, और हुआ पर नक्षत्र यानी कि स्पेस और म्यूजिकल फाउंटेन भी स्थापित करा गल बा। स्पेस से जुड़ल एगो म्यूजियम बा और फिर एगो म्यूजिकल फाउंटेन। साबरमती रिवर फ्रंट के अलावा साबरमती के तट पर गांधी आश्रम के स्थापना गांधी जी 1917 में कर ले रहलन। एक सत्याग्रह आश्रम के रूप में जानल जाला और ई भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के केंद्र रहल। तो जैसे देखत हवा ई जोन अहमदाबाद शहर बा ई हर रूप से विशेष बा, और यहाँ पर अलग अलग क्षेत्र के विशेषता पाइबा, विज्ञान से लेके नक्षत्र और आध्यात्म तक। कार्यक्रम के ध्यान से सुनना। बहुत धन्यवाद। नमस्ते।

तो चला इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद बोलब जा किरण जानकी जी के और जैसे गांधी जी के विषय में वो बोलन तो चला एगो बढ़िया संगीत तोहर खातिन चलाओ अब जा है कार्यक्रम के बिल्कुल अंत में और इसी के साथ सुबह का नजराना कार्यक्रम यहाँ पर समाप्त हो चला। आप सभी ने हमारा साथ दिया बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारी और आपकी भेंट होगी ठीक 10 बजे के समाचारों के बाद। भूलिएगा नहीं 9 बजे के समाचारों के बाद आप सुन पाएंगे आज की चर्चा का कार्यक्रम और आज के इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करेंगी सुमिता सरकार अभी थोड़ी ही देर में जिसका सीधा प्रसारण रेडियो मॉरिशस पर होगा और साथ ही साथ MBC के तीसरे चैनल पर। तो ज़रूर उनका साथ दीजिए और बिल्कुल हमारी और आपकी मुलाकात होगी 10 बजे के कार्यक्रम में भक्ति धारा कार्यक्रम में। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार शुभ दिन आप सभी को।

0: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MVC रेडियो।
1: मंगलवार 21 जुलाई घड़ी मिला लीजिए, सवेरे के 9 बज रहे हैं। समाचारों को लेकर विधिमा आ चुकी है। विधिमा, आपका स्वागत है।
2: नमस्कार सुमी, सभी सुनने वालों को नमस्कार। मई में मॉरिशस का व्यापार घाटा 35% बढ़कर 22,367 मिलियन रुपए हो गया, जिसका मुख्य कारण पेट्रोलियम आयात बिल में भारी वृद्धि है।

0: अर्थशास्त्री एरिंग निंग के अनुसार मॉरिशस डबल डेफिसिट का सामना कर रहा है, जहां सरकार और देश दोनों अपनी क्षमता से ज्यादा खर्च और आयात कर रहे हैं। ईंधन पर निर्भरता और संभावित 4% राजकोषीय घाटे को देखते हुए उन्होंने सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में तुरंत सख्ती बरतने की चेतावनी दी है। आज सुबह 11:30 से शुरू होने वाले संसदीय सत्र में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामगुलाम से पीएमक्यूटी के दौरान निवेश, अपराध, वीएटी और पेंशन जैसे 12 विषयों पर सवाल पूछे जाएंगे। इसके बाद संसदीय प्रश्नों के अलावा मॉरिशस हाइड्रोग्राफिक सर्विसेज बिल और क्रिमिनल कोड अमेंडमेंट बिल पर बहस होगी। और विदेश में अमरीकी सेना का कहना है कि उसने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ में जहाज़ों पर हमला करने की ईरान की क्षमताओं को और अधिक कमज़ोर करने के लिए उसके खिलाफ हमलों के एक नए दौर की शुरुआत कर दी है। लगातार 10वीं रात होने वाले ये हमले अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा अमरीकी सैनिकों की मौत के लिए ईरान को सज़ा देने के संकल्प के बाद आए हैं, जिनमें से 2 सैनिकों की पहचान पेंटागन द्वारा कर ली गई है। तो इन्हीं खबरों के साथ ही संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। नमस्कार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
2: 819 kHz, ये है रेडियो मॉरिशस।

0: 21 जुलाई रेडियो मॉरिशस और साथी एनबीसी के चैनल 3 पर हमारे सभी श्रोताओं और दर्शकों का स्वागत हम करते हैं सुमिता की ओर से। नमस्कार, स्वीकार करें आज की चर्चा। इस कार्यक्रम को लेकर आपकी सेवा में हम आ गए हैं। आशा करते हैं आप सभी बिल्कुल अच्छे हैं और हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ चुके हैं। आपको बता दें जो प्रोग्राम है इस समय इसे आप लाइव सुन पा रहे हैं रेडियो मॉरिशस पर, साथ ही इसका सीधा प्रसारण हो रहा है एनबीसी के चैनल 3 पर, साथ ही इसे आप लाइव देख पा रहे हैं एमबीसी प्ले ऐप पर भी। साथ ही आपको ये भी याद दिला दे, इसी प्रोग्राम का रीब्रॉडकास्ट जो है आप सुन पाएंगे आज ही दोपहर के 3 बजे रेडियो मनोरंजन पर, साथ ही इसे आप दोबारा देख पाएंगे एमबीसी 3 पर दोपहर के 4 बजे। तो आइए आज की इस चर्चा कार्यक्रम की शुरुआत हम करते हैं। इस महीने की 15 तारीख को यानी कि 15 जुलाई को वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे मनाया गया यानी कि विश्व युवा कौशल दिवस। और आज जो है हमारा आज की चर्चा कार्यक्रम इसी विषय पर आधारित है। और युवाओं की बात करें तो कहते हैं युवा जो है हमारे देश का भविष्य है, हमारे देश का कल है। और युवाओं को एक अच्छी शिक्षा प्रदान करना, युवाओं के लिए, युवाओं को आने वाले कल के लिए तैयार करना अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण जो है एक कार्य होता है। और आज के इस विषय पर ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे बीच डॉक्टर नंदिनी झुमक जुड़ चुकी हैं, जो जिन्होंने जो है मास्टर्स पीएचडी की है इन मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में इंडिया से। साथ ही जो है वो अभी नेशनल वाइस चेयरपर्सन हैं वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टूडेंट्स एंड यूथ की, और एमबीसी के साथ भी इन्होंने कुछ समय पहले काम किया है। उसके अलावा जो है ये लेखिका भी है, लिखती भी है, और अभी के लिए वो एक कंटेंट एंड कम्युनिकेशन एग्जीक्यूटिव है एक ऑफशोर कंपनी में, और आज हमारे साथ जुड़ी हैं। तो नंदिनी जी आपका बहुत बहुत स्वागत हम करते हैं।
1: धन्यवाद सुनील जी।
0: और आप खुद अपने आप में एक युवा हैं और आज के इस विषय को लेकर आप आई है। तो सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे होता क्या है और इसे मनाने का उद्देश्य क्या है।
1: सबसे पहले सभी श्रोताओं और दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो हम लोग वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे हर 15 जुलाई को मनाते हैं, और इसका मकसद ये है कि हम युवाओं

0: को बताते हैं कि बस पढ़ाई काफ़ी नहीं होती है, आपके साथ साथ टेक्निकल स्किल्स भी ज़रूरी होती है जिसको हम लोग लागू करते हैं। और जब आप टेक्निकल स्किल्स को प्रैक्टिकल में लेकर आते हैं तो आप अपने फ्यूचर में या कैरियर के लिए जॉब में इसका प्रयोग कर सकते हैं।
1: जी बिल्कुल। और कहीं ना कहीं स्किल्स की बात करें, कौशल की बात करें, तो ये स्किल्स जो है ऐसा नहीं है कि हमने अभी के लिए एक स्किल सीखा तो पूरे जीवन के लिए हमारे लिए काफ़ी है। स्किल्स कौशल एक अपने आप में ऐसी चीज़ है जो हमें समय के साथ अपग्रेड करते रहना पड़ता है, क्योंकि आज के इस टेक्नोलॉजी के युग में हर पल कुछ नया आ रहा है हमारे सामने। तो अभी का समय युवाओं की अगर हम बात करें तो पहले के समय से अगर हम अपने यंगस्टर्स को कंपेयर करते हैं तो बहुत गलत होता है, क्योंकि अभी के लिए उनके सामने चैलेंजेस बहुत आ गए हैं, ऑप्शंस बहुत आ गए हैं, उनके सामने इतनी सारी चीज़ें हैं, कभी कभार वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस फील्ड में जाए किस फील्ड में ना जाए। तो ऐसे में पढ़ाई के साथ साथ स्किल्स का होना बहुत आवश्यक है। तो अभी के समय में किस तरह के चैलेंजेस आप देख रही है सोसाइटी में?
0: देखिए, आज ना जो सोसाइटी है वो बहुत तेज़ी से चल रही है और हम लोगों को उसके साथ साथ चलना पड़ता है। और यहाँ पे मॉरिशस के संदर्भ में अगर मैं बात करूँ तो बहुत ऐसी चुनौतियाँ हैं जो हम लोग युवाओं फेस करते हैं रोज़। तो ये घर में भी शुरू होता है, ये स्टडीज़ में भी शुरू होता है, यूनिवर्सिटीज़ में और वर्क प्लेस में भी होता है। और ऐसे चैलेंजेस क्या होते हैं, जब आप अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर सकते हो तब युवा क्या करते हैं, हार मान जाते हैं। तो इसके लिए हम लोग खुद अगर रेडी नहीं होते हैं, हम लोग खुद सेल्फ स्टडी नहीं करते हैं, सेल्फ एनालाइज नहीं करते हैं, तो इस चीज़ का हम लोग सामना नहीं कर पाते हैं। ठीक है। और जहाँ पे अभी हम लोग बात कर रहे हैं, आप देख रहे हैं हर दिन हर जगह पे अनएम्प्लॉयमेंट की इशू आ रही है, तो बहुत ऐसी युवाएं हैं जो हिम्मत हार के इस चीज़ का सामना नहीं कर पा रहे हैं। तो इस चीज़ को हम लोगों को टैकल करना है। अगर मैं मॉरिशस के बारे में बात करूं तो अनएम्प्लॉयमेंट का जो इशू है, मुद्दा है, उसको हम लोगों को उठाना है और पॉजिटिवली उसको टैकल करना है। और ये इम्पॉसिबल नहीं है, ये संभव है, हम लोग कर सकते हैं।
1: जी बिल्कुल। और युवाओं की बात करें तो सिर्फ हम स्किल्स पर बात करते हैं, हम रोज़गार पर बात करते हैं, युवाओं की बात करें तो कहीं ना कहीं आजकल समय के साथ कम्युनिकेशन गैप काफ़ी बढ़ गया है और बहुत सारे युवा जो है आजकल बहुत गलत राह पकड़ रहे हैं। ड्रग्स का अपने आप में एक इश्यू भी हो गया है, जो सिर्फ मॉरिशस तक ही ये बात सीमित नहीं है, आई बिलीव ग्लोबली भी ये सारे एक बहुत बड़ा कंसर्न है अपने आप में। तो आपको क्या लगता है कि युवाओं के कौशल की अगर हम बात करते तो इसमें कम्युनिकेशन कितना बड़ा रोल प्ले करता है?
0: देखिए, मेरा मानना है कि हर शिक्षित युवा देश के लिए बहुत वैल्यूएबल होता है। ठीक है, अगर एक युवा को सही मार्गदर्शन, सही डायरेक्शन जो बोलते हैं उसको दिया जाए तो वो देश के लिए बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। जैसे आपने बोला कि जो ड्रग्स का इशू है, सोशल प्रॉब्लम्स है, वो बस मॉरिशस में नहीं हो रहे, पूरे दुनिया में पूरे हो रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग मॉरिशस के संदर्भ में बात करें, जितने भी युवा हैं उन लोगों को सही बस मार्गदर्शन चाहिए कि अपने आप को सुधारे, जानिए और अपने आप को सोसाइटी में लेकर आए वापस।
1: और कहीं ना कहीं अगर हम युवाओं की बात करते हैं तो कौशल की खासकर बात करते हैं तो इसे ज़्यादातर हम जो है प्रोफेशनल फील्ड से जोड़ते हैं। तो क्या कौशल सिर्फ प्रोफेशनल फील्ड तक ही सीमित है या इन कौशल, इन स्किल्स की शुरुआत हमारे पर्सनल जीवन से भी होनी चाहिए?
0: जैसे आपने बोला ना, कम्युनिकेशन स्किल वो पहले अपने आप से शुरू होता है, वो पर्सनल लेवल पे शुरू होता है। जब आप खुद अपने दिमाग में क्लियर हो कि अच्छा मुझे ये चीज़ जैसे दूसरों तक लेकर आना है, तो आप पहले क्लियर हो जाएं कि मुझे ये मैसेज सेंड करने हैं, मुझे अपने फीलिंग्स बताने हैं, मुझे बताना है कि देखिए मुझे फोर्स मत कीजिए, मुझे ऐसे जॉब चाहिए, मुझे ऐसे स्टडीज़ चाहिए, तभी जाकर आप प्रोफेशनल काम में भी अच्छे करते हो। मान लीजिए खुद इंसान ठीक नहीं है अपने आप में तो वो कैसे परफॉर्म करेगा। तो आई थिंक कि पहले अगर हम लोग इस संदर्भ में बात करें तो पहले आपको खुद ठीक होना है एज ए पर्सन, फिर आप प्रोफेशनल में भी एक्सेल कर सकते हैं।
1: यानी कि आपको खुद को पता होना चाहिए कि आप जीवन में किस, आपका उद्देश्य क्या है, आपका

0: लक्ष्य क्या है,
1: है
0: ना। और कभी कभार आपने लक्ष्य की बात की कि ऐसा भी होता है कि एक बच्चा कुछ करना चाहता है लेकिन पेरेंट्स की अपेक्षाएं उन बच्चों से अलग होती है। कभी कभार ऐसा होता है, बहुत से परिवारों में, समाज में हम देखते हैं कि माता पिता अपने जिस सपने को पूरा नहीं कर पाते हैं, उन्हें लगता है कि मैं डॉक्टर बनना चाहता था या लॉयर बनना चाहता था, मैं ही नहीं बना तो शायद मेरा बच्चा वो करेगा। तो माता पिता की जो आशाएं हैं वो बच्चे से बचपन से जुड़ जाती है, लेकिन समय

0: और बच्चे को भी किस तरह से मेंटली इस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं?
1: देखिए, ये सिचुएशन 50-50 है. जैसे अगर मैं अपने बारे में बात करूं तो मेरे यहाँ पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव रहे हैं हमेशा. तो मेरा ये हमेशा था कि मुझे कुछ इसमें जाना था, पब्लिक स्पीकिंग्स में जाना था, कंटेंट क्रिएटर बनना था. तो मेरे मम्मी पापा ने हमेशा साथ दिया है. अब दूसरे जैसे परिवार में हम लोग देखते हैं कि पेरेंट्स बहुत जैसे रिजिड हो जाते हैं कि समझते नहीं है कि बच्चे को डॉक्टर नहीं बनना है, उनको म्यूजिशियन बनना है. तो इस हालात में अगर वही चीज़ आता है ना, कम्युनिकेशन आते हैं, अगर बच्चे अपने पेरेंट्स को समझाएं और तीसरा जो थर्ड पर्सन होता है ना कि आप बताते हैं कि देखिए बच्चा ये करना चाहते हैं, तो उस चीज़ का समाधान अगर ढूंढते हैं तो पेरेंट्स भी समझ जाएगा.
0: और कहीं ना कहीं इस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से या जब एक दूसरे की बात को हम नहीं समझ पाते तो कभी कभार परिवार में दूरियां आ जाती है ना, मतलब कि बात करना बंद हो जाता है या ऐसा लगता है कि चलो मेरे माता पिता मुझे नहीं समझते तो मैं क्यों अपनी बात उनको बताऊँ. तो समय के साथ रिश्तों में दूरियां आ जाती है और फिर एक दूसरे को समझना बंद हो जाता है, बातचीत बंद हो जाती है. तो ये सारी चीज़ें आगे चल के अन्य प्रॉब्लम्स को क्रिएट करती है. तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को समझना ये बहुत ज़रूरी होता है. और ख़ासकर युवाओं की बात करें तो आजकल युवा जो है काफ़ी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस उन पर ज़्यादा है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है. वो यहाँ मॉरिशस में बैठे बैठे दुनिया के किस कोने में क्या हो रहा है, फिर चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, सभी चीज़ से वो दिन ब दिन रूबरू हो रहे हैं. क्योंकि एक दिन में इतने सारे फीड्स हमारे फ़ोन पर आ रहे हैं, इन सभी चीज़ों को हम कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन उसका आफ्टर इफ़ेक्ट क्या होता है, तो किस तरह से इस चीज़ को हम हैंडल कर सकते हैं युवा होने के नाते?
1: देखिए, ये जहाँ पे हम लोग काम करते हैं, मैं एक चीज़ इसमें और जोड़ना चाहती हूँ कि आजकल जो कंपनीज है ना दूसरे दुनिया में, वो बस डिग्री नहीं देखते हैं, वो बस नहीं देखते हैं कि अच्छा आपके पास ये है, वो कुछ और ही देखते हैं आपके पास. वो देखते हैं कि आप डिग्री के अलावा क्या लेकर आते हो. ठीक है, तो जो जितने भी युवा हैं जो आगे बढ़ रहे हैं मॉरिशस में, जो कुछ करना चाहते हैं, तो उनको ये अपने आप में जागरूक करना है. ठीक है, कि मुझे ये क्षमता दिखाना है, तभी जाकर वो आगे बढ़ता है. क्योंकि आजकल हम लोग देख रहे हैं कि बहुत ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, बाधाएं आ रहे हैं अपने रास्ते में, कि ठीक है मुझे ये करना था, नहीं कर पा रही हूँ, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होता है, दूसरे प्रॉब्लम्स होता है. लेकिन अगर आप इस चीज़ को बस सीमित रखेंगे अपने आप को, तो कुछ प्रोग्रेस ही नहीं होते हैं.
0: बिल्कुल, यानी कि पढ़ाई के अलावा, सर्टिफिकेट्स के अलावा जो है एडिशनल स्किल्स भी बहुत आवश्यकता है. आज से कुछ साल पहले की अगर हम बात करें, खासकर जो है कि एडिशनल स्किल्स की बात करें, तो घर का कामकाज आपको आना बहुत ज़रूरी होता था ना, कि माता पिता खासकर लड़कियों को कहते थे कि पढ़ाई तो कर रही हो लेकिन तुम्हें पकाना आना चाहिए, तुम्हें सफाई आनी चाहिए, तुम्हें ये आना चाहिए. और आज समय के साथ कितना कुछ बदल गया है कि पढ़ाई के साथ साथ तुम्हें टेक्नोलॉजी से जो है उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, सोशल मीडिया का इस्तेमाल कैसे करते हो उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए. तो ये जो बदलाव आया है इस पर, इसको आप कैसे देखती हैं?
1: ये जो बदलाव है, मुझे लगता है हम इस जनरेशन में अच्छी चीज़ है, पॉजिटिव है बहुत. क्योंकि जैसा आपने कहा, मेरे टाइम में जब हम लोग स्कूल जाते थे तो मम्मी बोलते थे तुम ऐसे स्कूल नहीं जाओगे, तुम पहले सफाई करना है, बिस्तर रेडी करना है, अपने ब्रेड को जैसे खाना, टिफिन बॉक्स ये सब खुद रेडी करना है. अब ये जो चेंज हुआ है वो हद तक, एक हद तक अच्छी है और अच्छा भी नहीं है. और हमारे टाइम में हम लोग खुद करते थे तो उस टाइम पे हम लोग एक स्किल्स डेवलप करते थे कि दूसरों पे निर्भर नहीं करना है.
0: बिल्कुल,
1: ठीक है, अपने आप वो जो डिसीजन मेकिंग स्किल्स है ना, ये भी आता है इसके साथ साथ. और जब मैं भारत में थी, पढ़ाई कर रही थी, तो ये जितने भी मम्मी ने सिखाया ना कि खुद करना है,
0: ये बहुत काम आया होगा.
1: ये बहुत काम आया है. और उसके साथ साथ सोशल मीडिया का भी बहुत काम आया है. जैसे मेरा एग्जांपल मैं लेती हूँ, मुझे जैसे फोल्ड करना नहीं आता है, जैसे कपड़े ये
0: समेटना,
1: हाँ समेटना नहीं आता है, तो उस टाइम पे यूट्यूब ने बहुत हेल्प किया है. जब मैं पैकिंग करती थी सूटकेस में कि कैसे पैकिंग करना है, उसको कैसे स्क्वेयर करना है, उसको कैसे रखना है ताकि लगेज के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाए, तो यहाँ पे सोशल मीडिया टिकटॉक फेसबुक यूट्यूब एवरीथिंग बहुत हेल्प किया है.
0: बिल्कुल, यानी कि कहीं ना कहीं जो पुराने स्किल्स है नए स्किल्स के आने की वजह

0: जैसे हम ये नहीं कह सकते कि उसकी हमें ज़रूरत नहीं है।
1: जैसे
0: आपने कहा कि आप भारत में जाकर पढ़ी है, जब एक बच्चा बाहर जाता है पढ़ने, अगर उसे अपनी बेसिक चीज़ें करना नहीं आता है तो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आपको थोड़ा सा पकाना आना चाहिए, ये भी अपने आप में स्किल्स है, अपने आसपास के, अपने जहाँ आप रह रहे उस जगह को साफ़ सुथरा रखना, क्योंकि हाइजीन यहाँ पर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, अपने आप को जैसे कि कम पैसों में किस तरह से आप अपना गुजारा कर सकते हैं, ये भी अपने आप में एक स्किल्स है। तो ये सारे स्किल्स के साथ साथ नई टेक्नोलॉजी के साथ जुड़कर अपने स्किल्स को एनहांस करना, ये एक अच्छी बात होती है। तो चलिए, 4028085 है नंबर हमारा, अगर आप भी आज के इस कार्यक्रम में जुड़ना चाहते हैं, आप सबका स्वागत है। आज हम विश्व युवा कौशल दिवस पर बात कर रहे हैं, आपसे मांग करेंगे कि जिस विषय पर आज हम चर्चा कर रहे हैं आपके विचार या आपके प्रश्न उसी पर आधारित हो। अभी के लिए एक छोटे से गाने के साथ हम प्रोग्राम को आगे ले जाते हैं।

0: आज की चर्चा।
1: चलिए आज की चर्चा इस कार्यक्रम में आप सभी हमारा साथ दे रहे हैं और आज हम विश्व युवा कौशल दिवस पर बात कर रहे हैं और आज के इस विषय पर ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ डॉक्टर नंदिनी जुमक जी जुड़ी हुई है। नंदिनी जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे की बात करते तो बहुत सारे एक्टिविटीज़ जो है होते हैं इस दिन के दौरान, किस तरह से इस दिन के बारे में लोगों को बताया जाता है, जागरूक किया जाता है, इसके महत्व पर जो है रोशनी डाली जाती है, तो आपसे हम जानना चाहेंगे कि कौन कौन से एक्टिविटीज है जो किए जाते हैं इस दिन पर, खासकर पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो।
2: इस दिन को मनाने के लिए आई थिंक पूरी दुनिया में ट्रेनिंग्स होती हैं, ठीक है, काउंसलिंग्स होती हैं हमारे युवाओं के लिए, सेमिनार्स होते हैं ताकि युवाओं को ये बताएं कि आपके लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, ठीक है, आपके कैरियर ग्रोथ के लिए अपॉर्चुनिटीज खड़े होते हैं, ठीक है। इसके लिए, इस चीज़ को जैसे साकार करने के लिए हम लोग काउंसलिंग करते हैं युवाओं के लिए, उन लोगों को एक मार्गदर्शन देते हैं कि ठीक है, आप अपनी स्टडीज़ के बाद या आप स्टडीज़ में क्या क्या और चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मुझे पता है कि मेरे बैच में बहुत ऐसे लोग थे जिन्होंने मास्टर्स के साथ साथ डिप्लोमा भी कर रहे थे, कि उनको पता है कि अच्छा, मैं मास्टर्स कर रहा हूँ जर्नलिज्म में लेकिन मुझे डांसिंग आता है, भरतनाट्यम आता है, तो वो जो कौशल है ना उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं, ठीक है। तो जहाँ पे काउंसलिंग होते हैं, एक्टिविटीज़ के बारे में बात करूँ तो गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों सेक्टर्स में हो रहा है। मॉरिशस के बारे में बात करूँ, जैसे अगर मैं रिसर्च काउंसिल के बारे में बात करूँ, MCCI के बारे में बात करूँ, या खुद आप एक कंपनी में काम कर रहे हो तो कंपनीज खुद प्रोवाइड करती है ट्रेनिंग्स कि आप जी आप ये काम कर रहे हैं तो उसके अलावा आपके पास और क्या ऐसे टैलेंट हैं, क्या स्किल्स हैं जो अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो।
1: ये आपने बिल्कुल सही कहा। हमारे समय की अगर बात करें कि जब स्कूल हॉलीडेज होता था, जैसे आपने 10th पूरा कर लिया तो आपको पता है कि आपके हाथ में 2-3 महीने होते हैं आपके रिजल्ट का इंतजार करते करते, तब तक हमारे पेरेंट्स हमें किसी कंप्यूटर कोर्स में डाल देते थे। फिर 12th हो गया तभी भी आपके पास एक लंबा इंतजार होता था, उस समय आप किसी और कोर्स में जुड़ गए क्योंकि उस समय कंप्यूटर एक चीज ऐसी जो उभर रही थी ना, इस एज अ सेक्टर, एज अ फील्ड कहे, लोग इस पे, इसके बारे में पढ़ रहे थे, जान रहे थे, कोडिंग वगैरह तो अभी आया है, उस समय तो हम जो है जावा, ये
2: IC3 वाला
1: ये सारी चीजें थी। तो कहीं ना कहीं स्किल्स को आज के समय में इम्पोर्टेंस दी जाती है, ऐसी बात नहीं है। अभी के समय में स्किल्स अपने आप में एक इम्पोर्टेंट चीज हो चुकी है, लेकिन ये तभी भी उतना ही मायने रखता था। आज एक बच्चा अगर डिग्री पूरा कर रहा है तो सिर्फ उसके पास अगर डिग्री का सर्टिफिकेट है और वहीं पर उसके साथ में कोई और है जिसके पास और भी सारी चीज़ें हैं, यानी कि अपने आप को एनहांस करने के लिए उसने कहीं से कोई डिप्लोमा कर लिया है, कोई सर्टिफिकेट कोर्स कर लिया है, तो शायद कंपनी जब सिलेक्शन का समय आएगा तो शायद उसको ज़्यादा अहमियत देगी क्योंकि उसने अपने आप को सीमित नहीं रखा है। और ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है जब हम करियर की बात करते हैं।
2: जी, और अगर मैं अपने बारे में बात करूं, जब मैं इंटरव्यू देने गई थी तब जो मैनेजर्स होते हैं वो आपसे पूछते हैं, ठीक है, आपने ये पढ़ाई की है तो उसके साथ साथ आपने क्या सीखा है। तो मेरे पास कुछ बोलने के लिए था, प्रूव करने के लिए था कि अच्छा, पढ़ाई के साथ साथ मैंने फोटोग्राफी भी सीखी है, मैंने एडिटिंग भी सीखी है जब मैं MBC में थी। तो ये सब चीज़ें ना बहुत मान्यता रखता है। और अगर हम लोग एक्टिविटीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, मॉरिशस में अभी क्या चल रहा है, जो सरकार है और प्राइवेट सेक्टर है दोनों मिलकर हमारे युवाओं को बहुत अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं। मैं ये एक चीज़ इसमें और ऐड कर सकती हूँ कि युवाएं इस चीज़ का लाभ उठा सकते हैं। आप रिसर्च कीजिए, आप इंटरनेट पे जाइए, देखिए कौन कौन से ऐसे काउंसिल है, सेंटर्स हैं जहाँ पे हम लोग इस अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर सके। अगर आप बैठे रहेंगे, आप कुछ नहीं करोगे, आप वेट करोगे कब अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे कि कब मैं अपने स्किल्स को डेवलप करूँ, तो ये नहीं आते, आपको खुद जानना है।
1: बिल्कुल।

0: और कहीं ना कहीं अभी का जो समय, मतलब कि इस तरह से हम ग्लोबली दुनिया से कनेक्टेड है, मतलब कि आपको अगर किसी विषय के बारे में जानकारी चाहिए या कोई जानकारी आप हासिल करना चाहते हैं, बहुत ही ईजिली आप इंटरनेट के ज़रिए एक्सेस कर सकते हैं। हमारे समय में ये नहीं था। हमारे समय में अगर आपका पड़ोसी कुछ कर रहा है तो माता पिता कहेंगे देखो वो ये कर रहे हैं तो तुम भी जाके करो, या किसी ने आपको बता दिया कि देखो वहाँ पर कुछ हो रहा है। लेकिन अभी के समय में हमने तो देखा है कितने सारे बड़े बड़े ग्लोबल यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पर बच्चों का एडमिशन मुश्किल होता है क्योंकि शायद पैसे ज़्यादा होते हैं या वो मतलब के मैच नहीं कर पाते। लेकिन ऐसे ही बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ जो है वो फ्री सर्टिफिकेट कोर्स देते हैं, आप ऑनलाइन ही उन सर्टिफिकेट कोर्स का लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि हमारे आसपास काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जिनसे हम मिलते हैं, बातचीत होती है, तो पढ़ाई के साथ साथ के ऑक्सफोर्ड में कोई कोर्स चल रहा है, कोई सर्टिफिकेट कोर्स चल रहा है विच इज़ फ्री ऑफ चार्ज, वो लोग जुड़ते हैं। ये सारे जो है उनके स्किल्स को एनहांस करने के लिए, आगे जाकर करियर में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ उन्हें देने के लिए इट इज़ वेरी यूजफुल।
1: आपने सही बोले हैं, क्योंकि अभी एक प्लेटफॉर्म है जैसे आपको पता है लिंक्डइन, इसमें बहुत ऐसे फ्री सर्टिफिकेशन कोर्सेज हैं जो आप कर सकते हो, वो वन मंथ, एक महीने या डेढ़ महीने तक चलता है। अगर आप इस चीज़ का लाभ उठाते हैं या ना केवल स्क्रॉल करें तो आपके लिए ही लाभदायक होते हैं, क्योंकि जब आप इंटरव्यू में जाते हो ना तो ये लोग पूछते हैं आपने क्या क्या कोर्सेज की है, सर्टिफिकेशंस क्या हैं आपकी, क्या कौन कौन सी अवार्ड्स भी हैं, ये सब भी मैटर होते हैं।
0: आज तो हम युवाओं के स्किल्स पर बात करें, लेकिन थोड़ा सा मौका लेकर हम ये भी बात करेंगे कि बहुत सारी महिलाएं जो है जो घर पर है, अब बच्चे बड़े हो गए हैं, है ना, अकेले है, तो कहीं ना कहीं हमारे आसपास काफ़ी ऐसी संस्थाएं हैं जहां पर आप जुड़ सकती है, अपना जो है एक तो आपका टाइम भी बीत जाता है, आप कुछ नया सीख भी रही है और अपने आप को आप अपग्रेड भी कर रही है। तो अगर हम कौशल की बात करें तो सिर्फ ये कौशल आज युवाओं तक सीमित नहीं है, क्योंकि आज अभी के समय में लोग जो रिटायर हो गए हैं यूनिवर्सिटी में जाकर बहुत सारे ऐसे सर्टिफिकेट कोर्सेज है जो करते हैं, काफ़ी ऐसी संस्थाएं हैं, अगर उन्हें गाने का मौका मिल रहा है, जाकर योगा सीखने का मौका मिल रहा है या डांस सीखने का मौका मिल रहा है करते, इससे क्या होता है हमारी नेटवर्किंग बढ़ती है, हम अलग अलग कल्चर के लोगों से जब मिलते हैं तो हमारी भी एक जो है सोचने समझने की क्षमता को एक नई दिशा मिलती है।
1: जो आपने सही बोला इस कॉन्टेक्स्ट को लेके, बहुत ऐसे लोग हैं जो रिटायरमेंट लेकर घर में रहते हैं, ठीक है, फेसबुक चलाते हैं, सोशल प्लेटफॉर्म चलाते हैं, और ऐसे बहुत ऐसे लोग हैं जो बहुत जल्दी रिटायरमेंट लेते हैं ताकि उन लोगों को समय मिले कि मैं कुछ और करूं, ठीक है। आजकल बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है कि जब मम्मी लोग घर पे रहते हैं या पापा लोग घर पे रहते हैं तो ये लोग बहुत टिकटॉक चलाते हैं, दे यूज़ अ लॉट ऑफ ऐसे सोशल मीडिया ये सब, तो ये जो स्किल्स हैं इनको जैसे अगर हम लोग देखते हैं एक बच्चा होने के नाते हम लोग देखते हैं कि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो भी हम लोगों की तरह हैं, लेकिन उनका माइंडसेट अलग है, वो भी डिजिटल वर्ल्ड में कनेक्टेड हैं, लेकिन अपने अपने हिसाब में, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं अपने मम्मी के बात में करूँ, वो बहुत ऑनलाइन शॉपिंग करती हैं, काम से वो घर आती हैं, तो ये भी एक स्किल्स है जो मेरे पास नहीं है, मैं नहीं कर सकती ऑनलाइन शॉपिंग, मेरे पास उतना जैसे पेशेंस नहीं है कि मैं किसी को देखूं लाइव और मैं कुछ खरीदूं, लेकिन मेरे मम्मी के पास है, तो ये भी मैटर करते हैं कि पेरेंट्स अपने अपने स्किल्स को भी इस तरह डेवलप करते हैं।
0: कर सकते हैं, बिल्कुल। ऐसे तो अपने आप में ये बात करते हैं, मॉरिशस में कोई भी ऐसा सोशल प्लेटफॉर्म नहीं है जो मोनेटाइज होता है, लेकिन मे बी यू नेवर नो आने वाले दिनों में हो, क्योंकि अगर हम अन्य देशों की बात करें ग्लोबली, यूके हो गया, यूएस हो गया, इंडिया हो गया, जहाँ पर लोग अपने स्किल्स को ऑनलाइन जाकर जो है अपने टैलेंट को दिखा रहे हैं और उसके बदले में पैसे कमा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं शायद ये भी अपने आप में एक स्किल है, किस तरह से आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, किस तरह से अपने मैसेज को लोगों तक पहुँचा रहे हैं, और ये इन द रन मतलब कि आपके लिए एक रेवेन्यू क्रिएट कर रहा है। और जैसे आपने ऑनलाइन शॉपिंग की बात की, बहुत सारे हमारे यंगस्टर्स हैं जो शायद नौकरी नहीं करना चाहते, अपना बिजनेस करना चाहते, तो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उनके लिए एक रोजगार का जरिया बन रहा है, तो ये भी अपने आप में एक स्किल्स है कि किस तरह से आपको एक सोशल प्लेटफॉर्म पर लाइव जाना है, किस तरह से अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले करना है, किस तरह से जानकारी देनी है, तो ये ओवरऑल अपने आप में एक पैकेज होता है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से आप में क्या कमी है और किस तरह से आप उसे इम्प्रूव कर सकते हैं।
1: सही बोला आपने। और इस बात पे मैं कुछ और जोड़ना चाहती हूँ कि युवाएं जो हैं उन लोगों में बहुत क्षमताएं

0: जो जो क्षमता है इसको जैसे सीमित नहीं रखना चाहिए। आप जाके दुनिया देखिए, आप जाके दुनिया देखिए, लोगों से बात कीजिए, ठीक है, क्योंकि आपका जो अनुभव है और मेरा जो अनुभव है वो अलग होते हैं,
1: बिल्कुल,
0: ठीक है। तो अगर आप अनुभव शेयर करेंगे, आप बताएंगे कि ठीक है मैंने ये सीखा है और मेरे पास ये टैलेंट है, मेरे पास ये कौशल है, तो साथ मिलकर ये जो नुवा जो नहीं जो अभी उभर रहा है वो अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं कि ठीक है मेरे इर्द गिर्द मेरे सराउंडिंग्स में ऐसे लोग हैं जो कुछ कर रहे हैं, तो मैं इस चीज़ को एक एग्जांपल लूं और आगे बढ़ो।
1: बिल्कुल, मैं इस बात से आपके बिल्कुल सहमत हूँ। घर से निकलना बहुत ज़रूरी है, ये नहीं कि पढ़ाई लिखाई मैंने कर ली अब घर बैठकर मैं इंतज़ार करूँ कि कब एक नौकरी मुझे दिखेगी या नौकरी मुझे ढूंढते हुए आएगी। अगर मुझे अभी के समय में कुछ करने का मौका नहीं मिल रहा है तो शायद मैं घर से निकल सकता हूँ, बाहर की चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकता हूँ, क्या पता मुझे कुछ ऐसा दिख गया जिसे मैं बिज़नेस में कन्वर्ट कर सकता हूँ या एक स्टार्टअप कर सकता हूँ। क्योंकि आज मॉरिशस में जो है बात करें, आजकल बहुत से ऐसे जो है सेक्टर्स है, प्राइवेट हो पब्लिक हो, जो स्टार्टअप्स को काफ़ी प्रमोट कर रहे हैं, उनमें इन्वेस्ट करने को देखते हैं। तो आप भी अपना कुछ ऐसा प्रोजेक्ट बनाकर अपने जो है अपने आइडियाज़ को लोगों के सामने रख सकते हैं और उसके ज़रिए आप अपने लिए रेवेन्यू क्रिएट कर सकते हैं।
0: क्योंकि हर जो आइडियाज़ होते हैं वो यूनिक होते हैं, जो मैं सोच रही हूँ जो मैं कर सकती हूँ वो एक दूसरा जैसे आदमी नहीं कर सकते, उनके पास भी ऐसे कौशल हैं, लेकिन जो यूनिकनेस है वो इंडिविजुअली आता है, ठीक है। जैसा आपने बोला कि बैठ के नहीं होते हैं चीज़ें, आपको जाना है, एक्सप्लोर करना है। हमारे अगर आप बात करते हैं, मेरे तरह बहुत ऐसे युवाएं हैं जो मॉरिशस आते हैं पढ़ाई के बाद, ठीक है, अगर हम ऐसे ही बैठे रहेंगे अपनी डिग्रीज के साथ कि अच्छा मैं भारत गई थी, मैं पढ़ने गई थी कि कब मुझे नौकरी मिलेगा, मुझे नौकरी नहीं मिल रहे, एफर्ट्स नहीं हो रहे, तो कुछ नहीं होता
1: कुछ
0: है।
1: नहीं होगा।
0: मेरे जब मैं आई थी तो मैं नहीं बोल रही हूँ कि संघर्ष नहीं था, देयर वॉज अ लॉट ऑफ स्ट्रगल, लेकिन हम लोगों ने हिम्मत नहीं हारा। ये भी एक स्किल्स होते हैं हिम्मत नहीं हारने के लिए,
1: कि
0: आपको अपना जो हिम्मत है जोड़ना है और उसको लेके आपको चलना है,
1: आगे बढ़ना है। बिल्कुल, ऐसा होता है कि जब हमें अपॉर्चुनिटी सही समय पर नहीं मिलते हैं तो हम डिस्करेज होने लगते हैं, और वहीं डिस्करेज ना होकर शायद उस टाइम को हम किसी और चीज़ में इन्वेस्ट करते हैं तो हम अपनी स्किल्स को एनहांस करते हैं। चलिए एक श्रोता है, उनसे मिलते हैं। हेलो, नमस्कार, आपका स्वागत है।
2: नमस्ते दोनों बहन जी को, नमस्ते
1: जी। कौन बोल रही है?
2: मैं नंदिनी नेपोल मोगू से बोल रही हूँ।
1: अच्छा नंदिनी जी, आज हमारी मेहमान भी नंदिनी ही है।
2: अच्छा अच्छा, हाँ, खुशी की बात है।
1: अच्छा बताइए, क्या जोड़ना चाहेंगी आप?
2: मैं यह जोड़ना चाहती हूँ कि जब हम सिटीजन हो जाते हैं तो हमें कुछ न कुछ करना चाहिए, केवल घर में बैठने से कुछ नहीं होता
1: जी।
2: हाँ, मैं अपने बारे में बोल रही हूँ कि मेरे बच्चे लोग सभी नौकरी पर चले गए, अभी मैं अकेली हूँ, और नातिन भी अपने लेसों में गई
1: जी।
2: तो अपने आप को व्यस्त रखना चाहिए ताकि आपको स्ट्रेस ना हो।
1: बिल्कुल,
2: हाँ, ये चाहिए अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए, जो हमने छोटा में सीखा बैठका जाकर
1: जी,
2: संस्कार के बारे में, रामायण के बारे में अच्छी अच्छी बातें तो हमारे बड़े जनों से सीखा है
1: जी,
2: तो कोशिश करके मैं ये सब बांटती हूँ अपने गांव में
1: जी।
2: हाँ, यही है मेरी कहना बेटी कि अपने आप को व्यस्त रखो, जो राग है बनाना है, जो पूजा पाठ है, संस्कार है, सब कुछ अपने आप में नहीं रखो, उसको बांटो
1: जी।
2: बांटेंगे तो अधिक होगा। विद्या कभी समाप्त नहीं होती है, चोरी नहीं होती है
1: जी।
2: विद्या जितना सिखाएंगे उतना बढ़ेगा
1: जी।
2: बस यही मेरी कहना है आप लोगों की बात के लिए, आपसे बात किया, बहुत धन्यवाद।
1: बहुत धन्यवाद नंदिनी जी आपके विचारों के लिए, बिल्कुल सही कहा, यानी कि अपने आप को किसी न किसी चीज़ में व्यस्त रखना। और इन्होंने एक बहुत अच्छी बात अपने बातों बातों में कही स्ट्रेस के बारे में, थोड़ा सा हम इस पर भी आएंगे नंदिनी जी। आजकल युवा जो है स्ट्रेस का जो है ज़्यादा बात करते हैं, मेंटल हेल्थ, मेंटल वेलनेस की ज़्यादा बात करते हैं। आज से कुछ समय पहले ये सारी चीज़ें उतनी मायने नहीं रखती थी, लेकिन समय के साथ जिस तरह से एवोल्यूशन हो रहा है, नई नई चीज़ें आ रही है, मेंटल हेल्थ को लेकर बहुत जोर दिया जा रहा है, बहुत सारी

0: काउंसलिंग हो रही है, स्ट्रेस के बारे में बात की जा रही है। ये नहीं है कि हमारे माता पिता या हमारे दादा दादी को स्ट्रेस नहीं था, लेकिन किस तरह से वो सभी चैलेंजेस को पार कर पाते थे और अभी के समय में हमारे लिए इस स्ट्रेस को हैंडल करना इतना मुश्किल हो रहा है।
1: देखिए, जितना, जैसे मैंने बोला था, जितना तेज़ी से दुनिया चल रही है उतना तेज़ी से स्ट्रेस भी बढ़ रही है। ठीक है, हमारे टाइम में जैसे जैसे मम्मी पापा थे, दादा दादी थे, इन लोगों के पास भी बहुत ऐसे स्ट्रेस थे। अगर मैं स्ट्रेस के बारे में बात करूँ तो फाइनेंशियल स्ट्रेस बहुत थे। ठीक है, कि घर को कंस्ट्रक्ट करना है, हम लोगों को परिवार समेटना है, तो ये अपने आप में एक स्ट्रेस थे। लेकिन उनको डील करना, उनको जैसे संभालना, उन्होंने ये स्ट्रेस को जैसे एक स्किल्स की तरह, जैसे समाधान ढूंढना कि बात करना है कि ठीक है, अभी इस महीने हमारे पास जैसे अभी फाइनेंशियल नीड्स नहीं है तो हम लोग ये नहीं कर पाएंगे।
0: एक बजटिंग होती थी ना,
1: लेकिन के, आज के युवा में वो टॉलरेंस स्किल्स नहीं है,
0: पेशेंस की कमी,
1: पेशेंस नहीं है
0: जी।
1: ठीक है, उन लोगों को हर चीज़ जल्दी चाहिए,
0: तुरंत चाहिए,
1: तुरंत चाहिए कि अच्छा मम्मी मुझे ये आईफोन, आपको मुझे देना ये आईफोन क्रिसमस में, तो आपको देना ही है। ठीक है, तो आजकल कुछ कुछ ऐसे युवाएं हैं, जो मैं सारे युवाएं के बारे में नहीं बोल रहे, कुछ कुछ ऐसे युवाएं हैं जो हर चीज़ में जल्दी करती हैं कि मुझे रिजल्ट्स जल्दी चाहिए। तो असल की दुनिया में, जॉब मार्केट में, लाइफ में ये सब नहीं चलता है। आपको पेशेंस रखना ही है, ये पेशेंस ही अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। अगर युवाएं के बात करूँ, अगर आपको अपना ड्रीम जॉब चाहिए जो आपने स्टडीज़ किए हैं, जैसे मैंने कम्युनिकेशन में पढ़ाई किया है, तो हर बच्चा यही चाहता है, हर स्टूडेंट ये चाहता है कि मैंने इस चीज़ पे स्टडी है तो मुझे यही जॉब मिलना चाहिए। ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप ज़्यादा ही लकी हो तो मिल जाते हैं, लेकिन हर जो युवा है, हर इंडिविजुअल, हर व्यक्ति लकी ऐसे नहीं होते हैं।
0: मतलब जो चाहता है वो नहीं,
1: नहीं
0: मिलता
1: होता
0: है,
1: इतना आसानी से नहीं होता है। ठीक है, तो आपको हार्ड वर्क करना है, आपको एक एक स्टेप, स्टेप बाय स्टेप चलना है। तो ये स्टेप बाय स्टेप ये स्ट्रेस कोज करता है। और मुझे लगता है कि हमारे जो समाज में है, जैसे अभी हमको एक कॉल आया था ना, तो उस स्ट्रेस को कैसे मैनेज किया जाता है, उसको हम लोग स्ट्रैटेजी में देखते हैं। तो पहले बैठकाएँ होती थी, अभी अभी होते हैं ना, कि आप बच्चों को मार्गदर्शन दे, ठीक है, कि आप स्ट्रेस ना ले, आप उस चीज़ को टैकल कैसे कर सकते हैं, सॉल्यूशंस कैसे लेकर आ सकते हैं। तो मुझे लगता है कुछ ऐसे संस्थाएं होनी चाहिए, ठीक है, जो हमारे युवाओं को एक मार्गदर्शन दे, उनको बताएं कि अगर आप ऐसे स्ट्रेस लेते हो तो आप खुद हिम्मत हारते हो। और हम लोग बहुत देख रहे हैं कि ऐसे ऐसे केसेस भी होते हैं जहाँ पे युवाएं हिम्मत हार के कुछ गलत काम भी करते हैं, ड्रग्स की ओर बढ़ते हैं, या खुद अपने आप को जैसे सेल्फ सुसाइड भी करते हैं। तो यहाँ पे क्या, कौन जैसे हार मानते हैं, हमारे पेरेंट्स, ठीक है, कि हम लोगों ने युवा को, इस बच्चे को इतना कुछ दिया है,
0: इतना काबिल बनाया है,
1: उतना काबिल बनाया, और खुद जाके आगे हार मानते हैं। तो उस सिचुएशन को ना होने के लिए हम लोगों को बहुत काम करना है, संस्थान को जैसे अपील करना है कि अपने युवाओं को जैसे एक फोमाशों दे, एक एनकैडरमेंट दे, कि इन लोगों को सही मार्गदर्शन दिए जाए।
0: चलिए, यहाँ पर ऐसा करते हैं, एक और गीत के साथ आज के इस कार्यक्रम को हम आगे ले जाते हैं, फिर इस चर्चा को हम जारी रखेंगे।

0: आज की चर्चा इस कार्यक्रम में हमारा साथ देने के लिए धन्यवाद डॉक्टर नंदिनी जी से। अब हम जानना चाहेंगे, जब हम कौशल की बात करते हैं, स्किल्स की बात करते हैं, तो किस तरह से रोज़गार की दुनिया में ये अपॉर्चुनिटीज़ को और बढ़ाता है। जैसे हमने काफ़ी पहलुओं पर तो ऑलरेडी नज़र डाल दी है, लेकिन अभी का जो समय है काफ़ी चैलेंजिंग है, काफ़ी कॉम्पिटिशन बढ़ गया है, और अपने आप को साबित करना कहीं ना कहीं एक युवा के लिए पहले के समय से अभी ज़्यादा मुश्किल हो गया है।
1: जी, इसमें मैंने पहले बताया था कि अगर आपके पास बस डिग्रीज हैं, ठीक है, जब आप इंटरव्यूज़ में जाते हो तो इंटरव्यू पैनल में आपसे पूछते हैं, ठीक है, कि आपने कौन कौन से कौशल सीखे हैं, ठीक है, और उसके बाद क्या आता है कि अगर आपके पास स्किल्स है वो आपके चांसेस को और भी बढ़ाता है, ठीक है, और इसके साथ साथ अगर आपके चांस बढ़ रहे हैं तो आपके अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ रहे हैं ना, आपके कैरियर के लिए भी बढ़ रहे हैं ना, आपके फ्यूचर के लिए भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि लोग आपको पहचानते हैं, ठीक है। रोज़गार में एम्प्लॉयमेंट की अगर मैं बात करूं, अगर मान लीजिए एक कंपनी है जहाँ पे एक मैनेजर को हायर कर रहे हैं, ठीक है, और उस इंटरव्यू के लिए देने के लिए 10 लोग आ गए, तो उस 10 लोग को कैसे फिल्टर आउट करेंगे, ठीक है, 10 लोग के पास ऐसे 10 क्वालिफिकेशंस हैं, तो उनको मैं कैसे एक हायरिंग मैनेजर के नाते मैं कैसे फिल्टर आउट करूँ, अच्छा ये ठीक है ये ठीक नहीं है, तो ये यहाँ पे स्किल्स काम आती हैं, ठीक है, कि अच्छा उन्होंने ये सीखा है, उनके पास ये एक्सपीरियंस है, ठीक है। आजकल की मॉरिशस के संदर्भ में बात करूँ, जहाँ पे आप इंटरव्यू जाते हो वो आपसे एक्सपीरियंस पूछते हैं।

0: ठीक है। और ये भी एक इशू है कि बहुत ऐसे युवाएं हैं जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या काम आते हैं, क्या यूटिलिटी आता है, आपका स्किल्स। मान लीजिए आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, इट्स नॉट एन इशू, ये कोई बड़ी बात भी नहीं है। आपने अभी अभी फ्रेश पढ़ाई की है तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन अगर आपके पास कुछ ऐसे अनदर एडिशनल स्किल्स हैं, कौशल है, तो आप उसको इंटरव्यू में प्रूव कर सकते हैं कि ठीक है, मैंने इसमें बीए किया है, मैंने मास्टर्स किया है, लेकिन उसके साथ साथ मैंने ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है, मैंने सोशल वर्क भी किए हैं। तो ये यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट में बहुत ही मदद करता है।
1: बिल्कुल सही कहा कि हमें अपने टाइम को यूटिलाइज करना आना चाहिए।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि आमतौर पर हम देखते हैं कि जब स्कूल हॉलीडेज होते हैं, बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं थोड़े से पॉकेट मनी के लिए जाकर कोई कहीं पर पार्ट टाइम जॉब करते हैं। ये सिर्फ पॉकेट मनी तक ही सीमित नहीं होता है, ये आपको एक्सपीरियंस भी देता है, और प्लस ये आपके सर्टिफिकेट पर भी आता है कि देखो आपने किस तरह से आपने ये भी सीखा है, यानी कि पढ़ाई के साथ साथ आपको इस फील्ड में भी थोड़ी जानकारी है। या तो अगर आप पार्ट टाइम नौकरी नहीं करना चाहते हैं, मे बी आपके फैमिली नहीं अलाउ करती या जो भी रीजंस है, तो कहीं ना कहीं उस टाइम को आप कुछ नया सीखने में जो है लगा सकते हैं। कहीं पर कोई कोर्स चल रहा है, कहीं पर कोई एक्टिविटी हो रहा है, कोई वर्कशॉप हो रहा है, आप जाकर उसका हिस्सा बन सकते हैं। या ये भी नहीं कर पाए तो आजकल आपने सोशल एक्टिविटी की बात की, बहुत से ऐसे एनजीओज है जिनके साथ आप जुड़ सकते हैं, बहुत से युवा है जो एनजीओज को चलाते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, तो आप इनके साथ जुड़कर भी अपना योगदान दे सकते हैं, है ना जी। और आपसे हम जानना चाहेंगे, एज आप नेशनल वाइस चेयरपर्सन है एट वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टूडेंट्स एंड यूथ, आप युवाओं के साथ बहुत काम करती हैं, तो किस तरह से आप युवाओं को जो है तैयार करते हैं आने वाले कल के लिए?
0: देखिए, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा क्या होता है, हम लोग मॉरिशस के कॉन्टेक्स्ट के सीमित नहीं रहते हैं, ठीक है। भारत में जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो दुनिया भर में आके पढ़ाई करते हैं, हम उन लोगों के साथ काम करते हैं। हम लोग बस एकेडमिक नहीं देखते हैं, हम इन लोगों कि जैसे अडेप्टेबिलिटी कल्चर है, वो जो स्किल्स है उन पे काम करती हैं। कि आप जब आते हो एक नए देश में, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको कल्चर शॉक मिलेगा, तो उस जैसे सिचुएशन को, उस स्थिति को आप कैसे संभालते हो, उस स्किल्स को आप कैसे डेवलप करते हैं। और जब आप ऑर्गेनाइजेशन में, हम इस चीज़ पे भी फोकस करते हैं कि आप अपने डिसीजन कैसे लेते हो, समाधान कैसे ढूंढते हो, टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि आप पढ़ाई के साथ साथ आप बाज़ार में जाएंगे, आप कुछ खरीदेंगे खाने पीने के लिए, आप दोस्तों के साथ घूमेंगे, तो उस सब चीज़ों को आपको मैनेज करना है ना।
1: उसके अलावा अगर आप बाहर पढ़ाई कर रहे हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स पार्ट टाइम नौकरी भी करते हैं, तो अपने आप अपने टाइम को प्रॉपरली यूटिलाइज करना बहुत ज़रूरी होता है।
0: हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग ये भी प्रमोट करते हैं कि बच्चे जो है जो भारत में आते हैं विभिन्न देशों में, आप लोग जाके भारत में इंटर्नशिप कीजिए। हम लोग इस चीज़ पे भी बहुत फोकस करते हैं कि आप इंटर्नशिप लीजिए, आप बाहर की दुनिया को जानिए, आप रिसर्च कीजिए, और आप जानिए कि जब हम लोग इंटर्नशिप कर रहे हैं तो इसमें बहुत ऐसे विभिन्न ऐसे लोग हैं, क्योंकि भारत भी बहुत बड़ा है कि आप एक दिन पंजाब से एक आदमी से मिल रहे हो, दूसरे तरफ वेस्ट बंगाल से, तो हर जो कैसे बोलूँ,
1: अलग अलग कल्चर के लोगों से,
0: अलग अलग कल्चर से आप मिलते हो लोगों से, तो अलग अलग आइडियाज मिलते हैं,
1: मतलब बहुत सारी चीजें आपको सीखने का और जानने का मौका मिलता है। इससे क्या है, आप अपने आप को एनहांस करते हैं, मतलब कि आपने आज उनके कल्चर से कुछ नया सीखा, आज उसे देखकर कुछ नया सीखा, तो ये आपको जो है आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में भी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है।
0: और हम लोगों ने देखा है वो उसी में ऑर्गेनाइजेशन में, कि जब हम लोग प्रमोट करते हैं युवाओं के लिए, स्टूडेंट्स को, तो हम लोगों ने देखा है कि एट दी एंड ऐसा होता है कि इन लोगों को में बहुत प्रतिभाएं आ जाती हैं, जागरूक हो जाती है। हम लोग खुद यकीन नहीं होता कि अच्छा, ये पहले बहुत शांत रहती थी, अब अचानक से 2 साल हो गए स्टडीज़ के बाद, तो एकदम से जैसे खुला हो गए, ओपन हो गए आइडियाज़ में, दिमाग में बोलने लगते हैं बच्चे। तो हम लोग ऑर्गेनाइजेशन में यही काम करते हैं कि जब बच्चे आते हैं भारत में स्टडीज़ करने के लिए, वो ना केवल डिग्री लेकर जाते हैं वापस, वो अन्य अनुभवें, अन्य स्किल्स लेकर जाते हैं।
1: चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर नंदिनी जी, आप हमारे प्रोग्राम से जुड़ी, और लगभग हमारे प्रोग्राम का समय भी खत्म होने को चला, और आज का जो हमारा विषय था वो था विश्व युवा कौशल दिवस, जो हर वर्ष 15 जुलाई को मनाया जाता है। तो जाते जाते आप सबको क्या संदेश देना चाहेंगे?

0: मैं यही संदेश देना चाहती हूँ सभी युवाओं के लिए, खासकर हमारे मॉरिशन कॉन्टेक्स्ट के बारे में अगर मैं बात करूँ, कि आप दुनिया देखिए, आप पढ़िए और ज़्यादा सोशल वर्क कीजिए, क्योंकि जब आप ये सब करोगे तो आप सीखोगे कि असल में रियल लाइफ कैसे होती है। तो मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि सपने सच होते हैं, लेकिन इसके लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन हार भी मत मानिए।
1: बहुत बहुत धन्यवाद नंदिनी जी, आप आई हमारे कार्यक्रम से जुड़ी और आज के इस विषय को लेकर आपने इतनी सारी जानकारियाँ दी। आशा करते हैं जितने भी लोग हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े रहे, आज के इस कार्यक्रम से अवश्य आपने लाभ उठाया होगा। जाते जाते हम धन्यवाद देना चाहेंगे आप सभी को, आप हमेशा इस प्रोग्राम से जुड़ते हैं, और साथ ही हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को और टेक्निकल टीम को, हमारे प्रोड्यूसर जिनेश, साथ में यूसुफ और दीपशिका का सहयोग भी हमें मिला। तो आज के लिए बस इतना ही, जल्द हमारी आपकी मुलाकात फिर होगी, तब तक के लिए हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार आप सभी को।

निर्मणि सभी सुनने वालों को नमस्कार। विपक्ष के नेता जोली शौंका का प्राइवेट नोटिस क्वेश्चन आज श्रम मंत्री और औद्योगिक मंत्री को संबोधित है। विपक्ष नेता आज श्रम और औद्योगिक मंत्री से प्राइवेट नोटिस क्वेश्चन में प्रवासी श्रमिकों की भर्ती से जुड़े मुद्दों पर सवाल करेंगे। वो फर्जी संगठनों की रोकथाम, श्रम कानूनों के पालन, वेतन ऑडिट और अवैध क्षेत्र परिवर्तन रोकने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी मांगेंगे। मई में मॉरिशस का व्यापार घाटा 35% बढ़कर 22,367 मिलियन रुपए हो गया, जिसका मुख्य कारण पेट्रोलियम आयात बिल में भारी वृद्धि है। अर्थशास्त्री एरिक निंग के अनुसार मॉरिशस डबल डेफिसिट का सामना कर रहा है, जहां सरकार और देश दोनों अपनी क्षमता से ज्यादा खर्च और आयात कर रही हैं। ईंधन पर निर्भरता और संभावित 4% राजकोषीय घाटे को देखते हुए उन्होंने सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में तुरंत सख्ती बरतने की चेतावनी दी है। और विदेश में एंडी बर्नहम ने प्रधानमंत्री के रूप में अपनी पहली बड़ी नीति घोषणा करते हुए बिजली बिलों से VAT हटाने का ऐलान किया है। घरेलू बिजली पर लगने वाला VAT 1 अक्टूबर से 5% से घटाकर 0% कर दिया जाएगा। इससे एक सामान्य परिवार को सालाना लगभग 45 पाउंड स्टर्लिंग की बचत होगी। तो इन्हीं खबरों के साथ ही संक्षिप्त समाचार समाप्त हुई। थोड़ी देर में शोक समाचार। नंबर 24 क्लोजेल लेन फिनिक्स में 50

0: 85 साल की 85 years old की श्रीमती ललिता प्रयाग सिंह, पैदाइशी नाम बिस्नुत सिंह और जो मिमिन नाम से भी जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज शाम पाँच बजे उनके घर नंबर 24 क्लोजेल लेन फिनिक्स से उठाकर सुल्फेगिनों की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमिशन विस आफ्टरनून एट 5 PM। रिवालों रोड क्रेवकर में 77 साल के 77 ईयर्स ओल्ड के श्री अनिरुद्ध गोविंद, जो अनिरुद्ध नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज सुपहर 3 बजे उनके बेटे रवि गोविंद के घर रिवालों रोड क्रेवकर से उठाकर वहीं की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 3 PM। जुरिया रोड लासुरंस दागुतिया में 78 साल की 78 ईयर्स ओल्ड की कुमारी सावित्री जुरिया, जो दुदुन नाम से भी जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज दिन के 11 बजे उनके भाई सतेय भरत जुरिया के घर जुरिया रोड लासुरंस दागुतिया से उठाकर मेजिन कॉन्डोमास की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 11 AM। बैठका रोड मोंगू में 81 साल की 81 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती मुतामा नारायणन, पैदाशी नाम पुइनन और जो अमाय नाम से भी जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज सुपहर 3:30 बजे उनके पोते जेम्स नारायणन के घर बैठका रोड मोंगू से उठाकर वहीं की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 3:30। शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हमारी संवेदना है।
1: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस।

भक्तिमय कार्यक्रम भक्ति धारा रेडियो मॉरिशस पर। ये मॉरिशस ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन का रेडियो मॉरिशस प्रसारण है। मीडियम वाट्स 19 किलोहर्ट्ज़ पर से हमारा ये प्रसारण जारी हो रहा है। भक्ति धारा कार्यक्रम सुनने वाले हमारे समस्त श्रोताओं का हम करजोड़ अभिवादन करते हैं। माइक पर आपका साथ दे रही है रत्ना, हमारा सुप्रीम नमस्कार पुनः स्वीकार करें। अभी से लेकर दिन के 11 बजे तक हम आपकी सेवा में उपस्थित रहेंगे भक्तिमय भजनों के साथ। कुछ ज्ञानवर्धक बातें इसी कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुन पाएंगे ठीक 10:15 बजे वेद सुधा कार्यक्रम के अंतर्गत, जहां पर आचार्य सुदेश बद्री जी का साथ रहेगा और उनकी ज्ञानवर्धक बातें सुनने का हमें सुअवसर प्राप्त होगा। तो आइए आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं आज के सुविचार के साथ। श्रोताओं, भक्त सदैव कुसंगति से दूर रहता है और आज के इस कार्यक्रम का श्री गणेश करते हैं इस प्रथम गणेश भजन के साथ।

0: वेदों पर आधारित कार्यक्रम, आइए सुनिए वेद सुधा।
1: वेद सुधा कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी श्रोताओं को मेरा हार्दिक अभिवादन। आज का कार्यक्रम तीन भागों में विभाजित है। प्रथम वेद पाठ एवं भावार्थ, द्वितीय एक प्रेरणादायक भजन और अंत में एक वैदिक मंत्र की गहन व्याख्या। तो आइए वेद पाठ के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ करें। ओम सोम पवते जनिता मतीना आम जनिता दिवो जनिता पृथिव्या जनिताग्नर्जनिता सूर्यस्य जनितेन्द्रस्य जनितोत विष्णोः। सद्बुद्धियों का प्रेरक द्योलोक, पृथ्वीलोक, अग्नि, सूर्य, विद्युत और इन सब में विद्यमान यज्ञ भाव का जनक शांत स्वरूप जगदीश्वर, प्यारा और सब जग से न्यारा प्रभु उपासकों को सदा पवित्र करता रहता है। ओम सखाय आनिशीदत पुमानाय प्रगायत शिशुम्न यज्ञै परिभूषत श्रिये। उपासकों को चाहिए कि वे अपने समान गुण कर्म स्वभावों वाले महानुभावों के साथ मिलकर बैठें और अपनी पुरानी बातों को भुलाकर आत्मा को सब प्रकार से शुद्ध पवित्र करने वाले प्यारे प्रभु का गुणगान करें। ओम तम वह सखायो मदाय पुनानमभिगायत शिशुम्न हव्यै स्वदयंत गूतिर्भिः। उपासकों को चाहिए कि वे समान गुण कर्म स्वभाव वालों से मेल करें, अपनी आत्मा को निहाल करने के लिए, परितृप्त करने के लिए, अनुपम आनंद की प्राप्ति के लिए वे सदा हृदय मंदिर को शुद्ध पवित्र करने वाले प्रभु का गुणगान करें। ओम इंद्रो राजा जगतश्चर्षणी नामधिक्षमाविश्व।

ततो ददाति दाशुषे वसूनि चंदन्द्राय उपस्तुतम चितर्वा। वह इंद्र ही इस संपूर्ण संसार का और इसमें विद्यमान प्राणी समूह और पदार्थ समूह का स्वामी है।

सर्वविध धन वैभव दानशील को देता है। अति स्तुत्य वैभव आंतरिक दिव्य वैभव भी इस आत्मसमर्पण करने वाले उपासक की ओर ही वह प्रवाहित करता है। ओम शांति शांति शांति।

अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम। प्रिय श्रोतागण, वैदिक वाङ्मय संपूर्ण मानव जाति के लिए दिव्य ज्ञान का अक्षय स्रोत है। वेदों में निहित प्रत्येक मंत्र केवल किसी धार्मिक अनुष्ठान का अंग नहीं, बल्कि मानव जीवन को सत्य, धर्म, ज्ञान, विवेक और कल्याण के मार्ग पर अग्रसर करने वाला शाश्वत संदेश है। वेद मनुष्य को केवल ईश्वर की उपास

उपासना करना ही नहीं सिखाते, बल्कि यह भी बताते हैं कि जीवन किस प्रकार जिया जाए, समाज का निर्माण किन मूल्यों पर हो, ज्ञान का उद्देश्य क्या है और मनुष्य अपने जीवन को किस प्रकार उत्कृष्ट बना सकता है। पठित मंत्र ईशोपनिषद का अंतिम मंत्र भी है तथा वैदिक साहित्य में अत्यंत लोकप्रिय प्रार्थनाओं में से एक है। यह मंत्र मनुष्य के संपूर्ण जीवन का सार प्रस्तुत करता है। इसमें परमात्मा से धन वैभव अथवा भौतिक सुखों की याचना नहीं की गई, बल्कि सत्य मार्ग पर चलने की प्रेरणा, पापों से रक्षा तथा उत्तम जीवन के लिए दिव्य मार्गदर्शन की प्रार्थना की गई है। श्रोताओं, इस मंत्र का प्रत्येक शब्द अपने भीतर गहन दार्शनिक अर्थ समाहित किए हुए हैं। यहाँ अग्नि शब्द का विशेष महत्व है। सामान्यतः कुछ लोग इसका अर्थ केवल अग्नि अर्थात भौतिक अग्नि से करते हैं, किंतु वैदिक व्याकरण निरुक्त तथा महर्षि दयानंद सरस्वती के भाष्य के अनुसार यहाँ अग्नि परमात्मा का वाचक नाम है। अग्नि शब्द की व्युत्पत्ति अंजुगति पूजनयोः तथा अग्रिगतौ धातु आदि से की जाती है। निरुक्तकार यास्क आचार्य ने अग्नि के अनेक अर्थ बताए हैं। यहाँ प्रसंग सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, मार्गदर्शक और उपास्य सत्ता का हो, वहाँ अग्नि का अर्थ परमेश्वर होता है, क्योंकि वही समस्त ज्ञान का प्रकाशक है, वही सबको प्रेरणा देने वाला है और वही अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। श्रोतागण, इस प्रकार मंत्र का आरंभ ही इस सत्य से होता है कि मनुष्य अपने जीवन के प्रत्येक निर्णय में परमात्मा का मार्गदर्शन चाहता है। यह भावना वैदिक धर्म का मूल आधार है। वेद मनुष्य को अंधविश्वास नहीं सिखाते, बल्कि विवेकपूर्ण ईश्वर विश्वास की शिक्षा देते हैं। परमात्मा ऐसा गुरु है जो कभी भ्रमित नहीं होता, कभी पक्षपात नहीं करता और कभी अन्याय नहीं करता, इसलिए वही संपूर्ण संसार में मनुष्य का सर्वोत्तम पथ प्रदर्शक है। श्रोताओं, मंत्र में आगे कहा गया है नया सुपथा, अर्थात हमें उत्तम मार्ग से ले चलो। यहाँ सुपथा का अर्थ केवल किसी भौतिक मार्ग से नहीं है, इसका तात्पर्य धर्म, सत्य, ज्ञान, न्याय, सदाचार, विवेक और आत्मोन्नति के मार्ग से है। वैदिक साहित्य में जीवन को एक यात्रा माना गया है। इस यात्रा में मनुष्य के सामने अनेक प्रकार के मार्ग उपस्थित होते हैं। एक मार्ग सत्य का है, दूसरा असत्य का, एक धर्म का है, दूसरा अधर्म का, एक संयम का है, दूसरा भोगवाद का, एक परोपकार का है, दूसरा स्वार्थ का। मनुष्य को यह स्वतंत्रता प्राप्त है कि वह इनमें से किसी भी मार्ग का चयन कर सकता है, किंतु वेद यह स्पष्ट करते हैं कि वास्तविक सुख उसी को प्राप्त होता है जो सत्य और धर्म के मार्ग का अनुसरण करता है। श्रोताओ, मंत्र में राय आसमान शब्द भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। सामान्य अर्थ में रई का अर्थ धन या संपत्ति किया जाता है, किंतु वैदिक साहित्य में रई का अर्थ केवल भौतिक धन नहीं है। महर्षि दयानंद ने अपने भाष्यों में रई का अर्थ ऐश्वर्य, विद्या, सद्गुण, आरोग्य, नैतिक शक्ति, आत्मबल तथा समस्त कल्याणकारी संपदाओं से किया है। इसलिए इस मंत्र का भाव यह नहीं है कि परमात्मा हमें केवल धनवान बना दे, बल्कि यह है कि वह हमें ऐसे श्रेष्ठ मार्ग पर चलाए जहां जीवन की समस्त कल्याणकारी संपत्तियों
प्राप्त हो। यदि मनुष्य केवल धन प्राप्त कर ले किंतु उसके पास चरित्र

मित्र न हो तो वाधन उसके पतन का कारण भी बन सकता है। श्रोताओं, इसके पश्चात मंत्र कहता है विश्वानि देव वयुनानि विद्वान। यहाँ देव शब्द का अर्थ भी परमात्मा है, क्योंकि वही प्रकाश स्वरूप सर्वज्ञ और उपास्य है। वयुनानि शब्द का अर्थ कर्मों के मार्ग, उपाय, ज्ञान, कार्य प्रणालियाँ तथा जीवन के विविध रहस्य है। परमात्मा उन सभी को पूर्णतः जानता है। मनुष्य का ज्ञान सीमित है, वह भविष्य को नहीं जानता, अपने प्रत्येक निर्णय के परिणाम को नहीं समझता और अनेक बार मोह या अज्ञान के कारण गलत निर्णय ले बैठता है। किंतु परमात्मा सर्वज्ञ है, वह प्रत्येक कर्म के परिणाम को जानता है। इसलिए मनुष्य उससे प्रार्थना करता है कि वह उसे उसी मार्ग पर चलाए जो वास्तव में उसके लिए कल्याणकारी हो। मंत्र के उत्तरार्ध में ऋषि परमात्मा से अत्यंत मार्मिक प्रार्थना करते हैं, युयोध्यस्मत् जुहुराण मेन। इस पद में वैदिक जीवन दर्शन का अत्यंत गूढ़ नैतिक सिद्धांत निहित है। यहाँ युयोधि का अर्थ है दूर करना, हटाना, रक्षा करना अथवा बचाना। एनह का अर्थ है पाप, दोष, अधर्म, कुटिलता, दुष्कर्म अथवा ऐसा आचरण जो मनुष्य को उसके वास्तविक कल्याण से दूर ले जाए। जुहुराणम का अर्थ है वह प्रवृत्ति जो मनुष्य को सत्य मार्ग से हटाकर अधर्म की ओर ले जाती है। अतः संपूर्ण वाक्य का भाव यह है कि हे सर्वज्ञ प्रकाश स्वरूप परमात्मा, हमारे भीतर उत्पन्न होने वाली उन सभी कुटिल प्रवृत्तियां, दोषों और पापमय वृत्तियों को दूर कर दीजिए जो हमें सत्य और धर्म मार्ग से विचलित करती है। श्रोताओं, इस मंत्र का संबंध केवल व्यक्तिगत जीवन से नहीं बल्कि सामाजिक और राष्ट्र जीवन से भी है। जिस समाज के नागरिक सत्य, न्याय, धर्म के मार्ग पर चलते हैं वहाँ अपराध कम होते हैं, पारस्परिक विश्वास बढ़ता है और विकास स्थायी होता है। श्रोताओं, मंत्र के अंतिम शब्द हैं भूयिष्ठां ते नम उक्तिम विधेम। इसका अर्थ है हे परमात्मा, हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं और आपके प्रति श्रद्धा एवं कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। यहाँ नमः केवल शारीरिक प्रणाम नहीं है। वैदिक परंपरा में नमस्कार का अर्थ है अहंकार का त्याग, सत्य का स्वीकार और ईश्वर के नियमों के प्रति स्वेच्छा से समर्पण। जो मनुष्य केवल वाणी से ईश्वर की स्तुति करता है किंतु व्यवहार में असत्य और अन्याय का अनुसरण करता है, उसकी उपासना अपूर्ण है। वास्तविक नमस्कार वही है जिसमें मनुष्य का संपूर्ण जीवन ईश्वर के सिद्धांतों के अनुरूप बन जाए। अंततः यह कहा जा सकता है कि अग्ने नय सुपथा राय अस्मान वैदिक वाङ्मय का एक अमूल्य मंत्र है जिसमें मानव जीवन की संपूर्ण दिशा निहित है। यह मंत्र हमें सिखाता है कि परमात्मा ही सर्वोच्च मार्गदर्शक है, सत्य ही वास्तविक मार्ग है, ज्ञान ही सर्वोत्तम संपत्ति है और चरित्र ही जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। यह मनुष्य को धर्म, विवेक, आत्मसंयम, परिश्रम, न्याय, सेवा और ईश्वर निष्ठा का जीवन अपनाने की प्रेरणा देता है। आधुनिक युग में और भौतिक प्रगति के साथ नैतिक संकट भी बढ़ रहे हैं, तब यह मंत्र और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। यदि व्यक्ति, परिवार, समाज और राष्ट्र इस मंत्र की भावना को अपने जीवन

0: जीवन में धारण करें तो न केवल व्यक्तिगत जीवन में शांति और संतुलन स्थापित होगा, बल्कि संपूर्ण मानवता अधिक न्यायपूर्ण, नैतिक और सुखी भविष्य की ओर अग्रसर होगी। यही इस महान वैदिक मंत्र का शाश्वत, सार्वकालिक और सार्वभौमिक संदेश है। श्रोतागण, इस कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर आ पहुँचे हैं। आशा है कि आज के वैदिक संदेश से आपको अवश्य ही लाभ एवं मार्गदर्शन मिला होगा। इस कार्यक्रम की तैयारी में श्रीमती अंजू जी का विशेष योगदान रहा, उनके प्रति कृतज्ञता है। आप सभी श्रोताओं का हृदय से धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नवीन प्रस्तुति के साथ। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेद सुधा।

धारा कार्यक्रम में पुनः आप सभी का हम हृदय की गहराई से स्वागत करते हैं और वेद सुधा कार्यक्रम के लिए आचार्य सुदेश बद्री जी को कोटि कोटि धन्यवाद अर्पित करेंगे उनकी ज्ञान वर्धक बातों के लिए।

श्रोताओं, घृणा, मन में किसी के लिए नकारात्मकता का भाव, ईर्ष्या, द्वेष, यह सब हमें दूसरों का नहीं बल्कि अपना खुद का भास करवाता है। बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे गन्ने की मशीन में अगर गन्ना डालें तो उसकी मिठास पहले मशीन को मिलती है, बाद में किसी और को प्राप्त होती है। अगर उस मशीन में पत्थर डालें तो पहले नुकसान मशीन का ही होता है, फिर दूसरों का। वैसे ही जब हम मन में किसी के प्रति बैर की भावना रखते हैं, किसी के प्रति नकारात्मकता का भाव रखते हैं, ईर्ष्या द्वेष का भाव रखते हैं, मलिनता का भाव रखते हैं, तो पहले यह हमारा ही नुकसान करता है। अगर आपको किसी के प्रति ऐसी हीन भावना हो तो यह भाव हमारे भीतर, यह हमारे भीतर है, ना कि सामने वाले में। और हम सदा यही विश्वास रखते हैं कि सामने वाला हमें देखकर कभी सुधरेगा तो ही हमें शायद आनंद प्राप्त हो। परंतु समझ तो ये है कि हम जब तक अपने भीतर ये परिवर्तन नहीं लाते, जब तक हमारे भीतर का ये जो हीन भावना है उसे समाप्त नहीं करते, हम दुनिया में किसी के अंदर की हीन भावना को समाप्त नहीं कर पाएंगे।

जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, यह आपा तो डाल दे दया करे सब कोई। संत कबीर दास का यह दोहा, इसका अर्थ यही है कि अगर आपका मन शीतल है तो विश्व में कोई आपका शत्रु नहीं हो सकता, और अगर मनुष्य अपना अहंकार छोड़ दे तो उस पर हर कोई दया करने को सदैव तैयार रहता है, सदैव तत्पर रहता है।

श्रोताओं, इसी के साथ भक्ति धारा कार्यक्रम के समापन करने का समय हो चला है। जाते जाते बस यही कहेंगे कि पूरा सतगुरु ना मिला, सुनी अधूरी सीख, स्वांग यति का पहिन के, घर घर मांगे भीख। संत कबीर कहते हैं कि जिसे पूरे सतगुरु ना मिले, उसे यथार्थ ज्ञान भी प्राप्त नहीं हो पाता। उसने इधर उधर से अधूरा ज्ञान ग्रहण कर लिया और साधु का वेश धारण करके घर घर जाकर भीख मांगने लगा। इससे शिष्य को कल्याण कहाँ से प्राप्त हो? श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम को अंतिम भजन के साथ समाप्त करेंगे। आज का दिन सभी के लिए भक्तिमय रहे, ज्ञानवर्धक रहे, ऊर्जामय रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सभी के लिए कल्याण की कामना करते हुए आज के इस कार्यक्रम को बस यहीं पर विराम देंगे। पुनः उपस्थित रहेंगे एक अन्य कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ दिन आप सभी को।

0: मेरी सुने संक्षिप्त समाचार आपसे विधिमा नमस्कार।
1: नमस्कार निर्मणि, सभी सुनने वालों को नमस्कार। विपक्ष नेता जोली शोंग आज श्रम और औद्योगिक मंत्री से प्राइवेट नोटिस क्वेश्चन में प्रवासी श्रमिकों की भर्ती से जुड़े मुद्दों पर सवाल करेंगी। वे फर्जी संगठनों की रोकथाम, श्रम कानूनों के पालन, वेतन ऑडिट और अवैध क्षेत्र परिवर्तन रोकने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी मांगेंगी। इस सत्र के बाद संसदीय प्रश्न होंगे। इसके बाद मॉरिशस हाइड्रोग्राफिक सर्विसेज बिल पर बहस फिर से शुरू होगी, साथ ही क्रिमिनल कोड अमेंडमेंट बिल पर भी बहस शुरू की जाएगी। मई में मॉरिशस का व्यापार घाटा 35% बढ़कर 22,367 मिलियन रुपए हो गया है, जिसका मुख्य कारण पेट्रोलियम आयात बिल में भारी वृद्धि है। अर्थशास्त्री एरिक निंग के अनुसार मॉरिशस डबल डेफिसिट का सामना कर रहा है, जहां सरकार और देश दोनों अपनी क्षमता से ज्यादा खर्च और आयात कर रही हैं। ईंधन पर निर्भरता और संभावित 4% राजकोषीय घाटे को देखते हुए उन्होंने सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में तुरंत सख्ती बरतने की चेतावनी दी है। और विदेश में यूक्रेनी शहर ओडिशा के तट पर एक मालवाहक जहाज पर रूसी हमले में मरने वालों की संख्या बढ़कर 10 हो गई है। यूक्रेनी वायुसेना ने बताया कि गिनी बिसाओ के झंडे वाले उस जहाज को रविवार को रूसी क्रूज मिसाइलों से निशाना बनाया गया था, जिससे उसमें आग लग गई। खोज और बचाव अभियान शुरू किया गया, जो पूरी रात चला। तो इन्हीं खबरों के साथ ही संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। थोड़ी देर में शोक समाचार। ब्लॉक A1 क्रिमिशन स्ट्रीट थोंगबर में 80 साल के 80 ईयर्स ओल्ड के श्री देवेंद्रलाल पसुनू, जो विनोद बुक्सर नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज दिन के 2:30 बजे उनकी पत्नी श्रीमती शीला पसुनू के घर ब्लॉक A1 क्रिमिशन स्ट्रीट थोंगबर से उठाकर थोंगबर की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमिशन टुडे at 2:30। शोक में डूबे इस परिवार के प्रति हमारी संवेदना है।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: इस समय स्टूडियो की घड़ी में 11:02 हो चुके हैं। आगे बढ़ने से पहले आइए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा जारी की गई एक विज्ञप्ति पर नजर डालते चले। ये विज्ञप्ति है ग्रीष्मों के आसपास के इलाके, जिनमें हैं कुछ इलाके राधा किशन रोड, टागोर रोड, हनुमान रोड, शिमलासूस, सिमेट्री रोड, राजीव गांधी रोड, रामदेवा स्ट्रीट के इलाकों में रहने वालों को सूचित किया जाता है कि मंगलवार 21 जुलाई यानी आज सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे के बीच मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की सप्लाई में कटौती रहेगी। मरम्मत कार्य पूरा होते ही बिजली की सप्लाई को सुचारू रूप से जारी कर दिया जाएगा। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने सभी ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी हैं और ये विज्ञप्ति जारी की गई थी सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा। आपके ध्यान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे का कार्यक्रम आप सुन पाएंगे उर्दू भाषा में, पेशकश रहेगी सैयदा सुबाई की।
2: शम्मे फरोजा।
3: आऊज़ु बिल्लाही मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान और बड़ा रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। वो इसमें मोहम्मद का करें विर्द सुबह शाम, वो लोग जो कहते हैं गुजारा नहीं होता, दुनिया ये फ़क़त आपके सदक़े में बनी है, वरना ये जहां इतना प्यारा ना होता। मौज़ सामीन, उम्मीद है आप फ़ज़ल खुदा खैर वाफियत से होंगे। इस वक्त आप समाअत फरमा रहे हैं हमारी उर्दू नशरियात शम्मे फरोज़ा रेडियो मॉरिशस के ज़रिए सैयदा सुबाई के साथ। आज की इस उर्दू नशरियात में आप समाअत फरमाएंगे तिलावत कुरान पाक, हम्द मौलाना जुनैद अहमद ख़ान अशरफ़ी साहब का बयान और नातो सलाम, इसके अलावा आपके पैगामात। ताक़ीर ना करते हुए आइए आगाज़ करते हैं सूरह अल अनफाल की तिलावत से। आऊज़ु बिल्लाही मिनश शैतानिर रजीम।

मोमिनो, अगर तुम अल्लाह से डरोगे तो वो तुम्हारे लिए हक और बातिल का फर्क जाहिर कर देगा और तुम्हारे गुनाह मिटा देगा और तुम्हें बख्श देगा, और अल्लाह बड़े फजल वाला है।

और उस वक्त को याद करो जब काफिर लोग तुम्हारे बारे में चाल चल रहे थे कि तुमको कैद कर दें या जान से मार दें या वतन से निकाल दें। तो उधर तो वो चाल चल रहे थे और इधर अल्लाह तदबीर कर रहा था, और अल्लाह बेहतरीन तदबीर करने वाला है। और जब उनको हमारी आयतें पढ़कर सुनाई जाती हैं तो कहते हैं, ये कलाम हमने सुन लिया है, अगर हम चाहें तो इसी तरह का कलाम हम भी कह दें, और ये है ही क्या, सिर्फ अगले लोगों की हिकायतें हैं।

और जब उन्होंने कहा कि ऐ अल्लाह, अगर ये कुरान तेरी तरफ से बरहक है तो हम पर आसमान से पत्थर बरसा या कोई और तकलीफ देने वाला अजाब भेज दे। और अल्लाह ऐसा न था कि जब तक है पैगंबर तुम उनमें थे उन्हें अजाब देता, और न ऐसा है कि वो तो बख्शिश मांगे और अल्लाह उन्हें अजाब दे। और अब उनके लिए कौन सी वजह है कि वो उन्हें अजाब न दे, जबकि वो मस्जिद हराम में नमाज पढ़ने से रोकते हैं, जबकि वो उस मस्जिद के मुतवल्ली भी नहीं है। इसके मुतवल्ली तो सिर्फ परहेजगार हैं, लेकिन इनमें के अक्सर नहीं जानते।

और इन लोगों की नमाज खाने काबा के पास सीटियां और तालियां बजाने के सिवा कुछ न थी, तो तुम जो कुफ्र करते थे अब उसके बदले अजाब का मजा चखो। जो लोग काफिर हैं अपना माल खर्च करते हैं कि लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोकें, सो अभी और खर्च करेंगे मगर आखिर वो खर्च करना उनके लिए मूजिब अफसोस होगा और वो मगलूब हो जाएंगे और काफिर लोग दोजख की तरफ हांके जाएंगे, ताकि अल्लाह पाक से नापाक को अलग कर दे और नापाक को एक दूसरे पर रखकर एक ढेर बना दे, फिर उसको दोजख में डाल दे। यही लोग खसारा पाने वाले हैं।

और इन लोगों से लड़ते रहो यहां तक कि फितना यानी कुफ्र का फसाद बाकी न रहे और दीन सब अल्लाह ही का हो जाए। और अगर वो बाज आ जाएं तो अल्लाह उनके कामों को देख रहा है, और अगर रूगरदानी करें तो जान रखो कि अल्लाह तुम्हारा हिमायती है और वो खूब हिमायती और खूब मददगार है।

और जान रखो कि जो माल गनीमत तुम कुफार से हासिल करो उसमें से पांचवा हिस्सा अल्लाह का और उसके रसूल का और अहले कराबत और यतीमों का और मोहताजों का और मुसाफिरों का है। अगर तुम अल्लाह पर और उस नुसरत पर ईमान रखते हो जो हक व बातिल में फर्क करने के दिन यानी जंगे बद्र में जिस दिन दोनों फौजों में मुठभेड़ हो गई थी हमने अपने महबूब बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाई और अल्लाह हर चीज पर कादिर है।

जिस वक्त तुम मदीने से करीब के नाके पर थे और काफिर दूर के नाके पर, और काफिला तुमसे नीचे उतर गया था, और अगर तुम जंग के लिए आपस में करारदाद कर लेते तो वक्त मुय्यन पर जमा होने में तकदीम ताखीर हो जाती, लेकिन अल्लाह को मंजूर था कि जो काम होकर रहने वाला था उसे कर ही डाले, ताकि जो मरे बसीरत पर यानी यकीन जानकर मरे, और जो जीता रहे वो भी बसीरत पर यानी हक पहचान कर जीता रहे। और कुछ शक नहीं कि अल्लाह सुनता है, जानता है।

उस वक्त अल्लाह ने तुम्हें ख्वाब में काफिरों को थोड़ी तादाद में दिखाया था और अगर बहुत करके दिखाता तो तुम लोग जी छोड़ देते और जो काम दरपेश था उसमें झगड़ने लगते, लेकिन अल्लाह ने तुम्हें उससे बचा लिया। बेशक वो सीनों की बातों तक से वाकिफ है।

और उस वक्त जब तुम एक दूसरे के मुकाबिल हुए तो काफिरों को तुम्हारी नजरों में थोड़ा करके दिखाता था और तुमको उनकी निगाहों में थोड़ा करके दिखाता था, ताकि अल्लाह को जो काम करना मंजूर था उसे कर डाले, और सब कामों का रुजू अल्लाह ही की तरफ है।

मोमिनों, जब कुफार की किसी जमात से तुम्हारा मुकाबला हो तो साबित कदम रहो और अल्लाह को बहुत बहुत याद करो ताकि मुराद हासिल कर लो, और अल्लाह और उसके

वालों का मददगार है, और उन लोगों जैसे न होना जो इतराते हुए यानी हक का मुकाबला करने के लिए और लोगों को दिखाने के लिए घरों से निकल आए और लोगों को अल्लाह की राह से रोकते हैं, और जो आमाल ये करते हैं अल्लाह उनका इहाता किए हुए है।

0: और जब शैतान ने उनके आमाल उनको आरास्ता कर दिखाए और कहा कि आज के दिन लोगों में से कोई तुम पर गालिब ना होगा और मैं तुम्हारा रफीक हूं, लेकिन जब दोनों फौजें एक दूसरे के मुकाबिल सफारा हुई तो पस्पा होकर चल दिया और कहने लगा कि मुझे तुमसे कोई वास्ता नहीं, मैं तो ऐसी चीजें देख रहा हूं जो तुम नहीं देख सकते, मुझे तो अल्लाह से डर लगता है और अल्लाह सख्त अजाब करने वाला है।
1: सदकल्लाहुल अज़ीम। अभी आप समात फरमा रहे थे सूरह अल अनफाल का एक हिस्सा है। पाक परवरदिगार हमें कुरान शरीफ समझ कर पढ़ने और उस पर अमल करने की पूरी पूरी तौफीक अता फरमा, आमीन। वो तो आँखों से समंदर भी बहा देता है और आफ्ताब को हकीर जर्रे में समा देता है। उसे फयकून से कायम है आलम का हुसन और वो हर लम्हे की बखा को हर लम्हे ही मिटा देता है। जा बजा जलवाए नूर मुहित है उसका कायनात में और चाहे तो दिल को ही कायनात बना देता है। वो तो आँखों से समंदर भी बहा देता है और आफ्ताब को हकीर जर्रे में समा देता है।

0: मौजूद सामीन, इस वक्त स्टूडियो की घड़ी में 11:27 होने को हैं। मंगल का दिन है, जुलाई की 21 तारीख है। आप जहां से भी हमारा साथ दे रहे हैं, हम आप सबका इस मजलिस में दिली खैर मकदम करते हैं। आप अपने पैगामात हमें व्हाट्सएप या नॉर्मल मैसेजेस के ज़रिए इस नंबर पर भेज सकते हैं, 5251-7005। जी हाँ, 5251-7005 के ज़रिए आप अपने पैगामात हमें भेज सकते हैं। ताख़ीर ना करते हुए अब आप समाअत फरमाएंगे ख़तीब इमाम हज़रत मखदूम सैयद अशरफ मस्जिद हाईलैंड्स के मोहतरम मौलाना जुनैद अहमद ख़ान अशरफी साहब की ज़ुबानी एक बयान। आइए समाअत फरमाइए।
1: نحمده نصلي ونسلم على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه عليهم أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن

करते हैं कि हज़रत देखा जाता है नमाज लोग पढ़ते हैं फिर भी चोरी बदमाशी और हक तलफी, लोगों के हक छीनते हैं। तो मेरा जवाब यही है, वो नमाज की एक्टिंग करते हैं, वो सिर्फ उठक बैठक करते हैं। पहले उनको अपने ईमान को तलाश कर लेना चाहिए, और फिर जिसके अंदर ईमान है फिर वो बंदा किसी का हक नहीं छीनेगा और ना किसी पर जुल्म करेगा, बल्कि नमाज का दावा और चैलेंज है, हर बुराई से मैं रोक दूंगा। इन्नस सलात तन्हा अनिल फाशल मुनकर, बड़े बड़े गुनाहों से रोक दूंगा, बड़े बड़े गलत इरादों से नमाज का हुक्म है कि मैं रोक दूंगा। तो अज़ीज़ाने मोहतरम, नमाज मोमिनीन जब पढ़ते हैं तो उसकी बात कुछ और है, और नमाज सिर्फ रस्मन दिखाने के लिए पढ़ी जाती है उसकी बात कुछ और है। मेरी दिली दुआ है लाह आलमीन सारे नमाजियों को ईमान कामिल अता फरमा दे, और मोमिनों से मेरी इल्तिजा है आप अपने ईमान को कामिल करो, फिर नमाज की लज्जत आप देखिए। मिलता है क्या नमाज में, सजदे में जाके देख, आप नमाज पढ़ के तो देखो, यही वो नमाज है कि अम्बिया अकराम अलैहिमुस्सलातु तस्लीम ने जब नमाज अदा की तो क्या रहमतें और बरकतें हासिल हुई। यही वो नमाज है कि मुख्तसर से वक्त में आप असहाबे रसूलुल्लाह सल्लम की ज़िंदगी उठा के देखो, नमाज सैयदना सिद्दीक अकबर को उठा के देखो, हमारे फारूक उस्मान गनी अली मुर्तज़ा हसन मुश्तबा की नमाजों को उठा के आप देखें। एक खुलफाए राशिदीन की नमाजों को आप देखें, अशरे मुबशरा की नमाजों को आपको उठा के देखें, और तारीख के दरीचे से फिर नमाज अहले बैत का क्या कहना। अल्लाह अकबर, ये पंजतन पाक की नमाज, ये पंजतन पाक यानी पंज तन पांच हैं और तन पांच तन हैं, और इनके ईमान का क्या तकाजा। अल्लाह अकबर, हम सब के आका मुसल्लम की नमाज जैसी कोई नमाज ना पढ़ा है ना पढ़ सकता है, और मेरे रसूल की नमाज क्या कहना। उम्मत को पांच वक्त की नमाज अदा की लेकिन अपने लिए छह वक्त की नमाज फर्ज रखी, तहज्जुद जिसमें शामिल है। फिर यही नमाज अली मुर्तज़ा की नमाज देखो, अल्लाह अकबर, हज़रत सैयदना मौला अली मुश्किल कुशा करमल्लाहु वजहुल करीम की नमाज आप पढ़ें देखें, और इतना इश्क नमाज से कि एक तरफ इश्क रसूल है और एक तरफ इश्क नमाज। इश्क रसूल में आप जबान नहीं खोल रहे हैं, लेकिन इश्क नमाज में आंसू आपके आंखों से रवा हो जाते हैं। वो आंसू के कतरे जब रवा हुए तो गैबदा नबी सैयदुल मुरसलीन खातमुल अंबिया वल मुरसलीन ने बेदारी फरमा कर कहा, अली किस चीज ने तुमको रुलाया? कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नमाज असर सूरज डूब रहा है, कजा होने के करीब है। अल्लाह अकबर, जो रसूल की मोहब्बत में जबान ना खोले कैसे जगहों का करीम को, जो मेरे आका लोगों के दिलों को हाल दिलों के हाल को जानते हैं, कैसे बेदार करूं? लेकिन एक तरफ इश्क नमाज आंसू के कतरे जारी हुए तो सरकार ने क्या हुक्म दिया, ऐ सूरज तू वापिस आ जा, मेरे अली की नमाज का मसला है। दुनिया कहेगी मोहब्बत रसूल में अली की नमाज कजा हो गई, नहीं, डूबे सूरज को वापिस मेरे आ

आका ने किया, कहा अली मुर्तज़ा अपनी नमाज असर को कज़ा नहीं बल्कि अदा की सूरत में अदा फरमाएं। नमाज हसन मुश्तबा को आप देखें, अल्लाहु अकबर, आपकी नमाज़ें नहीं कज़ा है। नमाज इमाम अली मकाम सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की नमाज को देखें, अल्लाहु अकबर। यहाँ आदमी अगर गर्मी के दिनों में रोज़ा रखे, 17-18 घंटे के रोज़ा हो जाएं, तो शाम को हालत ख़राब हो जाती है। लेकिन इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला को देखो, करबला की सरजमीन पर खाना भी नहीं है, पानी भी नहीं है। खाना पानी सब मौजूद है, लेकिन वो सब्र के इम्तिहान गाह में है, सब्र के क्लास में बैठे हुए हैं। इसलिए आपको दुनिया का साबरे अव्वल भी होना था, और ऐसी नमाज, अल्लाहु अकबर, कि 72 जख्म खाने के बाद भी सजदे को नहीं छोड़ा, किस कदर सजदे से प्यार रहा मेरे हुसैन को। या अल्लाह, इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम के सदक़े में सारे इंसानों को अगर सजदे से प्यार हो जाए, तो बेशक सजदे शब्बीरी के सदक़े में अल्लाह हर मोमिन की दुनियावी, दीनी, ज़ाहरी, बातनी परेशानियों को दूर फरमा देगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। इमाम अली मकाम की नमाज, और इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रफ़का की नमाज आप उठा के देखो। हज़रत अली अकबर, अली असगर, हज़रत इमाम कासिम, हज़रत अब्बास लंबरदार, हज़रत उस्मान इब्ने अली, इनकी नमाजों को आप उठा के देखिए कि किसी की नमाज नहीं कज़ा है, और न किसी का तिलावत कुरान कज़ा है, न जिक्र अज़कार कज़ा है। ये तो ये हैं आपके साथ आपकी बहन हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, शहरबानो, हज़रत आला बिन तिमुर्रा, हज़रत सुकैना, इनकी भी नमाज़ें नहीं कज़ा है, अल्लाहु अकबर। हज़रत ज़ैनब की ज़िंदगी उठा के देखें, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को उठा के देखें, ऐसी नमाज अदा की है। तो मोमिनों, आप नमाज के पाबंद हो जाओ तो इंशाअल्लाह सदक़े अहले बैत मिलेगा, सदक़े अंबिया मिलेगा, सदक़े अस्हाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिलेगा, अल्लाहु अकबर। इन नमाजों को आप देखें तो भला, और अहले बैत अतहार की तारीफ़ व तौसीफ़ क़ुरान ने बयान फरमाई है। हम और आप क्या होते हैं, और उनकी पाकी का जिक्र कुरान बयान फरमा रहा है। किस जबां से हो बयां मद खाने अहले बैत, मद गोए मुस्तफ़ा है मद खाने अहले बैत। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह तबारक तआला हमें और आपको सच्ची नमाज की पाबंदी की तौफीक अता फरमा दे, और अहले बैत से सच्ची मोहब्बत अता फरमा दे। हम सब के आका मौला सल्लम ने क्या फरमाया, इस सुन्नत को लोग क्यों नहीं बयान फरमाते हैं। अफसोस होता है जो तमाम सुन्नतों को बयान करते हैं, लेकिन ये सुन्नत नहीं बयान करते कि हुजूर ने फरमाया, हुजूर की सुन्नत है, हुजूर ने फरमाया ये कि ऐ लोगो, मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज़ भारी छोड़ के जा रहा हूँ, एक किताब है और एक अहले बैत है। फिर सरकार की वह हदीस को क्यों नहीं बयान फरमाया जाता, इसे बार बार बयान करने की ज़रूरत है। सरकार ने फरमाया, अपने बच्चों को तीन अदब पहले सिखाओ, एक है मोहब्बत रसूल,
दूसरा मोहब्बत है।

0: लबैत और तीसरा मोहब्बत तिलावत कुरान। अगर हम इन तीन सबक को अपने बच्चों को सिखाएं, लेकिन सिखाने से पहले हम खुद सीखें और उस पर अमल करें कि हुजूर से बेपनाह मोहब्बत करनी है और हुजूर के अहले बैत से बेपनाह मोहब्बत करनी, अपनी आलो औलाद से ज़्यादा हुजूर के आल से मोहब्बत करनी है और हुजूर के दीवे कुरान, हुजूर के लाइफ कुरान से मोहब्बत करनी है, तो फिर बंदे मोमिन कभी गुमराह नहीं हो सकता, फिर वो बंदे मोमिन कभी नमाज नहीं छोड़ सकता। इसकी हिकमत अगर आप देखें तो बड़ी प्यारी हिकमत कि आप रसूलुल्लाह से मोहब्बत करें, अहले बैत से मोहब्बत करें, कुरान से मोहब्बत करें, और ये तीनों चीज़ें नमाज के अंदर मौजूद हैं। अगर कुरान से शुरू कर लें, अगर कुरान की तिलावत ना करें तो नमाज नहीं होगी। और नमाज के अंदर अगर अपने रसूल की मोहब्बत का इजहार अत्तहियात के ज़रिए, अत्तहियातुलिल्लाह वस्सलावातु तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी से इजहार ना करें तो नमाज नहीं है। और इसी नमाज में दरूद इब्राहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो कुरान की तिलावत के बगैर नमाज नहीं, मोहब्बत रसूल के बगैर नमाज नहीं, मोहब्बत अहले बैत के बगैर नमाज मुकम्मल नहीं हो सकती है। तो अगर नमाज भी पढ़नी है तो हुजूर की सुन्नत को आम किया जाए कि हुजूर ने जो फरमाया अपने बच्चों को तीन अदब सिखाओ, पहला अदब हुजूर से मोहब्बत, फिर अहले बैत से मोहब्बत, फिर कुरान से मोहब्बत। और कुरान वो चीज़ है, कुरान खुद फरमाता है तिबयानुल लिकुल शय, कुरान के अंदर हर चीज़ मौजूद है। तो जब मोहब्बत रसूल में कुरान पढ़ोगे, मोहब्बत अहले बैत में करबला में जो कुरान पढ़ा गया उनके नज़रिए को और उनके फ़िक्र को सामने रखकर कुरान पढ़ोगे, तो फिर इंशाअल्लाह ताला ये कुरान गुमराही से तुम्हें बचाएगा। और फिर जब नमाज पढ़ोगे तो कुरान का हुक्म है इन्नस्सलात तन्हा अनिल फाहशाल मुनकर। अल्लाह तबारक ताला हमें और आपको सच्ची मोहब्बत रसूलुल्लाह से, सच्ची मोहब्बत रसूल की आल से, सच्ची मोहब्बत कुरान से और सच्ची मोहब्बत असहाब रसूल से, सच्ची मोहब्बत औलिया कामलीन से अता फरमाए। अल्लाह तबारक ताला इस मुल्क में अमन और सुकून, आलम इस्लाम में रहमतें बरकतें अता फरमाए। तमाम दुनिया से इलाहल आलमीन झगड़े फसाद को अल्लाह तो ख़त्म करके हर इंसान को इंसानियत के साथ, हर मोमिन को मोमिन के साथ मोहब्बत से, उख़ुव्वत से जीने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।
1: मौज़ सामीन, अभी आप समात फरमा रहे थे ख़तीब इमाम हज़रत मखदूम सैयद अशरफ मस्जिद हाईलैंड्स के मोहतरम मौलाना जुनैद अहमद ख़ान अशरफी साहब की ज़ुबानी। एक बहुत ही प्यारा बयान, उम्मीद करते हैं कि इस बयान से आपकी दीनी मालूमात में ज़रूर इजाफ़ा हुआ होगा। आपको बताते चलें कि आज इस्लामी साल के दूसरे महीने माह सफ़र की 7 तारीख है। आइए समात फरमाइए एक ऐलान। सनीचर 25 जुलाई, जी हाँ सनीचर 25 जुलाई सुबह 10 बजे शाने रसूल मस्जिद लागी लॉज पोर्ट लुइस में आलिमा सैयदा उनाजा फातिमा की सरपरस्ती में 11वीं शरीफ के खास प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है। तमाम खवातीन को शिरकत की दावत है। और इसी के साथ समात फरमाइए एक पैगाम, जी हाँ क्यूपिप से चाची इस सलमा अम्बरहू मरहूम रेज़ा अम्बरहू के लिए और चाची के शोहर अबील, बेटा आदिल, बोरू फैमिली और तमाम मुसलमानों की तरफ से मरहूम रेज़ा बोरू जिनका हाल ही में इंतकाल हुआ है उनके लिए दुआए मगफ़िरत की गुजारिश कर रहे हैं और इस कलाम की फरमाइश भी की है। आइए समात फरमाइए।

मौजूद सामीन, आई एस ए के साथ बढ़ते हैं आपके पैगामात की तरफ। फिनिक्स से, जी हाँ, फिनिक्स से

नाजिया और तमाम सुनने वालों के लिए सलाम पेश कर रही हैं और शौहर इकबाल सादुल के लिए दुआगो हैं कि अल्लाह पाक उनको सेहत के साथ लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। इसके अलावा अम्मी ताहिरून और तमाम बीमारों के लिए भी दुआ शिफा की गुजारिश कर रही हैं नाजिया। और नासिर और नाजिमा महबूब ने नुतखदाम से हमसे एक कलाम की फरमाइश की है। इसके अलावा उम्रे की मुबारकबाद पेश कर रही हैं भाई फैजाल, भाभी जहीरा, भतीजे यासीन और दुआगो हैं कि अल्लाह पाक इन लोगों की तमाम इबादात को कबूल फरमाए। और दुआ भेजने वाली हैं वाकवा से शहनाज। इसके अलावा जी हाँ, एक और पैगाम मौसूल हुआ है कातुबों से। यास्मीन दुआए मगफिरत की गुजारिश कर रही हैं। जी हाँ, दुआए मगफिरत की गुजारिश कर रही हैं भाभी रहमत बानो के लिए, उनके बच्चों अनस, उवैस, हुदा, नाजिया, सुमैया, शमामा, रफ़ी, उस्वा और बेबी मुनीरा, सुरैया, हाजरा और निज़ार के लिए। और वो हमारा प्रोग्राम सुनना भी बहुत पसंद करती हैं, जिसके लिए हम इनके बेहद शुक्रगुजार हैं। और इसके अलावा शीरीन रामजन, जी हाँ शीरीन रामजन, तमाम दोस्तों और तमाम मरीज़ों के लिए दुआए शिफा की गुजारिश कर रही हैं। फरानाज जुम्मन क्यूपिप से कलाम की फरमाइश कर रही हैं अपने जीजा जी अली गुलाब खान के लिए, जो इस वक्त हॉस्पिटल में हैं, और उनके लिए दुआगो हैं कि अल्लाह पाक उन्हें जल्द अज़ जल्द सेहतियाबी अता फरमाए। और न्यू खोफ की फातिमा भी हमें सलाम भेज रही हैं। ये थे चंद पैगामात। और इसके अलावा मुस्तफ़ा बुटू, अपनी वालदा जिनका सफ़र में ही इंतकाल हुआ था, जी हाँ मरहूमा सफूरा बुटू के लिए, और उनके चाचा अबू बुटू, चाचा मरहूम अबू बुटू जिनका जुलाई में इंतकाल हुआ था, उनके लिए इसाले सवाब की गुजारिश कर रहे हैं। हाफिज़ की भी अपने मरहूम वालदेन के लिए इसाले सवाब की गुजारिश कर रही हैं। और बुआशिकी से फातिमा कुतबाली, अपने मरहूम शोहर वाहिद कुतबाली, मरहूम बेटे एहसान कुतबाली, मरहूमा बहू नाजियाना कुतबाली, इसके अलावा नाजगुल पीर बख्स, अपने वालिद वालदा सास और ससुर के लिए दुआएं भेज रही हैं और इस कलाम की फरमाइश भी कर रही हैं। आइए समाअत फरमाइए।

मौजूद सामीन, इसी के साथ थोड़ी देर में ये मजलिस इख्तिताम पज़ीर हो जाएगी। आप तमाम सामीन ने हमारा साथ दिया, हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं। अल्लाह ने चाहा तो फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में सैयदा सुबाई को भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।

0: रेडियो मॉरिशस
1: 800 किलो हर्ट्ज पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।
2: मौजिला गुजरात नो रंग रंगारंग एमबीसी रेडियो पर गुजराती गीतों नो प्रोग्राम रंगारंग रंगारंग।

您所收听的是毛里求斯广播电台819频道。

听众朋友，今天的音乐节目就到这里，现在跟您告别，下次节目再会。

आपकी पसंद। चलिए श्रोताओं, आपकी पसंद कार्यक्रम रेडियो मॉरिशस पे मीडियम वेव 19 किलोहर्ट्ज पे हमारा प्रसारण हो रहा है। हमारा प्यार भरा नमस्कार आप सभी सुनने वालों को, हमारा अदाबा आप सभी सुनने वालों को। इस समय से लेकर शाम के 4 बजे तक हम आपका साथ देने वाले हैं। तो चलिए, आपके व्हाट्सएप मैसेजेस, आपके फ़ोन कॉल्स के लिए हम कहेंगे बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे और कार्यक्रम को जारी रखते हुए ये बहुत ही खूबसूरत सा नजराना जो है मोहम्मद अजीज़ और लता मंगेशकर की मीठी आवाज़ों में ये प्यारा सा गीत जाएगा। हमारे साथ गीता जी है, पोफिया की रहने वाली, उनकी बहन है मीला न्यूकोव की रहने वाली, साथ में आरव जो है, जानवी है, तनिश है, आदित्य है और उनके पति है रोहित जी। तो चलिए गीता जी की फरमाइश पे ये बहुत ही खूबसूरत सा गीत हम शामिल कर रहे हैं इस कार्यक्रम में। और ये प्यारा सा गीत आप सुन सकेंगे, फिल्म का नाम है प्यार की है, प्यार किया है प्यार करेंगे। तो चलिए, इस फिल्म से लिया गया ये बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत गीत आप सभी सुनने वालों के लिए।

चलिए श्रोताओ, अगला गीत इस कार्यक्रम में हम शामिल कर रहे हैं। हमारे साथ जो है केश जी है, खरगोन की रहने वाली, उनकी दो बेटियां नेहा नितिशा, उनके दामाद है एल्विन और उनके पति है आनंद जी। इन सभी लोगों के नाम जो है ये प्यारा सा गीत केश जी के लिए खरगोन की।

चलिए श्रोताओं, आपकी पसंद कार्यक्रम रेडियो मॉरिशस पे हम चला रहे हैं और अगला गीत रेविनेज के लिए, जो कि गुडलैंड्स की रहने वाली है, ये गीत उनके पति अनिल जी के लिए और समस्त पोहन परिवार के लिए। राधा जी है बिचवेज सैंपियर की रहने वाली, ये गीत उनके नाम, माँ गायत्री जी है नुवेल फ्रांस की रहने वाली, उनके बेटे है अजय, उनके सभी परिवारों के लिए। तो चलिए गीत की ओर हम बढ़ेंगे।

चलिए आपकी पसंद कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ काफी लोग जुड़े हुए हैं और ये अगला गीत जो है जाने वाला है इन सभी श्रोताओं के लिए। हमारे साथ इस समय उमा जी हैं और आप रोजबेल की रहने वाली हैं। ये जाएगा आपकी बेटी रीता जी के नाम, उनके जन्मदिन पर ढेर सारी बधाइयां हैं, शुभकामनाएं समस्त परिवारों की तरफ से। विपिन है साथ में, है निधि आदित्य और साथ में है सभी परिवारों की तरफ से। और बहुत ही खूबसूरत सा गीत जो है उनके नाम हम करने वाले हैं। तो बहुत ही प्यारा सा गीत इन रीता जी के नाम, उनके जन्मदिन पर ढेर सारी शुभकामनाएं, उनकी लंबी उम्र की कामना करते हैं। वो जहाँ भी रहे खुश रहे और अपनों के साथ खुशियाँ बांटे। तो बहुत ही खूबसूरत सा गीत उनके नाम, उनकी फरमाइश पे हम कर रहे हैं। उमा जी की फरमाइश पे ये प्यारा सा गीत जो है रीता जी के नाम करेंगे और MBC की पूरी टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं उनके नाम हम कर रहे हैं। तो चलिए बहुत ही खूबसूरत सा गीत उनके नाम हम करेंगे।

चलिए बहुत ही खूबसूरत सा गीत उमा जी की पसंद पे उनकी बेटी रीता जी के नाम, विपिन, वृंदा, निधि, आदित्य इन सभी लोगों की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। श्रोताओं, कुछ ही घड़ी में दोपहर के 3 बजने वाले हैं और आप समाचार सुनेंगे। समाचारों के बाद हम वापस आएंगे आपकी पसंद कार्यक्रम को लेकर।

0: देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है सुमैरा अकबर अली। आपको नमस्कार और आदाब।
1: नमस्कार आदाब। मॉरीशस के कृषि क्षेत्र में विदेशी कामगारों की भर्ती के लिए कॉन्ट्रैक्टरों को ठेका देने से पहले सभी दस्तावेजों की प्रामाणिकता परखने के लिए एक तकनीकी कमेटी कायम की जाएगी। सिर्फ पंजीकृत संगठन, फेडरेशन और सहकारिता तंजीमें भर्ती करने के लिए योग्य होंगी। आज राष्ट्रीय सभा में श्रम एवं औद्योगिक विकास मंत्री रिजाउद्दीन ने ये बात कही। उन्होंने विपक्ष नेता के प्राइवेट नोटिस क्वेश्चन का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अभी तक उनके मंत्रालय को विदेशी कामगारों की भर्ती के लिए कोई मांग नहीं मिली है। गैर कानूनी तस्करी, अवैध मछली मार और समुद्री प्रदूषण, समुद्र के खतरे सरहदों के पार जा रहे हैं। इन सब का सामना करने के लिए एक ही हल है। इसीलिए आज से आते 24 जुलाई तक हिंद महासागर आयोग ने यूरोपीय संघ के सहयोग से ईयू मैरिटाइम सिक्योरिटी वीक का आयोजन किया। पोर्टली में इलाके के राष्ट्र प्रतिनिधि और अंतर्राष्ट्रीय संगठन समुद्री सुरक्षा में सहयोग को मजबूत करने के लिए एकत्र हुए हैं। फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन और सऊदी अरब के ओवरसाइट एंड एंटी करप्शन अथॉरिटी नाजाहा के दरमियान आज रेजवी में एक समझौता तय हुआ। मकसद दोनों संस्थाओं के बीच सहयोग को और मजबूत करना है ताकि करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग और दूसरे वित्तीय जुर्मों के खिलाफ संघर्ष किया जा सके। इस प्रोटोकॉल समझौते के तहत जानकारियों और अनुसंधान कार्यों का आदान प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा तहकीकात के सेक्टर में ट्रेनिंग, सेमिनार और सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। विदेश में यूरोपीय संघ ने चीन के सबसे बड़े ऑनलाइन व्यापार प्लेटफॉर्म अली एक्सप्रेस को $629 मिलियन का जुर्माना दिया है, क्योंकि ईयू के अनुसार अली एक्सप्रेस ने गैरकानूनी, असुरक्षित और काउंटरफीट यानी जाली पैदावारों की बिक्री पर रोक नहीं लगाई है। फुटबॉल वर्ल्ड कप के फाइनल्स के आखिर में अर्जेंटीना के खिलाड़ियों ने स्पेन के खिलाड़ियों के प्रति जो बर्ताव किया उसके सिलसिले में फीफा की अनुशासन समिति अर्जेंटीना की टीम से जांच करेगी। अगर किसी भी तरह किसी खिलाड़ी या कोच को गुनहगार पाया गया तो उसे सस्पेंड किया जाएगा और अर्जेंटीना फुटबॉल एसोसिएशन को जुर्माना भी भरना पड़ेगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए। नमस्कार और आदाब।
2: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: आपकी पसंद, चलिए श्रोताओ आपकी पसंद कार्यक्रम को हम जारी रख रहे हैं। सपहर के 3:03 हो चुके हैं, तो चलिए समाचारों से पहले एक बहुत ही प्यारा सा गीत फिल्म धर्म करम से लिया गया, मुकेश का गाया हुआ गीत एक बार फिर से इसे हम चला रहे हैं। और ये गीत जो है फरमाइश जो है सभी बंधु परिवार के लिए जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं त्रियोले के रहने वाले, तो चलिए उन सभी लोगों के नाम जो है ये प्यारा सा गीत हम चला रहे हैं।

चलिए अगले गाने की ओर हम बढ़ेंगे। श्रोताओं, हमारे साथ काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं। फिल्म सदमा का ये बहुत ही खूबसूरत सा गीत जाने वाला है हमारे साथ, जो है इस समय कमला जी है मोटाबा की रहने वाली, सभी दीनू परिवार के लिए, रामधनी परिवार के लिए, साथ में खास उनकी आरोही के लिए सीता जी हैं, साथ में है रियांश, तो इन सभी लोगों के नाम ये बढ़िया सा गीत सुरेश वाडकर की आवाज़ में।

चलिए श्रुत्या, वो आपकी पसंद कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे और अगला नज़राना जो है बहुत ही खूबसूरत सा गीत जो है इस कार्यक्रम में हम शामिल करने वाले हैं, और ये बहुत ही खूबसूरत सा नज़राना जो है हम शामिल कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ये अगला गीत जो है हम चलाएंगे आपके लिए, आप है दादी आलिमा और आप डिफया की रहने वाली है, तो ये गीत जो है जाएगा आलिया के नाम। उनके जन्मदिन पर ढेर सारी शुभकामनाएं सभी परिवारों के लिए। मनोहर परिवार है, साथ में है, समस्त दोस्तों और सगे संबंधियों की तरफ से भी ढेर सारी शुभकामनाएं। तो ये बहुत ही खूबसूरत सा गीत, फिल्म का नाम है दो कलियां।

जो अगला गीत जो है हम चलाने वाले हैं, फिल्म आ से लिया गया, मुकेश की आवाज़ में ये गीत जाने वाला है। हमारे साथ जो है इस समय कुलेन जी है, नोएल फ्रांस के रहने वाले, तो ये गीत उनके सभी परिवारों के लिए, उनके सभी दोस्तों के लिए।

अगला गीत जाएगा इन सभी श्रोताओं के लिए। इस समय हमारे साथ जो है धनेश्वर जी है, दवेल के रहने वाले। ये गीत जाएगा उनकी पत्नी अंजनी के नाम और फिल्म का नाम है सावन को आने दो। यशदास के स्वर में ये प्यारा सा गीत हम सुनेंगे।

चलिए श्रोताओं, बहुत ही प्यारा सा गीत इस समय आप सुन सकेंगे। फिल्म का नाम है हरियाली और रास्ता, और ये प्यारा सा गीत जो है जाने वाला है आप सभी सुनने वालों के लिए। ये गीत जो है वीना शंभू जी की फरमाइश पे हम चला रहे हैं, तो चलिए ये गीत जो है उनके सभी परिवारों के लिए।

आपकी पसंद का कार्यक्रम जारी है रेडियो मॉरिशस पे, श्रोता आप हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत ही प्यार के साथ निभा रहे हैं। तो चलिए अगले गाने की ओर हम बढ़ेंगे और अगला गीत जो है हम चलाने वाले हैं, हमारे साथ जो है बहुत ही खूबसूरत सा गीत हम चलाने वाले हैं, विद्या जी हैं न्यूनपाव की रहने वाली, ये गीत जो है जाने वाला है उनकी बहन सती के लिए, साथ में है सुरेखा, वेदना, प्रीति, विमला, बबीता, चाची, कुमारी, तो इन सभी लोगों के नाम जो है, ये बहुत ही खूबसूरत सा गीत हम शामिल कर रहे हैं इस कार्यक्रम में। तो एक से बढ़कर एक गीत आपके लिए श्रोताओ, आपकी पसंद का कार्यक्रम, इस कार्यक्रम को हम जारी रखेंगे शाम के 4 बजे तक। तो चलिए गीत की ओर हम बढ़ेंगे और बहुत ही खूबसूरत सा नज़ाना जो है इस कार्यक्रम में हम शामिल कर रहे हैं।

अगला गीत हमारे साथ बिसेसर जी है गांवे के रहने वाले सीनियर सिटीजन के नाम जो है ये अगला गीत फिल्म का नाम है श्री 420।

चलिए आपकी पसंद कार्यक्रम की अगली भेंट है मैं आग गले लग जा फिल्म से लिया गया गीत अनसुया गम की रावण जी के लिए त्रियोले की रहने वाली है आप ये गीत जो है इलियाना के लिए नितिश गम के रावण है साथ में है प्रेमिला सी गुलाम कौंडे मास्के की रहने वाली हैं आप साथ में है रागिनी और आप जो है फ्लाक की रहने वाली है साथ में है साधना तो इन सभी लोगों के नाम ये प्यारा सा गीत आप सुन पाएंगे।

आपकी पसंद कार्यक्रम की अगली भेंट में विश्वानी डुमन जय वाकवा से, और ये गीत जाएगा उनकी सभी बहनों के लिए, इंदिरा शारदा, उनकी सहेलियां है नीला प्रतिभा, साथ में है शोभा, गीता गजाधर भी है। तो चलिए गीत की ओर हम बढ़ेंगे।

चलिए आपकी पसंद कार्यक्रम की अगली भेंट में सुदेवी जी है वाकवा से है, तो ये अगला गीत त्रियोले के दीदी ललिता जी के लिए, कुशल परिवार है, आत्माराम भैया है, दीदी सुनीता है, शोभा देवीना बिंदु संगीता जीवराज मालेंगा के जयश्री अंबिका समस्त राम रतन परिवार राम गुलाम परिवार कुआगो परिवार रागुबा परिवार, बहुत ही प्यारा सा गीत है, फिल्म का नाम है बॉयफ्रेंड। और अगले गाने की ओर जो है हम नाम जुड़ेंगे, हमारे साथ जो है काफ़ी लोग, माया जी है मोटा ब्लॉन्च की रहने वाली, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, तो ये अगला गीत उनके नाम भी हम कर रहे हैं।

आपकी पसंद कार्यक्रम की अंतिम भेंट में ये प्यारा सा गीत जाने वाला है। सरिता जो है गुडलैंड्स की रहने वाली, ये गीत जाएगा उनके समस्त परिवारों के लिए। साथ में ये गीत हम चलाएंगे हमारे साथ रेहाना जी है फिनिक्स की रहने वाली, तो ये गीत उनके सभी परिवारों के लिए। सरिता जी है ये गीत उनके सभी परिवारों के लिए। फिर साथ में हमारे साथ जो है वैसे काफ़ी लोग जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो इन सभी लोगों के नाम जो है हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। साथ में ये गीत अनिता जी के लिए फिकॉन्फ्ला की रहने वाली है। साथ में है सभी गरबरन परिवार के लिए, भागीरथी परिवार के लिए, मिस्टर और मिसेस सिंह जो कि है लंदन के रहने वाले ये परिवार के लिए भी। और ये गीत जो है दिलीप जी है कुंगुमा के रहने वाले, उनके समस्त परिवारों के लिए। और साथ में है इंदर लच्छन जी, वैसे ये गीत जो है समस्त लच्छन परिवार के लिए हम चलाएंगे। और ये गीत राजन लक्ष्मण जी के लिए जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाफलोगा से, तो इन सभी लोगों के नाम जो है ये बहुत ही बढ़िया सा गीत, अंतिम गीत जो है हम चला रहे हैं इस कार्यक्रम में। तो चलिए श्रोताओं, आप लोगों का साथ रहा, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ ही घड़ी में शाम के 4 बजने वाले हैं और तमिल भाषा में आप कार्यक्रम सुन सकेंगे कलाईवाणी के साथ। हमारी ओर से आप सभी को नमस्कार।

0: On the hour, every hour, Radio Marches.
1: भूले बिसरे गीत रेडियो मॉरिशस पर

शाम के 5 बज चुके हैं। नमस्कार श्रोताओं, MBC रेडियो पर आप सबका स्वागत है। आप लोग जुड़े हुए हैं रेडियो मॉरिशस के साथ। जी हाँ, आज मंगलवार 21 जुलाई 2026 और आप सुन रहे हैं भूले बिसरे गीत प्रोग्राम। धन्यवाद साथ देने के लिए। और आप इस प्रोग्राम को बेहद ही पसंद करते हैं, हमें पता है, इसीलिए कुछ चुने हुए गीत 40s और 50s के लोकप्रिय गाने, पॉपुलर गाने आप लोगों के लिए हम चलाएंगे। और साथ में बस हम यही उम्मीद करते हैं कि ये शाम आप खूब एंजॉय करेंगे। और यहाँ आज का पहला गाना 1956 में रिलीज़ हुई फिल्म भाई भाई फिल्म से लिया गया, गीता दत्त की आवाज़ में।

5:10 हुए हैं श्रोताओं जी, हम बढ़ते हैं आगे और ऐसे ऐसे गाने, भूले बिसरे गीत प्रोग्राम, ऐसे गाने जो हम कभी भूल भी नहीं सकते हैं। एक दो दिन के लिए हम भूल जाते हैं लेकिन धुन सुनते ही बस यादें फिर से वापस आ जाती है। एक ऐसे कलाकार के बारे में हम बात करेंगे और वो है शमशाद बेगम। जी हाँ, वो भारत की सबसे मशहूर और प्रभावशाली प्लेबैक सिंगर में से एक थी। उनका जन्म 14 अप्रैल 1919 को लाहौर में हुआ था, जो उस समय ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा था और आज पाकिस्तान में है। बचपन से ही उन्हें गाने का बहुत शौक था। उनकी आवाज़ बहुत बुलंद, साफ और अनोखी थी। इसी वजह से वो जल्दी ही रेडियो और फिल्मों की दुनिया में पहचान बना गई। 1940 में यानी 1940 और 1950 के दशक में शमशाद बेगम हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की सबसे सफल गायिकाओं में शामिल थी। उन्होंने कई लोगों से काम किया, वो है नौशाद जी, ओ पी नायर, रामचंद्र जैसे मशहूर म्यूज़िक डायरेक्टर के साथ काम किया। उनके गाने हर तरह के होते थे, रोमांटिक, मस्ती भरे, लोक संगीत से प्रेरित और भक्ति गीत। उनकी आवाज़ जो है ना, वो बहुत ही अलग और ताजगी और ऊर्जा थी, जिसमें लाखों लोगों का दिल जीत लिया। और यहाँ पर उनकी आवाज़ हम सुनेंगे, साथ में है रफ़ी साहब।

5:21 हुए हैं और यहाँ पर जारी रखते हैं ये खूबसूरत सिलसिला फिल्म संबंध से लिया गया अगला गाना सुनते हैं हेमंत कुमार साहब और महेंद्र कपूर साहब की आवाज़ों में

और ये जो मौसम है बहुत ही हसीन है, ठंड का मौसम है और आप लोग इस समय शायद गाड़ी में हैं और ऐसे ऐसे गाने सुन रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं, काम से वापस जा रहे हैं और कुछ लोग जो है ना किचन में है अभी खाना बना रहे हैं, तो खाना बनाते बनाते थोड़ा सा प्यार और अपने आप में गुनगुनाओ और ऐसे गाने सुनने को कम मिलता है।

जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे थे आज का पंछी फिल्म से लिया गया, वो है सुबीर सैन साहब की आवाज़ में। और ऐसे गाने जब सुनते हैं ना, बचपन की याद और उसे जुड़ी हुई कुछ कहानियाँ हमें ज़रूर याद आती हैं। और यहाँ पर हमारे सभी जो लिसनर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपके मैसेजेस और फ़ोन कॉल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हमारा जो प्रोग्राम है, एंजॉय कीजिए। 5:42 हुए हैं और अगला गाना सुनते हैं 1946 में, जी हाँ, शमा फिल्म से लिया गया, सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में।

5:54 हुए हैं दोस्तों, और आज के इस आखिरी गीत के साथ ही आज का प्रोग्राम यही समाप्त हो चला। आबरू फिल्म से लिया गया रफ़ी साहब की आवाज़ में, और इसी गीत के साथ जी हाँ यहाँ पर हम विदा लेंगे। उषा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, आदाब, शुभ रात्रि।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: नमस्कार, आदाब, समाचारों में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आज की भरी खबरें। पारास्टेटल संस्थाओं और सार्वजनिक उद्योगों की वित्तीय स्थिति को लेकर सरकार चेतावनी दे रही है। प्रधान एवं वित्त मंत्री के मुताबिक इन इदारों के बढ़ते कर्जों से सरकार के वित्त के लिए बहुत खतरे पैदा हो रहे हैं और इस हालत को सुधारने के लिए जल्द से जल्द सुधार लाने की जरूरत। पीएमक्यूटी सत्र के दौरान सरकारी नेता ने कर्ज के सभी आंकड़े आम किए। बजट की बाधाओं के बावजूद सरकार बड़ी मूलढांचा परियोजनाएं चलाने पर बरकरार। आर्थिक वृद्धि को दांव पर लगाए बगैर सार्वजनिक निवेश की प्राथमिकताओं पर दोबारा गौर करने के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी की स्थापना की गई है। प्रधानमंत्री डॉ. नवीन राम गुलाम का मानना है कि M4 परियोजना एक राष्ट्रीय प्राथमिकता है। मॉरिशस के कृषि क्षेत्र में विदेशी कामगारों की भर्ती के लिए कॉन्ट्रैक्टर

0: को ठेका देने से पहले सभी दस्तावेजों की प्राथमिकता परखने के लिए एक तकनीकी कमेटी कायम। सिर्फ पंजीकृत संगठन योग्य हैं। आज राष्ट्रसभा में श्रम एवं औद्योगिक विकास मंत्री रेजा उतीम ने ये बात कही। एफसीसी और सऊदी अरब की ओवरसाइट एंड एंटी करप्शन अथॉरिटी के दरमियान आज समझौता पक्का। वित्तीय जुर्मों के खिलाफ संघर्ष करने में दोनों संस्थाएं एक दूसरे को सहयोग देंगी। और ग्रेट ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री एंडी बर्नाम ने आज ऐलान किया कि 1 अक्टूबर 2026 से सभी घरेलू बिजली बिल्स पर टैक्स की छूट होगी। नमस्कार और आदा। पैरास्टेटल संस्थाओं और सार्वजनिक उद्योगों की वित्तीय स्थिति को लेकर सरकार चेतावनी दे रही है। वित्त मंत्री के मुताबिक इन इदारों के बढ़ते कर्जों से सरकार के वित्त के लिए बहुत खतरे पैदा हो रहे हैं और इस हालत को सुधारने के लिए जल्द से जल्द सुधार लाने की जरूरत है। जून 2026 के आखिर में 5 सार्वजनिक संस्थाओं का कुल कर्ज 18.6 बिलियन रुपये रहा। 20 सार्वजनिक उद्योगों के उधार 48.9 बिलियन रुपये रहे। प्रधानमंत्री डॉ. नवीन राम गुलाम ने पुष्टि की कि पिछली सरकार की हुकूमत के दौरान ये कर्ज बढ़ गए, जिन्होंने वादा किया था कि कोई भी सार्वजनिक फंड किसी कर्ज की भरपाई के लिए इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे, मिसाल के तौर पर पुराने BII ग्रुप के शिकार लोगों के लिए। इस हालत के मद्देनजर कई सरकारी संगठन पुनर्गठन योजनाओं की तैयारी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सार्वजनिक क्षेत्र की कारगरता पर एक पायलट कमेटी कायम की जाएगी ताकि मंत्रालयों और सार्वजनिक संगठनों में फिजूल खर्चों का पता लगाया जा सके। सांसद रवीन जगौनाथ के सवाल के जवाब में प्रधानमंत्री डॉ. नवीन राम गुलाम को सुनते हैं। विवरण करुणा लालू का है।
1: The House will recall that the state of the economy document prepared by the Ministry of Finance.
2: प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीनराम गुलाम ने कहा, सदन को स्मरण होगा कि वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए स्टेट ऑफ द इकोनॉमी दस्तावेज में कई अर्ध सरकारी निकायों तथा सरकारी कंपनियों की चिंताजनक वित्तीय स्थिति को उजागर किया गया था। इन संस्थाओं पर लगातार बढ़ता भारी ऋण तथा इनके कारण सरकार पर बढ़ती संभावित वित्तीय देनदारियां, खासकर उनके पेंशन फंडों में संचित उच्च बीमांकित घाटे के कारण देश की सार्वजनिक वित्त की स्थिरता के लिए गंभीर जोखिम उत्पन्न करती हैं। रिपोर्ट में ये भी उल्लेख किया गया कि कई वर्षों तक अपर्याप्त वित्तीय निगरानी और ऋण पर बढ़ती निर्भरता ने सरकारी वित्त पर भारी दबाव डाला। इसलिए बजटीय अनुशासन बहाल करने, सुशासन को मजबूत करने तथा इन संस्थाओं की वित्तीय क्षमता और लचीलापन बढ़ाने के लिए निर्णायक सुधारों की आवश्यकता है। वित्त मंत्रालय द्वारा संकलित जानकारी के अनुसार जून 2026 के अंत तक 5 अर्ध सरकारी संस्थाओं पर कुल 18.6 बिलियन रुपए का ऋण था। इनमें से 15.4 बिलियन रुपए कमर्शियल बैंकों से तथा 3.2 बिलियन रुपए अन्य वित्तीय संस्थानों से लिए गए थे। पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में अर्ध सरकारी संस्थाओं का ऋण दुगने से अधिक बढ़ गया। ये दिसंबर 2014 के अंत में 6.2 बिलियन रुपए से बढ़कर दिसंबर 2024 के अंत तक 15.9 बिलियन रुपए हो गया। केवल पैसे दिए जा रहे थे, कोई नियंत्रण नहीं था, कोई वित्तीय दायित्व नहीं था। इस वृद्धि का मुख्य कारण सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की वित्तीय आवश्यकताएं थी, जिसका ऋण 3.4 बिलियन रुपए से बढ़कर 10.3 बिलियन रुपए हो गया। इसी प्रकार एसटीसी का ऋण 1.1 बिलियन रुपए से बढ़कर 5.3 बिलियन रुपए तक पहुंच गया। अर्ध सरकारी संस्थाओं और सरकारी कंपनियों के ऋण में हुई ये महत्वपूर्ण वृद्धि पूर्ववर्ती सरकार में पूर्ण वित्तीय अनुशासन की कमी और सार्वजनिक क्षेत्र के ऋण को नियंत्रित करने में उसकी प्रणालीगत विफलता के परिणामों को दर्शाती है। ऋण के इस संचय ने सार्वजनिक वित्त पर दबाव बढ़ाया है, प्राथमिकता वाले निवेशों के लिए उपलब्ध बजटीय गुंजाइश को कम किया है और राज्यों को वित्तीय जोखिमों, खास रूप से संभावित देनदारियों के प्रति अधिक संवेदनशील बना दिया है। इस प्रकार प्रश्न के भाग एक के संबंध में वर्ष 2020 से सरकार को मुख्य रूप से सरकारी कंपनियों को उनके ऋण भुगतान दायित्वों को पूरा करने में सक्षम बनाने के लिए कुल 14.4 बिलियन रुपये की वित्तीय

0: ये सहायता प्रदान करनी पड़ी। यदि सुपर कैश बैंक गोल्ड स्कीम के ग्राहकों को भुगतान करने के लिए लगाए गए धन को ध्यान में रखा जाए तो एमएसएम के शासन के दौरान कुल 11.5 बिलियन रुपए की सार्वजनिक धनराशि लगाई गई। पूर्ववर्ती सरकार द्वारा पुराने बीएआई समूह को समाप्त करने के जानबूझकर लिए गए कठोर निर्णय के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री और उनके सुशासन मंत्री ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि बचाव योजना के लिए सार्वजनिक धन का एक भी रुपया इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। राजनीतिक प्रतिशोध से प्रेरित होकर लिए गए उनके फैसलों का सार्वजनिक ऋण पर सीधा प्रभाव पड़ा, यही सच्चाई है।
1: One single rupee from public funds would be injected into any bailout activity. Blinded by the political vendetta, their action led to a direct hit on the public sector debt.
2: बजटीय बाधाओं के बावजूद सरकार बड़ी मूलढांचा परियोजनाएं चलाने पर बरकरार हैं। आर्थिक वृद्धि को दाव पर लगाए बगैर सार्वजनिक निवेश की प्राथमिकताओं पर दोबारा गौर करने के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी की स्थापना की गई है। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामगुलाम का मानना है कि M4 परियोजना एक राष्ट्रीय प्राथमिकता है जिसका मकसद इलाकाई कनेक्टिविटी को बेहतर करना होगा और एक संतुलित सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना होगा। सरकारी नेता ने फे यानी इलाके के संदर्भ में पर्यावरणीय चिंताओं का भी उल्लेख किया। पहले प्रस्तावित मार्ग में बदलाव लाया गया ताकि उस इलाके के किसी भी पर्यावरणीय क्षेत्र को क्षति न हो। प्राइम मिनिस्टर्स क्वेश्चन टाइम के दौरान प्रधानमंत्री ने ये बात कही। मॉरिशस के कृषि क्षेत्र में विदेशी कामगारों की भर्ती के लिए कॉन्ट्रैक्टरों को ठेका देने से पहले सभी दस्तावेजों की प्रामाणिकता परखने के लिए एक तकनीकी कमेटी कायम की जाएगी। सिर्फ पंजीकृत संगठन फेडरेशन और सहकारिता तंजीमें भर्ती करने के लिए योग्य हैं। आज राष्ट्रसभा में श्रम मंत्री रिजाउटीम ने ये बात कही। उन्होंने विपक्ष नेता के प्राइवेट नोटिस क्वेश्चन का जवाब दिया। रिजाउटीम ने कहा कि अभी तक उनके मंत्रालय को विदेशी कामगारों की भर्ती के लिए कोई मांग नहीं मिली। ये जाने कि विदेशी कामगारों को मोशन कर्मचारियों की जैसी तनख्वाह दी जानी चाहिए। माधवी जागवनाथ, करुणा लालू।
3: Well, in regard to the hiring of migrant workers,
0: विपक्ष नेता के PNQ के जवाब में मंत्री रेजा उत्तम ने बताया कि मॉरिशस में कृषि सेक्टर के लिए विदेशी कामगारों की भर्ती से पहले ट्रेड यूनियन सहित सभी संबद्ध साझेदारों के साथ सलाह मशवरे किए गए थे।
4: गवर्नमेंट डिसाइडेड दैट ओनली रजिस्टर्ड फेडरेशन एसोसिएशन और कोऑपरेटिव सोसाइटी।
0: सरकार ने फैसला लिया कि केवल पंजीकृत संघ संगठन अथवा सहकारी संगठन जिनके सदस्य छोटे खेतीहर और पशुपालक हैं लेबर कॉन्ट्रैक्टर के लिए अप्लाई कर सकेंगे। कोई प्राइवेट कंपनी नहीं, कोई रिक्रूटमेंट एजेंसी नहीं या अन्य सेवा प्रदान करने वाली कंपनी को इस कानून के तहत लेबर कॉन्ट्रैक्टर के लिए योग्य नहीं माना जाएगा। मेरा मंत्रालय सुपुर्द किए गए दस्तावेजों की ऑथेंटिसिटी आदि की जांच करेगा लेबर कॉन्ट्रैक्टर के लाइसेंस दिए जाने से पहले। एक तकनीकी कमेटी लेबर कॉन्ट्रैक्टर की अर्जी पर अध्ययन करेगी जिसमें मेरे मंत्रालय, कृषि खाद्य उद्योग मंत्रालय और प्रधानमंत्री दफ्तर के प्रतिनिधि होंगे। मंत्री ने कहा कि नियमों में कई नियंत्रण तंत्र निर्धारित हैं। रजिस्ट्रेशन पश्चात निरीक्षण भी होगा। मेरे मंत्रालय और एम्प्लॉयमेंट डिवीजन के अफसरों द्वारा ये देखने के लिए कि क्या प्रवासी यानी कि माइग्रेंट श्रमिकों को केवल छोटे खेतीहरों और छोटे पशुपालकों के लिए भर्ती किया गया है और कि क्या भर्ती कॉन्ट्रैक्ट के अनुकूल काम किया जा रहा है। मंत्री ने कहा कि विदेशी श्रमिकों को मॉरिशन कामगारों की तरह ही वेतन दिया जाएगा और कि उनका मंत्रालय इस नियम संबंधी प्रशासनिक प्रक्रियाओं पर काम कर रहा है।
3: When the first batch of laborers is expected to reach the country and where will they be accommodated?
4: Madam Speaker, we have not received as at today any request for registration of labor contractor. But what is already

0: provided in the regulation is that the labour contractor will obviously need to make arrangement for the accommodation of all the migrant worker, and the appropriate lodging accommodation permit will have to be sought.
1: Can the Prime Minister inform the House whether there will be two different salary levels, that is, the migrant workers' salary based on remuneration orders and that of local workers as per collective agreement signed?
0: We made a specific provision, and that was one of the requests made by the trade unions, that we need to have equal pay for equal work.
2: मंत्री ने बताया कि मॉरिशस में विदेशी श्रमिकों की भर्ती एक प्रायोगिक परियोजना है जो देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकारी फैसले का एक परिणाम है।
3: आज शाम राष्ट्रसभा में मॉरिशस हाइड्रोग्राफिक सर्विसेज बिल को सुधार के बगैर पारित किया गया। मंत्री शकील मोहम्मद के समिंग अप के से पहले तीन सांसदों ने इस बिल पर अपनी अपनी राय पेश की। याद रहे, इस विधेयक का मकसद राष्ट्र की औपचारिक सेवा की स्थापना करना है। मॉरिशस हाइड्रोग्राफिक सेवाएं देश की सभी हाइड्रोग्राफिक जानकारियों को सुरक्षित रखेगी और मॉरिशस के समुद्री क्षेत्रों में अध्ययन चलाने की जिम्मेदार भी होगी। आज मंगलवार को 2:30 बजे के करीब बंदरगाह के इंधन पेट्रोली की में तेल रिसाव की नौबत पेश आई है। इंडियन ऑयल संगठन ने इसकी पुष्टि की। मॉरिशस पोर्ट्स अथॉरिटी की जानकारियों के मुताबिक करीब 200 लीटर तेल हैं। एमपीए ने फौरन इस घटना के चलते अपनी योजना यानी पोर्ट वी हार्बर ऑयल स्पिल रेस्पॉन्स प्लान लागू की है और सभी सेवाओं को हस्तक्षेप के लिए वहां बुलाया गया है। इनमें पर्यावरण पुलिस की टीम और मंत्रालय के अफसर भी शामिल रहे। पर्यावरण पुलिस ने एक जांच शुरू की है। फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन और सऊदी अरब के ओवरसाइट एंड एंटी करप्शन अथॉरिटी नजाहा के दरमियान आज गजवी में एक समझौता तय हुआ। मकसद दोनों संस्थाओं के बीच सहयोग को और मजबूत करना है ताकि करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग और दूसरे वित्तीय जुर्मों के खिलाफ संघर्ष किया जा सके। इस प्रोटोकॉल संधि के तहत जानकारियों और अनुसंधान कार्यों का आदान प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा तहकीकात के सेक्टर में ट्रेनिंग, सेमिनार और सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। अजमल मोइतब, यचना मिश्रा।
4: बेहतरीन जांच कर पाना और वित्तीय अपराधों के नए रूपों से अच्छे तरीके से निपटना, यही उद्देश्य है फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन और सऊदी अरब के एंटी करप्शन अथॉरिटी नाजाहा के बीच तय समझौते का। इस समझौते के तहत दोनों देशों के बीच जानकारियों और विशेषज्ञता का आदान प्रदान किया जाएगा। जांचकर्ताओं की क्षमताएं बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण भी इसमें शामिल
5: है।
4: भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष में हम मात्र मॉरिशस के संसाधनों पर निर्भर नहीं कर सकते हैं। इलाकाई और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जरूरी है। इस एमओयू के तहत जानकारियों का आदान प्रदान होगा। दोनों देशों की जांच के लिए ये संवाद का माध्यम बनेगा। जांच तक ही सीमित न रहकर दोनों संस्थान तेजी से विकसित हो रहे क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ाना चाहते हैं। इनमें डिजिटल संपत्तियां, साइबर सुरक्षा और वित्तीय जांच में एआई का उपयोग शामिल है। समझौतों को अमल में लाने के लिए आने वाले महीनों में एक संयुक्त कार्य योजना कायम की जाएगी।
3: करप्शन के खिलाफ संघर्ष में महारत बांटना एक जरूरी पहलू है। आज दोपहर बाद पोर्टवी के ट्रेजरी बिल्डिंग में सऊदी अरब की ओवरसाइट एंड एंटी करप्शन अथॉरिटी नाजाहा के डेलीगेशन ने प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम से इस सिलसिले में मुलाकात की है। गैर कानूनी तस्करी, अवैध मछलीमार और समुद्री प्रदूषण, समुन्द्र के खतरे सरहदों के पार बढ़ते जा रहे हैं। इन सब का सामना करना एक ही हल के जरिए इन सब का सामना किया जाना चाहिए। इसी सिलसिले में आज से आते 24 जुलाई तक हिंद महासागर आयोग ने यूरोपीय संघ के सहयोग से ईयू मैरिटाइम सिक्योरिटी वीक का आयोजन किया। पोर्टवी में इलाके के राष्ट्र प्रतिनिधि और अंतर्राष्ट्रीय संगठन समुद्री सुरक्षा में सहयोग मजबूत करने के लिए एकत्र हुए। हम आपको

0: बता रहे थे, बजटीय बाधाओं के बावजूद सरकार बड़ी मूल ढांचा परियोजनाएं चलाने पर बरकरार हैं। आर्थिक वृद्धि को दांव पर लगाए बगैर सार्वजनिक निवेश की प्राथमिकताओं पर दोबारा गौर करने के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी की स्थापना की गई है। प्रधानमंत्री का मानना है कि M4 परियोजना एक राष्ट्रीय प्राथमिकता है, जिसका मकसद इलाकाई कनेक्टिविटी को बेहतर करना है और एक संतुलित सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। सरकारी नेता ने फैनी इलाके के संदर्भ में पर्यावरणीय चिंताओं का भी उल्लेख किया। पहले प्रस्तावित मार्ग में बदलाव लाया गया ताकि उस इलाके के किसी भी पर्यावरणीय क्षेत्र को क्षति न पहुंचे। क्लोदिया जोफ्रा गादेवादू, यचना मिश्रा।
1: सरकार सार्वजनिक निवेश परियोजनाओं का पुनर्मूल्यांकन कर बजट घाटे को कम करने की कोशिश कर रही है। इसके लिए एक समिति प्रत्येक परियोजना की कई मापदंडों के आधार पर समीक्षा करेगी, जिनमें उसकी तैयारी की स्थिति, आर्थिक और सामाजिक लाभ तथा सार्वजनिक वित्त पर उसका प्रभाव शामिल होगा। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि उद्देश्य निवेश को रोकना नहीं, बल्कि उन परियोजनाओं को प्राथमिकता देना है जो दीर्घकालिक रूप से आर्थिक विकास को समर्थन दें। इन परियोजनाओं में 29.7 किलोमीटर लंबा M4 मोटरवे शामिल हैं, जो बेलिया को फोबाक से जोड़ेगा।
2: It will certainly contribute to rebalancing economic development, stimulating investment, creating employment during construction, supporting tourism and promoting commercial and residential development along the north eastern corridor of the island.
1: इस परियोजना की फिजिबिलिटी स्टडी पूरी हो चुकी है, जमीन उपलब्ध है, टेंडर तैयार हैं और भारत से रियायती फाइनेंसिंग भी प्राप्त हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पर्यावरण के संरक्षण के लिए फैने क्षेत्र को बचाने के लिए सड़क के मार्ग में बदलाव लाए गए हैं।
3: Benoît Premier ministre peut-il nous dire si le comité a vérifié que le projet d'autoroute M4 dispose d'une étude d'impact environnemental actuelle, mais surtout pour l'ensemble du projet, c'est-à-dire sur un tracé définitivement arrêté.
2: Following the approval of the detailed project report by the Indian authorities, I understand that the EIA report will be revised as necessary to incorporate comments of the ministry and any changes arising from the approved report. And therefore, it will be resubmitted to the environment according to the Environment Act.
1: प्रधानमंत्री दफ्तर के अंतर्गत एक नई प्रोजेक्ट मॉनिटोरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन यूनिट स्थापित की जाएगी। इसका उद्देश्य सख्त निगरानी, बेहतर प्रबंधन और आवश्यकता पड़ने पर विशेषज्ञों की सहायता से बड़ी मूल ढांचा परियोजनाओं को पूरा करना है। PMQT के दौरान प्रधानमंत्री ने तेज धार वाले हथियारों से होने वाली हिंसा से जुड़े सवाल का जवाब दिया। 1 जनवरी 2021 से 15 जुलाई 2026 के बीच ऐसे 731 मामले दर्ज किए गए, जिनमें 40 लोगों की मौत हुई और 697 लोग घायल हुए। सरकारी नेता ने रोड्रिग्स में चल रही विकास परियोजनाओं पर भी जानकारी दी। ये परियोजनाएं भारत की ओर से प्रदान की गई 19 मिलियन रुपए की वित्तीय सहायता से चलाई जा रही हैं।
0: अफगानिस्तान के पारून शहर में जोरदार सैलाब उतर आया है। कम से कम 20 लोग जान से गए हैं और 80 से ज्यादा लोग घायल हुए। मूल ढांचों की कमी और जलवायु परिवर्तन के असरात से अफगानिस्तान कुदरती आफतों के सामने कमजोर है। ग्रेट ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री एंडी बर्नाम ने आज ऐलान किया कि 1 अक्टूबर 2026 से सभी घरेलू बिजली बिल्स पर टैक्स की छूट होगी। इस कदम का मकसद लाखों लोगों को राहत पहुंचाना है और लोगों को बचत करने का मौका देकर उन्हें नई उम्मीद देना है। यूरोपीय संघ ने चीन के सबसे बड़े ऑनलाइन व्यापार प्लेटफॉर्म अली एक्सप्रेस को $629 मिलियन का जुर्माना दिया, क्योंकि EU के अनुसार अली एक्सप्रेस ने गैर कानूनी, असुरक्षित और काउंटरफीट यानी जाली पैदावारों की बिक्री पर रोक नहीं लगाई है। फुटबॉल वर्ल्ड कप के फाइनल्स के आखिर में अर्जेंटीना के खिलाड़ियों ने स्पेन के खिलाड़ियों के प्रति जो बर्ताव किया, उसके सिलसिले में फीफा की अनुशासन समिति अर्जेंटीना की टीम से जांच करेगी। अगर किसी भी तरह किसी खिलाड़ी या कोच को गुनहगार पाया गया तो उसे सस्पेंड किया जाएगा और अर्जेंटीना फुटबॉल एसोसिएशन को जुर्माना भी भरना पड़ेगा। और अब करते हैं मौसम की बात। आम

हालत हमारे इलाके में हल्की हवा चल रही है। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज रात और कल सुबह आमतौर पर मौसम सुहाना रहेगा। कल दोपहर बाद बादल घिराएंगे सेंट्रल प्लाटो और पूर्व के हिस्से में रह रहकर बारिश होगी और दूसरे इलाकों में मौसम अच्छा रहेगा।

पश्चिमी 2 मीटर 50 ऊंची लहरें उठेंगी। इसी वजह से दूर समुन्द्र में आज रात न जाने की दरखास्त है। तापमान सेंट्रल प्लेटू में न्यूनतम तापमान 15 से 17, अधिकतम 23 से 25, साहिल इलाकों में न्यूनतम तापमान 19 से 21, अधिकतम 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। आपको ये भी बता दें कि तापमान सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस औसतन ज़्यादा रहेगा। कल सुबह 6:44 पर सूरज उगेगा और शाम को 5:48 पर सूरज ढल जाएगा।

0: तो ये थी अब तक की खबरें आप तक के बुलेटिन पहुंचाने में हमें फ्रेंच और समाचार विभाग और हमारे तकनीकी साथी लुडोविक जहांगीर की मदद मिली है। आपके ध्यान के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार और आदाब। एमबीसी के साथ आप जुड़े रहिए, थोड़ी देर में आप शोक समाचार सुन पाएंगे।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
0: शोक समाचार सुनिए। सिमेट्री रोड प्लान मान्यों में 73 साल के 73 years old जनाब अब्दुल अजीज सोंदागर, जनाब अब्दुल अजीज सोंदागर जो किस्को के नाम से ज्यादा जाने जाते थे, इंतकाल कर गए हैं। जनाजा आज रात आठ बजे इनके घर सिमेट्री रोड प्लान मान्यों से उठाकर दफनाने के लिए प्लान मान्यों का कब्रस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 8 PM। स्टैनली रुजिन में 55 साल के 55 years old श्री धीरज रामदानी जो चिकीवी के नाम से ज्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दोपहर बाद एक बजे मुरा फ्यूनरल पिछित्रिविया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कॉन्लिव्यू की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 1 PM। नंबर 38 नंबर 38 राम गुलाम रोड प्लेंदी पपाई में 70 साल के 70 years old जनाब नसीम अकबर अली जो नसीम के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इंतकाल कर गए हैं। जनाजा कल दो बजे इनकी बेगम आशा अकबर अली के घर नंबर 38 राम गुलाम रोड प्लेंदी पपाई से उठाकर दफनाने के लिए प्लेंदी पपाई का कब्रस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुमारो एट 2 PM। माता बदल रोड बोनाकोई में 47 साल के 47 years old श्री सूरज लक्ष्मण जो दीपक शोफे अब्यूस के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल दोपहर के दो बजे इनके पिता भानु लक्ष्मण के घर माता बदल रोड बोनाकोई से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बोनाकोई की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो 2 PM। स्कूल लेन तेआगोज में 67 साल के 67 years old श्री कृष्णा मेनन मुतुसामी जो गोविंद के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल दस बजे इनके घर स्कूल लेन तेआगोज से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लिसालीन पोटलुई की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो 10 AM। रेजिडेंस सत्यावती पाइडगाडु गांधी रोड लिस्पेरेंस कच्चे मिलिटिया में 50 साल के 50 years old श्री वीरा मुरुगन जो वीरा के नाम से ज्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल साढ़े बारह बजे इनकी पत्नी कामिनी रेशमा मुरुगन के घर रेजिडेंस सत्यावती पाइडगाडु गांधी रोड लिस्पेरेंस कच्चे मिलिटिया में से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लैग्रिमो सैंपिया की शमशान भूमि ली जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो 12 PM। शोक में दुबे परिवारों से हमें हमदर्दी है।

心愿，阻挡不了我心

走过漫长奔波路途，我们暂时放下生活的匆忙，一起奔赴一片温柔麦田，请听李健带来的《风吹麦浪》。

听懂内心万千情绪，世间所有牵挂都抵不过一句不如见一面。请听海来阿木带来的不如见一面。

思念藏在心底，黄昏水岸安静悠然。接下来的船歌伴您静享片刻安宁。

晚风诉说温柔心事，世间所有相遇都是一场难得的传奇。请听李健的传奇。

0: This is Radio Marches.
1: 您好
2: Assalamualaikum.
3: Kimchi Mauritius.
4: Namaskar.
5: Shrotrandariki Hrudayapurvaka Namaskaram.
6: Ungal anaivarukkum Vanakkam.
7: Radio Mauritius par dil se swagat hai aap sabhi ka.
8: बजले प्रभु का नाम रेडियो मॉरिशस के लहरों पर.

सादर प्रणाम श्रोताओं, रेडियो मॉरिशस के इस पावन मंच पर प्रसारित होने वाले आपके प्रिय कार्यक्रम भज प्रभु का नाम में आपको दीविना का अभिवादन है। आज की इस पावन संध्या में आइए कुछ क्षण भागदौड़ से दूर होकर प्रभु के श्री चरणों में अपना मन अर्पित करें। विश्वास रखिए, जहाँ सच्ची श्रद्धा होती है वहाँ प्रभु की कृपा अवश्य बरसती है।

श्रोताओं, मंगलवार का दिन शक्ति, साहस, सेवा तथा अटूट भक्ति के प्रतीक संकट मोचन श्री हनुमान जी को समर्पित है। जब जीवन में बाधाएं, निराशा या मन की अशांति हमें घेर लेती है, तब प्रभु का स्मरण तथा हनुमान जी की आराधना हमारे भीतर नई ऊर्जा, विश्वास तथा आत्मबल का संचार करती है।

0: बजले प्रभु का नाम रेडियो मॉरिशस के लहरों पर।
1: जहाँ श्रोताओं, जिस घर में प्रभु का नाम गूंजता है वहाँ सुख शांति तथा समृद्धि स्वयं मार्ग खोज लेती है। कितना सुंदर अनुभव होता है जब हम पूरे मन से प्रभु का नाम जपते हैं। ईश्वर हमारे जीवन से हर परीक्षा को नहीं हटाते परंतु उन्हें पार करने की शक्ति अवश्य देते हैं। जीवन में यदि कभी मन निराश हो जाए तो एक बार श्रद्धा से श्री राम तथा श्री हनुमान का नाम लेकर देखे, मन को अद्भुत शांति तथा नई प्रेरणा प्राप्त होगी।

भक्तों, हमारे संत महात्मा कहते हैं कि सच्ची पूजा केवल मंदिर में दीप जलाने से नहीं, बल्कि अपने व्यवहार में प्रेम, दया, क्षमा तथा सेवा का दीप जलाने से होती है। जो दूसरों के जीवन में मुस्कान लाता है, वही वास्तव में प्रभु की आराधना करता है। भक्ति का अर्थ केवल हाथ जोड़ना नहीं, बल्कि हर परिस्थिति में प्रभु पर विश्वास बनाए रखना है और लोगों की मदद करना है।

भजे प्रभु का नाम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं रेडियो मॉरिशस पर। जा श्रोताओं, आइए आज अपने माता पिता, गुरुजनों तथा सभी शुभचिंतकों के लिए भी मंगल कामना करें। प्रभु सभी को उत्तम स्वास्थ्य, सुख, शांति तथा सद्बुद्धि प्रदान करें। यदि आपके परिवार में कोई कठिनाई या चिंता हो तो उसे प्रभु के चरणों में समर्पित कर दीजिए। ईश्वर उचित समय पर हर प्रार्थना का उत्तर देते हैं।

अब समय आ पहुंचा है आज के कार्यक्रम से विदा लेने का। प्रभु श्री राम तथा संकट मोचन श्री हनुमान जी की असीम कृपा आप सभी तथा आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आपके जीवन में प्रेम, विश्वास, स्वास्थ्य, सफलता तथा आनंद का प्रकाश कभी कम न हो। इसी मंगल कामना के साथ हमें दीजिए अनुमति। सादर नमन, शुभ रात्रि, जय श्री राम, जय बजरंग बली।

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم चमक तेरी आरजियों की क्या बात करे कोई, चमक तेरी आरजियों की क्या बात करे कोई, चराग सब बुझ गए जिया फ़कत तेरी रही। मोहतरम सामईन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहु। रात की तारीकी में जब चांदनी ज़मीं पर उतरती हैं, हवाएं भी ज़िक्र इलाही में डूबी महसूस होती हैं, ऐसे ही लम्हात में हम आपके लिए लेकर आए हैं महफिल शब, वो रूहानी प्रोग्राम जहां नात की खुशबू और ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हरारत दिलों को जगमगा देती है। सामईन, मैं हूं आपका हमनवा, आपका मेज़बान निसार अख्तर, और इस पुरकैफ शब में आपका इस्तकबाल करता हूं। आइए महफिल शब का आगाज़

सामईन कराम, महफिल शब सिर्फ नातों का प्रोग्राम नहीं, ये एक दावत फिक्र है कि हम आकाए दो जहां दिल बरे जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को अपनी ज़िंदगी में कैसे शामिल कर सकते हैं। नात सिर्फ जबां से नहीं बल्कि किरदार से पढ़ी जाती हैं। अगर हम सच बोलें, नरमी अख्तियार करें, दूसरों के लिए आसानी पैदा करें, तो यही नात का असल मफहूम है। इसलिए शायर ने क्या खूब कहा है कि बुलबुल को चैन मिलता है बागों के फूल से, बुलबुल को चैन मिलता है बागों के फूल से, दिलों को सुकून मिलता है नाते रसूल से।

महफिल सजी थी जिक्रे मुस्तफ़ा के नूर से, महफिल सजी थी जिक्रे मुस्तफ़ा के नूर से, अब दिल भी मुनव्वर हैं, महफिल भी रोशन है। सामईन कराम, इसी शेर के साथ हमारा आज का उर्दू प्रोग्राम महफिल शब अपने अख्तिताम को पहुंचता है। दुआ गो हूँ कि नातों की ये खुशबू आपके दिलों में बाकी रहे और अल्लाह तबारक व ताला हमें अपनी रहमतों के साए में रखे, आमीन। सामईन, अब निसार अख्तर आपसे इजाज़त तलब करता है, अगली मुलाकात तक अस्सलामुअलैकुम, अल्लाह हाफिज़।

0: संगत्यालो घड़ी मिलालाई बखत रात के ठीक 9 बजल बाद तू सुन अथवा आर एम फ्री रेडियो मनोरंजन और एम टू रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन 94.95 मेगाहर्ट्ज़ एफएम पर और एम टू यानी कि 819 किलोहर्ट्ज़ पर
1: Continuous music.

0: भोजपुरी गीत प्रताप सिंह के संगे MPC रेडियो पर। गमक धमाल और ये मस्ती प्रताप सिंह के संगे MPC रेडियो पर।
1: भोजपुरी तड़का। भोजपुरी।

0: का भोजपुरी तड़का। भोजपुरी तड़का तो हर जीवन में स्वाद आने खातिर गमट जलसा हंगामा।
1: सब संगठनों के अजय प्रताप सिंह की ओर से प्यार भरा नमस्ते और सलाम। यह तो हर मनपसंद रेडियो चैनल रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन एमबीसी के दोनों रेडियो चैनल पर सबको के स्वागत बा। और आज हम मंगल की रात मंगल 21 जुलाई 2026 अभी से लेकर रात के 11 बजे थोड़ा मन करता कोनो भी भोजपुरी गीत सुने के नंबर वा घुमैया का जगह देव जगह बिचा क्या फिर हम के एसएमएस करिए हम के टिकटॉक पेज पर टिकटॉक पेज रेडियो मॉरिशस के सबके के हमने स्वागत करा थे जा। और बेशक अभी तो हंगामा शुरू हो बा भैया, अभी रात भर हंगामा हो अभी से लेकर रात के 11 बजे एक से एक बेहतरीन भोजपुरी गीत तो लोग के पसंदीदा भोजपुरी गीतों पर। और बेशक जब हम आए तो खूब गमट हो ला। और बेशक आजकल ढेर लेकर लोग सब लेकर लोग स्कूल की छुट्टी में बा, अध्यापक लोग भी और ढेर पाहुन लोग भी कौन से जो से लेकर लोग घुमाए खातिर तो सबको एक मतलब है हैप्पी स्कूल हॉलीडेज बनवा कौन सा। और चला शुरू कर जाए जोली गीत के साथ मार ताली मार हम संगे गीत सब रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन के लिसनर्स के नाम और सब भोजपुरी लवर्स के नाम है गीत।

और बेशक सबको जानना कि वर्ल्ड कप फाइनल वर्ल्ड कप फीफा डेमी वेंसिस के फिनाल में कर जीत होलबा जी हाँ, स्पेन के जीत होलबा, बधाई हो, बधाई स्पेन के। और एक महीना से ज़्यादा वर्ल्ड कप 2026 चैनल दुनिया भर में और एमबीसी टीवी पर इस सब तो लोग देख ला जा, और जितना कोई स्पेन को सपोर्ट कर लगता बधाई हो बधाई। और हाइजन वर्ल्ड कप फीफा रहा लेकर में रहा 48 टीम और कुल मैच रहा 104 और बेशक ढेर मना देर से कर में भाग ले लक, ढेर कोई के हार हो ढेर कोई के जीत भी। और 19 जुलाई 2026 से कर फाइनल रहा और एकर में स्पेन के 1 अर्जेंटीना 0, स्पेन सबके पछाड़ दिलक और स्पेन के जीत होल। चैंपियन स्पेन और उप विजेता अर्जेंटीना, तीसरा स्थान इंग्लैंड फ्रांस के हरा के। और विश्व कप मॉरिशस वासी ढेर कोई गर रन सा ढेर कोई के मौका मिल रहा, टिकट मिल रहा लोग जाए कि देखे के सब खेल। और बेशक सब सब कोई खुशी होल कि बाद में जेकर जीत होल तो उस सिकंदर जो जीता वही सिकंदर, यानी कि जीत होल स्पेन के और रिस्पान जीत लग, बहुत बहुत बधाई। और अभी यहाँ पर ही हमने सा और अभी अगला गीत जो है भाई सराबी, बहुत ही खूबसूरत सा गाना और है गीत, तो हमने सरावती सब संगत्यारों के नाम सुनीता गणेश, अनीता जोगी, दिलीप चौधरी, केलान, माया रामदोस, रोहित यादव, दिलीप जी, फिर पद्मिनी कौदन, देवीना विशेषर और दिनेश मातो, कर्मा, रिशन, माया रामदोस, शोभा और निज़ाम बहादुर, हेमानीपुल सिंह, बीना भैरव और देखा फेक प्रोफाइल यूटिलाइज करके बोल बत फेक प्रोफाइल नहीं सकब से नुमे करे काहे के निमन नाम देव से तब हमने सकब से बोले माफ़ी चाहते हैं पर इसे चलेला। दिल दिल ब्रिज सारे गीत तोहर खातिर कविता अनु है गीत तोहर नाम चली सागर कुमार और है गीत हेमा खातिर हेमा कनाई और सब कर परिवार और दुगो लड़का और घरोला। हेमा जी नमस्ते, हेमा निबुल सिंह साथ में शाहिद इकबाल खान है गीत तोहरों नाम बहुत बहुत प्यार के साथ। शाहिद इकबाल खान प्रोग्राम भोजपुरी का भोजपुरी गीत चली ठीक बा। और प्रीति भीम के साथ देवथवन, हेलो विश नूरा है गीत तोहरों नाम। और जीवी श्यामा महेराली हेलो जी। और जितना कोई अभी हमने की देखा था हमने की टिकटॉक पेज पर और जितना कोई हमने की रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन पर सुना था गीत तो के नाम भाई शराबी है गीत खास हम खास रेणुका की ओर से उकर बहिन खातिर उकर बहिन है अमृता रीता की ओर से अमृता रेणुका खातिर और सब उकर परिवार के नाम चलक साथ सुने गीत भाई शराबी।

0: पहली भाई शराबी बन गईली।
1: हमने सब श्रोताओं के मांग करते की है जो लाइव टिकटॉक हमने की चला था एक में हमने कोई कैम भी दे करके नहीं सकब से प्रोग्राम करें प्रोग्राम खाली हमने की है तो अपन SMS करिए वीडियो कॉल नहीं करिए कि नहीं बोलिए कैम भी क्या होता हुआ हम माफ़ी चाहते हैं पर सब काम एक फांसी से एक अनुशासन से चलेगा मन करता गीत मांगे के तो गीतवा सकब मांगे पर लाइव वीडियो कॉल नहीं करे के हमने के टिकटॉक पेज पर ठीक बा समझदार की इशारा काफ़ी बा और बेशक जब कोई गलती करेला तो हमने के चेहला वो गलती के सुधारे के वो लड़का जब गलती करेला तब बड़ा आदमी के काम सुधारे के पर जब बड़ा आदमी गलती करेला तो चेहरा वो लोगों के सुधारे के कहकर हमने अक्सर देखी ऐसा कि बड़ा आदमी लोग भी गलती करेला हाँ बड़ा आदमी लोग हमेशा सही नहीं रहेला है ढेर को ढेर बार वो लोग जब लाजम चावला उम्र बढ़ जाला तो वो लोग कब अमानी हो जाला सर कभी कभी ऐसा नहीं को डिसीजन लेवे सर कि घर जो है ऊपर नीचे हो जाला महाभारत हो जाला तो जे भी गलती करी तो हमने के कर्तव्य है वो लोग के सुधारे के ठीक बा और अगला गीत भागते रहेला आदमी और है गीत तो हमने चलावते इस ललिता कुशल जी के नाम भवन थोजोली से उनके साथ देवन ललिता कुशल तोहर सब परिवार के नाम चाचा आत्मा राम खातिर भी चाची भरवावती वन फौसे और है गीत रीता है गीत चलावते इस रानी की ओर से कर बेटी परी कर कर कर घर वाला साइलेन और सब परिवार के नाम और इस गीत हमने चलाओ संजय बिहारी खातिर और पत्नी और सब लड़का और सब बिहारी परिवार के नाम और चाचा साइलेन की ओर से और नेफ्यू माधव के नाम भी गीत चली बहुत प्यार के साथ भागते रहे आदमी

सच्चे के आदमी भागते रहेला, कभी इधर भागेला कभी उधर भागेला, भागम भाग भागम भाग। जी हाँ, जैसे मैं रात के 9:22 हुआ था, तो जैसे थोड़ा बोली हमने कि टिकटॉक पेज पर वीडियो कॉल नहीं करे के मन करता गीत मांगे के तो SMS करिए, ठीक बा। अगला गीत आई लव यू बोलेला गीता का जाधर गीतवा गई रे हवन।

और एक गीत चलावते ही सब संगतियालु के नाम आकेश आकाश डोंडिया माला बोरू शोभा जी हवन कविता अनु अरुणा मानती गोकुल और है गीत चलावती से अरुणा हाँ बतौन लविश के मामा हवन जा

स्पेशल इतने एक उद्देश्य है जहाँ पर कोको तेल गाड़ी में इस्तेमाल होला जैसे हमी लेसेंस डाइला सा डीजल डाइला सा कुरान से चले रहता स्पेशल में वहाँ के ढेर गाड़ी में कोको तेल से भी होला अब ढेर को बताए कैसे के लाहौई प्रताप जी हाँ जी स्पेशल के बाद बोला थे मॉरिशस में कोको तेल से हमें कपार में डाइला सा जब कपार दुखाला तो कोको तेल और करवा तेल भी जाएगा सब पर इस जान के तो आश्चर्य में पड़ जाएगा कि सेशल में कोको तेल जो है वो मासिन में डलाला और मासिन ऊर्जा ओके मिलेगा फंक्शनल की खाली सेशल में होला और अगला गीत स्वास्थ्य जी का अच्छा बात गीत चलावते खास हम खास जयराज रानी अंतिश अंकुश स्नेहा और सब दुलार परिवार के नाम लाल माटी से और हे गीत राजीव के नाम इंदिरा ननकू हे गाना चाहते इस माता जी इंद्रानी बिहारी के नाम बहुत बहुत प्यार के साथ हे गीत चली ऋषण के नाम और हे गीत लाविश भाविश गणपत आरुष और अरुणा खतीर बहुत बहुत प्यार के साथ हे गाना इंद्रानी बिहारी जी के नाम कौची मिली जैसे अंजाम के साथ देवतवन और फिर है गीत ग्रीक की ओर से पर प्यार शक्ति खातिर हेमा गीत हो नाम हेमा निपुल सिंह रामजीत रामहित सुमन जी गीत हो नाम और बेशक जितना कोई नींद नहीं लगता तो गीत लोग के नाम भी स्वास्थ्य जी का अच्छा साहिल चगारू की आवाज़ में

0: कभी सोचा है
1: MBC रेडियो के स्टूडियो से लाइव और डायरेक्ट
0: लिसनर्स से बात करना कैसा लगता होगा?
1: मोस्ट पॉपुलर बॉलीवुड हिट्स प्ले करना,
0: मस्ती करना और पूरे मॉरिशस को एंटरटेन करना कैसा लगता होगा? अगर हाँ तो फिर ये है आपका मौका।
1: MBC रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे
0: ओपन टू ऑल मॉरिशस। बस 60 सेकंड से कम का एक धमाकेदार वीडियो बनाइए
1: और हमें सुनाए अपनी आवाज का मैजिक, कॉन्फिडेंस, एनर्जी और पर्सनालिटी।
0: वीडियो हो सकता है हिंदी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, उर्दू या चाइनीज में।
1: अपना वीडियो भेजिए ऑन MBC रेडियो व्हाट्सएप नंबर 5251-6363
0: और आखिरी तारीख है 26th of July। तो कैमरा ऑन कीजिए, टैलेंट दिखाइए और हो सकता है अगली बार स्टूडियो के इस माइक के पीछे आप बैठे हो।
1: MBC रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे। MBC रेडियो पर आपकी आवाज, आपका स्टाइल
0: और आपका चांस।
1: डोंट मिस इट।
2: RM3 Radio.

और संग त्यारे उत्तु खुश दा बने के वन डे आओ जे त वैंसिन सुजेत लेक सकबा चाहे को वीडियो करके व्हाट्सएप पर भी दाखरे और दिखब से केकर में कितना तालों पा और सकबा जा एक दिन खातिर आओ जे बने तो जरूर पार्टिसिपेट करिया वन डे आओ जे में और डेडलाइन है क्लोजिंग डेट है दिमास 26 जुलाई के यानी कि और एक सप्ताह में क्लोजिंग डेट चलाई तो फटाफट लिया गो वीडियो अपन पोता बड़े को वीडियो बनाइए और विदा कर जाए जैसे कभी वेदिता और विकास कौर थोड़ा बोला कैसे चला पुगामा में पहुँची पे है कि और अगला गीत मच्छी मरवा हमर नाम और है गीत हम चलाते जहीना खातिर हाय जहीना देश है तोरो नाम फिर है गीत चली योगेश सिबोरन कौछ मिनी जैसे व नर्मदा रमा सोमी गीत तोरो नाम सनोज कुमार यो हीरा मगर विक्रम दिल बरना है गीत तोरो नाम बहुत बहुत प्यार के साथ जहीना और आफेज हवन लावेनिया से पिया से हाय आफेज और लागोजा से वन संगीता मिरन सब मोहन परिवार और मामा कास्तेल में और भाई दान आजी फिर बहन रक्षिता को बहन बहिमा शांति रक्षिता वंशिका और सब अमीरन और मोहन परिवार के नाम मच्छी मरवा हमर नाम और बेशक कहेगी तो आरिक जना मंगले रहल प्रोग्राम की शुरुआत में आले एसएमएस के और बढ़ब जा और देखब जाके गीता मंगले रहन ओके।

तीटवा एकजना मंगनेर कर्मा खातिर मच्छी मरवा हाँ यो मंगनेर गीत कर्मा खातिर कर्मा के नाम बा इंद्राणी बिहारी तो चला गीत हुआ इंद्राणी जी के नाम माता जी गीत और खातिर बहुत बहुत प्यार के साथ आलो मैं गीत और नाम लुई क्रिस्टोफर और रॉय साहबियन के साथ देवचन फरोज मकरलाल हेलो और फरोज मकरलाल गीत तोहर खातिर तोहर सब परिवार के नाम बहुत बहुत प्यार के साथ मच्छी मरुआ हमर नाम

17 जुलाई से 17 अगस्त ले सब ले कह लो कौन से मेरे प्रीमियर से कौन दिया कि एक महीना के कौन से तो खूब नचिया गईया मजा करिया गमत करिया कह कि एक महीना के मिलल बा गमत करे के तो सब कोई गमत करब सर तो लोग के संगे संगे और बेशक जब गमत की बात आवेला तो हमने सबसे पहले आई रहा सर कह कि हमने खुशिया सर रेडियो पर भी गमत करे थी अगला गीत वॉइड खातिर यो खातिर भी और सुनीता हमने के साथ देवतन हाय सुनीता है गीत थोरो नाम सारू है गीत थोरो खातिर रामोस है गीत थोरो नाम और है ये गीत चलावती सा स्वीट डेविल के नाम आप होन ब्राम्बोलिस्तान से और बेशक हम के साथ होतन और इंद्रानी भी हमने के साथ होतन हाय इंद्रानी नमस्ते साथ में जितना कोई हमने की सुनाता बहुत बहुत प्यार के साथ है गीत थोरो नाम अकेले घूमे जाले अब कहाँ अकेले घूमे जाला चलक साथ सुनम जा

स्कूल की छुट्टी बाद लड़का लोग खुशी रंग से स्कूल की छुट्टी में सिनेमा जाएगी। तो सिनेमा में कौन कौन फिल्म खेला था आजकल, जहाँ आजकल खेला था दो फिल्म, एगो फिल्म का नाम है धमाल चार और एगो आके फिल्म एगो दूसर का फिल्म का नाम है अल्फा वेलकम टू द जंगल। इतना दो सप्ताह से शुरू कर पर अभी जो फिल्म खेला था धमाल चार और अल्फा। धमाल चार में तू देखवा जय देवगन, रितेश देशमुख, अरशाद वारसी, जावेद जाफरी और संजय दत्त के। इस फिल्म के निर्देशक हवन इंद्र कुमार, कॉमेडी से भरपूर मूवी है। हाई फिल्म धमाल चार शुरू से लेके अंत ले तो लोग हंसते रह बस गारंटीड है कॉमेडी। फिर दूसरा का फिल्म है अल्फा, ये आदित्य चोपड़ा और शिव रावल के बनावल फिल्म है। ये एगो पहला लेडी लेड फिल्म है, महिला लेड फिल्म और एगो एक्शन से भरपूर मूवी है। इस फिल्म में दिग्विजय आलिया भट्ट, शर्वरी, बॉबी देओल, अनिल कपूर और आर माधवन के। तो याद रखिए दुगो फिल्म खेला था हमने सिनेमा में आजकल, एगो फिल्म के नाम है धमाल चार धमाल कट और दूसरा है अल्फा। अब तो देखिए कौन फिल्म तुम्हारा मन करा था देखे की और अभी खातिर अगला गीत इंद्रासन से ढोलक मंगेली और रिसोल बुलाता हूँ काल जातवन गौबे घूमे तय गीत गौबे कुर्सा परिवार के नाम। हाय जोशना, हाय दया, हाय ऋषि, दिनेश गोपी, मनीष चामी सिंह है गीत तुहर खातिर, तुहर पत्नी, तुहर तीन गोलिका, तुहर माता जी और सब चामी सिंह परिवार के नाम। सुबी एम के साथ देव तुहन इम्तियाज को हो है गीत तुहरों नाम यूश गनौगी है गीत तुहरों खातिर और सेंट SSS कॉलेज के सब स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ, वहाँ के रेक्टर, एक्टिंग रेक्टर मिस्टर खुबेन मुनसामी और सब संगत यालों के नाम, खासकर मिस्टर धर्म गंगू, मिस्टर सौजू, मिस्टर गोसाई, मिस्टर बीरापेन, मिस्टर अपाया, फातिमा, दीना, शोभना और केत खातिर और जितना कोई हमने के भी रात के साथ देवता गीत हो खातिर बहुत बहुत प्यार के साथ। और है गीत प्रताप के और शोकर बैस्वन हरीश नारायण खातिर, हरीश नारायण हेलन मिडलैंड्स।

हमी की पुरानिया लोग हमेशा बोला चला बोले कि सिल में पिसल चीज के स्वाद आहाहा। नंबर वन, सिल पर पिसल मसाला, सिल पर पिसल चटनी या कोनो भी जे पीस सिल में जब पिसब तो कर स्वाद एकदम बढ़िया। होशकारी बात अलग है, होशकारी की नहीं हम लगे बाप भैया, हम अभी ले चटनी है पोलामुन की चटनी पिसी रहा हमारे होशकारी में, हालांकि बा जिन जे पीस खाज कर पाबा पर हम खुशी रही अपन हाथ से चटनी खाज करब ओके कचब पानी डाल के मन से हाँ कि नहीं। अगला गीत, गीत गवाई में चलेगे चलोगे चंदा है गीत रवि बंगारू के और से ओकर बेटा रायन खातिर सांदिर गीत और नाम बबीता बोला कि है गीत तोर खातिर सुमन क्षेत्रीय गीत और नाम रोशन भाई आजागी कंदा सामी नमस्ते किंग हवन और इम्तियाज को हो तो चला एक साथ सुने गीतवा। बहुत ही प्यारा संगीत है गीत गवाई में चले के बाद चलोगे चंदा प्रेमिला भरोसी है गीत और ना।

0: RM3 Radio. Radio.
1: एक से एक जोली भोजपुरी गीत प्रताप सिंह के संगे MBC रेडियो पर। एक से एक जोली भोजपुरी गीत प्रताप सिंह के संगे MBC रेडियो पर। गमक धमाल और ही मस्ती प्रताप सिंह के संगे MBC रेडियो पर।
2: भोजपुरी तड़का भोजपुरी तड़का
3: चौरानवे 95.6 और 2 FM पर यह रेडियो मनोरंजन और 800 kHz AM पर यह रेडियो मॉरिशस यानी कि रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन पर चलता है एगो कार्यक्रम भोजपुरी तड़का रात के 11 बजे अभी रात के 10:03 हुआ बा। वेलकम इन द सेकंड आवर और बेशक लोग सब जहाँ टेलीफोन करे अब टिकटॉक पर नहीं चली चली लाइव प्रोग्राम रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन पर और टेलीफोन करे के नंबर काट जाओ देव विद जाओ विद सैंक चाची प्रभावती हवन नोवेल फ्रांस से गीत तौर खाती चाची बहुत बहुत प्यार के साथ बीच सीमा में गाड़ी खोलेला और गीत गैली हवन हरी गणेशन

इच्छी मामे और सासी बने मारियम के साथ वो थे गीत और खातिर तुहर सब ड्राइवर दोस्तों के नाम और तुहर पत्नी तुहर बेटी दामाद बेटा विवेक और सब बनुमारी परिवार के नाम बीच मामे है गीत फिर है गीत चली राज मन्ना खातिर सुदेश जसवा गीत तुहर माँ राजकुमारी और प्रवीण भैरव लोंग चिबुक राजा संजीव श्याम मंगल स्टीव माना है गीत तरो नाम और नानो खातिर भी है गीत छी बहुत बहुत प्यार के साथ और जितना कोई भी रात के मिल की सुना था है गीत थोड़ो नाम रतन निहाल हवन गॉम्बे से कुलपत्नी करुणा पापा विजय और सब निहाल परिवार के नाम बीच सीमा में

सुनला ना बिना लाइसेंस के गाड़ी नहीं खोल जा, 18 साल हो जाए तब जाइए अपन लाइसेंस निकाले, जब लाइसेंस मिल जाए तब गाड़ी चलाइया। रात के 10:09 बोला संगतिया कैसी लगा था प्रोग्राम, सबके हमने के साथ नाचता गावता झूमता गीत चली हल्दी और शादी पर, गीतवा कैली हवन किशोर कुमार रमेशर जोड़ी गीत है। और जब गीत की बात करते सर हल्दी की बात करते सर तो ढेर को खुशी रह जाए कि हल्दी में काय के साथ को प्रकार की थकारी और पूरी में खाए के गर्मा गर्म और शादी में मिला बिरयानी खाए के। और संगतिया लोग आजकल छुट्टी की बात करते सर तो छुट्टी के समय कुछ चकल जा करे सकबा जा सिनेमा जाए फिल्म देखे या जगबा फिशिंग करे चाहे या लामिया जाइब नाजी करे इनडोर गेम्स व काहोम डोमिनो लूडो बैडमिंटन और आउटडोर गेम्स फुटबॉल गुडी राय के और अपन माँ बाप संगे जइया घूमे दादा दादी लोग संगे जइया नाना नानी लगे जइया विजय जइया घूमे और ढेर मना बहाना बा है छुट्टी बिताए कहे कि एक महीना के छुट्टी मिला था तब चेहरा भरपूर मजा लेगी हाँ कि नहीं कहे कि जम टैम में निमन से काम कर ली है वो सर ढेर लड़का लोग की गजलता मिल गई बा पर ढेर लड़का लोग के कौन से में गजलता मिली और जन्म जा कि घाट नेफ घाट ओंस घाट थ्रेज और मैं कितना निकल लिया हुआ तब भाई सब के घाट के अपनी फोकस पर जाकर अब सब कैम्ब्रिज के तो ऐसे मेरे को बड़ा प्रोसेजर लंबा फमानी थी। अगला गीत है हल्दी और शादी के गीत और है गीत हमने चलावा थे इस सब संगतिया के नाम है गीत चली खासम खास विमी की ओर से अशोक खतेर और हे गीत चलिए प्रियंवदा की ओर से साइलेश खदेर भी बहुत बहुत प्यार के साथ साथ में है गीत अमित चावती से जितना संगत लोग रात के भी हमने की सुना था तय गीत लोग के नाम हल्दी और शादी

रात के 10:00 होता है तू सुनते हो रेडियो मॉरिशस 89 kHz पर और रेडियो मनोरंजन 94.6 और 98.2 FM पर। कई दिनों चैनल है NBC रेडियो के और हम है अजय प्रताप सिंह। तो लोग साथ देवा थे जा भोजपुरी गीतवन के संगे भोजपुरी तड़का। हमने के देश में ढेर विदेश लोग आके काम करता है, जैसे पंजाबी, नेपाली, बांग्लादेशी और मलागासी लोग सबको एकदम स्वागत करते थे जा। और आजकल देखा था सब एक दूसरे का इतनी रिटर्न करता है। रात के और फजीर के जो है तड़का, फजीर के और रात के ठंडा, दिन के तब घामा। आज के जो घामा रहा बाप रे बाप, तब बुझाती नहीं बात कि लीटे में है सर कि लीबिया में है सर। मौसम चाहे कैसे भी रही, बस हमने चलो के साथ देते रह जा रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन पर। अगला गीत था माचे के गवल गीत, ढोल बाजे ढोलक बाजे। और बेशक हमने जी बाजा ढोलक बजाती रही जैसा रात के 11 बजे ली। अभी नाचिक में ढेर कोई काम कर रहता है, हमें के रेडियो विज्ञान केंद्र मिट्टी मॉरिशस मिट्टी सर्विसेज, पुलिस विभाग, पुलिस फोर्स, दमकल विभाग, फायर सर्विसेज, के SMS के नौजवान लोग, गार्ड कोच लोग काम कर रहा था, सिक्योरिटी गार्ड्स लोग और कॉल सेंटर में ढेर कोई काम कर रहा था, और पुलिस लोग रात के सीमा में पेट्रोल कर रहे थे। जितना कोई काम कर रहा था ये वक्त सबको की वजह सबों को आज रात के काम करके आसान नहीं बा जाना से, पर अपन पेट के सवाल खातिर, परिवार खातिर, परेला काम करके थोड़ा सुन ओवर टाइम करवा, काम करवा, थोड़ा पैसा जस्ती मिलते अच्छा बा। हाँ ढेर कोई कुछ गमट करेगे तो कैसे गमट करबा, पैसा पोस में नहीं तब ना गमट करबा। अब माची भाई क्या बोला था चल एक साथ सुनम जा। और है गीत हमने चलावते इस संदेश भैरव के उसे कर पत्नी लता, बेटी अंजलि, फिर शिवानी, कर शिवानी की घरवाला, सब भैरव परिवार के नाम। कवि की ओर से गीत कर पत्नी थीना, कर माँ माला, कर बहन रीना और कर बेटा माधव खातिर। और रोजी धावन हाईलैंड से, हाई में से, बेन पोट्री से, भाई आबू हवन बाकवा से। भाई आबू कैसे बा समाचार, का जगह देवी जगह भी चाहे पर टेलीफोन कर लाइन खुल बा भैया, अभी मौका मिलता बजाय कि तो नहीं बोलिए मौका नहीं दिए, का जगह देवी जगह भी चाहे पर सक बजा टेलीफोन करी। चिलक सा सुन अब जाए गीत ढोल बाजी ढोलक बाजी, राफिक मोहित वन तायक से है गीत थोरो नाम।

0: सही। यस।
1: हमनी जीवित हैं सा त भगवान की कृपा से उपरम पिता परमेश्वर वो भगवान के कबो नहीं भूलैया सुख मेरा बा दुख मेरा बा चाहे कोनो भी परिस्थिति मेरा बा त भगवान के हमेशा याद करिया। कबो कबो सब सीमा बंद हो जाला पर तुम्हारे को मंत्र से तुम्हारे को पूजा पाठ से तू भगवान में आस्था करेला भक्ति रखेला त एकाएक एगो दरवाज़ा खुल जाला। हमें कुल एक्सपीरियंस कर ले कि जी तू सच्चे हृदय से भगवान की पूजा पाठ करेला तो भगवान कोनो न कोनो रूप में आके तुम्हारा मदद करेला। है दुनिया के सृष्टि करक बा भगवान और रूप जानेला सही समय पर कौन चीज चेहरा करे के सब काम सही समय पर होला। हमने कहा भगवान से नाराज़ हो जाए सा कुछ झगड़ा करी रहा सा पर भगवान दुनिया भर के बनेलक बा। अब सोचो कपर कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी बा कि इंसान से लेके जीव जंतु तक के ओके चेहरा देखे के फासिल काम नहीं है। तो चाहे कुछ भी हो जाए तू भगवान के ना भूलैया भगवान के ध्यान करिया भगवान के पूजा पाठ करिया। भगवान के जब पूजा पाठ के से भगवान के जब याद के से भगवान के जब स्मरण करी ऐसा तो मन के शांति पहुँचेला और हमनी के मन में अच्छा पवित्र विचार आवेला। तो दुनिया में सब कुछ भुला जाइए पर भगवान के कबो न भूलैया। कोनो भी मंत्र हो जैसे हरे कृष्ण कृष्ण।

कृष्ण हरि हरि हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे, या जय माता दी जय माता दी। और कोनो भी तोहर आराध्य देव बा, कोई के शिव है, कोई के दुर्गा है, कोई के काली है, तो कोनो भी भगवान के तू पूजा पाठ करेला अपन मन में के थान नहीं है। और ये बोलते कि दिन भर मंदिर में बैठ के भजन करे के तू कहूँ जात हो गाड़ी में हुआ ते को अपन मन ही मन में भगवान के नाम ले लिया। कहूँ जाते हो बाजार जाते हो क्या कहूँ से आओ तो काम पे जाते हो या कहूँ भी तो भगवान के को नाम ले ले जा, भगवान की जप करिया और लिखिया भगवान तो हर रक्षा करी। तो चल अभी को दुर्गा भजन सुनब सा। ओम नमस्तुते ओम नमस्तुते। जितना कोई भगवान के पूजा पाठ करे रहा भक्ति में तो लोग अपन जीवन व्यतीत करी रह सा तह गीत तो लोग के नाम सब भक्त लोग के नाम है गीत। नमस्तुते नमस्तुते। भगवान से प्रार्थना कर सके हे प्रभु तोहरा आशीर्वाद सबके ऊपर बल रही, सबके जीवन में सुख शांति रही।

मॉरिशस में हमनी गो शिक्षित लोग हैं सर, शिक्षित जनता ही सर हमनी के चेहरा जाने के अपनी के स्वास्थ्य खातिर कौन सी चेहरा खाए के संतुलित आहार बैलेंस डाइट और साथ में जब बात करी रहा सर तो संतुलित आहार के तो ओकर में आवेला एगो सब्जी ओकर नाम है इमली। इमली बड़ा खट्टा रहला हो कि नहीं। अब इमली जो है ये जो है एक में ढेर मना पौष्टिक तत्व बा। इमली में कार्बोहाइड्रेट्स बा, फाइबर बा, प्रोटीन बा, विटामिन बी एन, विटामिन बी टू, विटामिन बी थ्री, विटामिन बी सिक्स, विटामिन सी, पोटाशियम बा, मैग्नीशियम बा, कैल्शियम बा, फॉस्फोरस बा, आयरन बा, कॉपर बा, और ये बहुत अच्छा है इनके स्वास्थ्य खातिर। तो इमली ज़रूर खाया जा, वो चाहे तीखा रहेला पर स्वास्थ्य के बहुत अच्छा है। ये खट्टा मीठा फल है इमली। ये पेट डाइजेशन खातिर अच्छा है। पेट के इमली की चटनी बनेला, इमली सब्जी में डाइला सा कच्चू में जमी मुँह नहीं खजवाए। और है जो इमली है ये हर व्यंजन में कर उपयोग होला। और इमली के जूस भी बनेला, जूस तमारें ग्लासे, पर अभी ठंडा का तभी ग्लासे नहीं सक पिए वो जिन्हें पिया। पर इमली के तत्व ढेर है, जैसे बोली जैसे कि ओकर में बोली ढेर चीज बार आयुर्वेद में भी कर प्रयोग होला। और इमली तरकारी में से भी होला, इमली के टक्कर बनेला शादी में खाई ले वो ना, शादी में जब चिपूरी है से आगे चिपूरी खेबा तो ओकर में टक्कर नहीं रही तो वो कौन से अच्छी के कॉम्पोट थे कोई कॉम्पोट बोलेला। तो इमली के एक टक्कर खट्टा मीठा रहेला। और इमली कच्चू भाजी में डाइला स और इमली ढेर चीज में ओकर प्रयोग होला। तो ज़रूर जब बाजार जेब भौतिक जेब तो इमली एक पाकी ले लें ताकि सगब प्रयोग करें। और ढेर कोई लेकर लोग नहीं कुछ इमली खाए कि खट्टा

0: तरह अंक याल बा जब हम स्कूल जाते रही प्राइमरी स्कूल में रही तो मोहतरबा गवर्नमेंट स्कूल में एगो दादी आवत हलू कॉम्पोज बनावत रही मिल के और पत्ता कौन चीज के पत्ता में फेउज के पत्ता में थोड़ा सुन कॉम्पोज डाल के बेचे बैंसा सुखी न तरी सा ऐसा अच्छा लगे खाई के तो हमने के दादी नानी लोग हो तो लोग जाने ला कैसे टक्कर बनाए के तो लड़का लोग भाभी कौनसे में होन सा पर नानी ना नानी दादी लेके जेब तो बोलिए चाचा चाचा बोला था राजो में चाचा प्रताप सिंह फैन चिकित टक्कर मौजे दादी नानी नानी लोग बार लड़का लोग के बड़ा दुलार करे रहा नानी लोग बा ना नाना नानी दादा दादी लोग बा ना तो चिका ना नानी दादा दादी बा पुरानिया लोग बा तो ज़रूर अभी लड़का लोग कौनसे में बा तो थोड़ा सुन इमली के टक्कर बना दिया लड़का लोग उंगली चाट चाट के खा ली आहा अगला गीत काम करवा रही काम करवा है गीत बिना की ओर से कर दुगो बेटा कर घरोला और सब कर परिवार के नाम है गीत चली और रवि दिनू गीत तोहर खातिर तोहर पत्नी दुगो तोहर दुगो रवि दिनू की ओर से कर पत्नी कर लड़का लोग कर माँ बाप और सब कर परिवार के नाम जिमी और सावन दुखिया गीत और खातिर तुल के माता जी खातिर सब दुखिया परिवार के नाम और हे गीत कवि हर नाम की ओर से चली कर पत्नी कर बेटा और सब हर नाम परिवार के नाम और जितना कोई बिरात के अपनी की सुनता तो लोग नींद नहीं लगता कोई इधर करवट बदलता कोई उधर करवट बदलता है गीत और नाम फातिमा न्यू ग्रुप से अवन उदय धन नाम के जिप से प्रीतम राज मिला और अभिलक भाई हवन नया अंदाज का आओ कि गीत और खाते ऋषि रापू जी है और सब रापू जी परिवार के नाम है गीत चली काम करवा रे काम करवा
1: या।

संगत लोग श्वेता बाबूलाल और किशोर खिमिया के गवल गीत ओबलमा के संगे भोजपुरी तड़का प्रोग्राम यहीं पर ही समाप्त हुआ था। रात के 9 बजे से अभी लिए उनके साथ रजा बहुत बहुत धन्यवाद। तो लोग के फोन कॉल खातिर धन्यवाद। हम कि टिकटॉक पर देख ला, टिकटॉक पर SMS कर ला, बहुत बहुत शुक्रिया। रात के ठीक 11 बजे हो रहा, 11 बजे प्रोग्राम समाप्त हो जाए। सुन बजा नीतू शाह से सुनहरे पल प्रोग्राम, और रात के 12 बजे से कल फजीर के 6 बजे नॉन स्टॉप फिल्मी तराने। हमने के तलों की मुलाकात हुई कल सांझ के 6 बजे से रात के 11 बजे रेडियो मनोरंजन रेडियो मॉरिशस पर। प्रोग्राम रही नई सोच, दिलों की आवाज़ और भोजपुरी तड़का। तक कल तक हमने की इजाज़त दा और जय प्रताप सिंह की ओर से सब के प्यार भरा नमस्ते और सलाम, शुभ रात्रि, बाय बाय, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस, नमस्ते।

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ। सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: प्रणाम श्रोताओं, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? स्वीकार करें नीतूषा का करजोर प्रणाम। इस समय आप पर रेडियो मॉरिशस के साथ जुड़े हुए हैं एक बार फिर सुनहरे पल कार्यक्रम में। तो आइए रात्रि के 12 बजे तक बेहतरीन सदाबहार एवरग्रीन सॉन्ग्स आपके नाम करते हुए आज एक ऐसे कलाकार की दुनिया में आपको ले चले हैं जो कभी जानी ऐसे किया करते थे। हाँ, अंदाज़ा तो लग गया होगा। हम बात करने वाले हैं राजकुमार, हिंदी सिनेमा के एक ऐसे नाम जिन्हें सिर्फ एक महान अभिनेत्र जो एक सिर्फ एक महान अभिनेत्रा अभिनेता ही नहीं बल्कि एक लेजेंड, एक स्टाइल आइकॉन और डायलॉग डिलीवरी के बादशाह के रूप में भी आज याद किए जाते हैं। साथ निभाते रहिएगा।

राजकुमार, उनका असली नाम कुलभूषण पंडित था। उनका जन्म 8 अक्टूबर 1926 को लोरालई, जो आज पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र में हुआ था। फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले वे मुंबई पुलिस में सब इंस्पेक्टर के रूप में काम करते थे। कहते हैं कि उनकी शानदार पर्सनालिटी और दमदार आवाज से प्रभावित होकर एक फिल्म मेकर ने उन्हें फिल्मों में आने का मौका दिया और यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा सफर जिसने हिंदी सिनेमा को एक अनमोल सितारा दिया।

राजकुमार की पहचान उनकी गहरी भारी आवाज, शाही अंदाज और बेहतरीन डायलॉग डिलीवरी थी। उनके हर डायलॉग में एक अलग ही गरिमा और दम होता था। जानी, उनका अंदाज़े गुफ्तगू इतना मशहूर हुआ कि आज भी लोग उनकी मिमिक्री करते हुए इस लफ्ज से उन्हें याद करते हैं। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस इतनी ज़बरदस्त होती थी कि बड़े से बड़े सुपरस्टार भी उनके सामने अलग ही नज़र आता था।

राजकुमार ने अपने लगभग 4 दशकों के फिल्मी सफर में 70 मानी कि 70 से अधिक फिल्मों में काम किया। मदर इंडिया, दिलीप।

से कई यादगार फिल्मों में उन्होंने अपनी अदाकारी का लोहा मनवाया। चाहे रोमांटिक हीरो का किरदार हो, राजसी व्यक्तित्व वाला पात्र हो या एक कठोर और शक्तिशाली व्यक्ति की भूमिका, राजकुमार हर रोल को अपनी अनोखी अदा से अमर बना देते थे।

1963 की फिल्म दिल एक मंदिर और 1965 की क्लासिक वक्त के लिए उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर अवार्ड मिला। इसके अलावा काजल और नीलकमल के लिए भी उन्हें फिल्म फेयर नॉमिनेशंस प्राप्त हुए। ये सम्मान उनकी अदाकारी की गहराई और कला के प्रति उनके समर्पण का प्रमाण है।

0: सुनहरे पल, सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: राजकुमार के बारे में एक और खास बात ये थी कि वो बहुत ही स्वाभिमानी और स्पष्टवादी व्यक्ति थे। वे अपने उसूलों पर जीते थे और किसी भी परिस्थिति में अपनी शख्सियत से समझौता नहीं करते थे। इसी वजह से उनकी पर्सनालिटी को लेकर कई कहानियां और किस्से बॉलीवुड में आज भी मशहूर हैं। लेकिन उनके फैंस के लिए उनकी असली पहचान हमेशा उनकी लाजवाब एक्टिंग और यादगार डायलॉग्स ही रहेंगे।

1996 को गले के कैंसर के कारण इस महान कलाकार ने दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन उनकी फिल्में, उनकी आवाज और उनका अंदाज आज भी सिनेमा प्रेमियों के दिलों में जिंदा है। राजकुमार ने साबित कर दिया कि असली कलाकार वो होता है जो सिर्फ पर्दे पर नहीं बल्कि लोगों की यादों में भी हमेशा के लिए अपनी जगह बना लेता है।

हिंदी सिनेमा का इतिहास जब भी लिखा जाएगा, राजकुमार का नाम उसमें सुनहरे अक्षरों में दर्ज रहेगा। उनकी विरासत हर उस कलाकार को प्रेरणा देती रहेगी जो अपनी अलग पहचान और अपने हुनर के दम पर अमर बनना चाहता है। प्रणाम, शुभ रात्रि।

0: रेडियो मॉरिशस
1: 800 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।
2: बोल सहेली बोल, तू भेद जिया के खोल। बनघट पे

संभल चली है, दिल की हालत संभल चली है, अब जुनून हद से बढ़ चला है, अब तबीयत बेहाल चली है।

0: रेडियो मॉरिशस
1: 800 किलो हर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।
2: मैंने आरडी बर्मन को उसके बचपन में देखा, उस वक्त जब मैं मिस्टर एसजी बर्मन उनके फादर के साथ काम किया करता था। फिर कुछ दिनों बाद मालूम हुआ कि ये म्यूजिक डायरेक्टर हो गए। ये वेस्टर्नाइज ज़्यादा करते थे म्यूजिक को, तो बर्मन साहब को ज़रा इस पर शिकायत होती थी। तो एक दिन हमसे कहने लगे कि भाई तुम इसके चाचा हो, तुम ज़रा इसको कहो। तो हमने कहा, तो उन्होंने कहा देखिए अंकल, बाबा बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर हैं, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा और सीखूंगा, लेकिन मैं उनके राह पर नहीं चलूंगा, मैं अपना रास्ता कुछ अलग निकालूंगा। आर डी बर्मन एक एरा था, एक स्कूल था हिमसेल्फ, वो लेवल मेरे ख्याल में दोबारा आना आसान नहीं है।

0: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग एमबीसी रेडियो
1: रेडियो मॉरिशस
2: 800 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस
1: रेडियो मॉरिशस
2: रेडियो मॉरिशस।